0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वचन अपना योग को जीवन का हिस्सा बनाए। एक दिन नहीं हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग। इक्कीस जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता, जिसे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
1: लो फिर आ रहा 21 जून आ रहा नया संदेश, लोक से द्वन बने विशेष, बढ़ती के साथ योग का साथ न्यारा, योग फॉर हेल्दी एजिंग, ये भरोसा हम सब प्यारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाए, योग को जन का हिस्सा बनाए। एक दिन दिन योग स्वास्थ्य और खुशहाली का अनूप संयोग। इस जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र का सी ऑफ जॉय कोलकाता, यही से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: सबका प्यारा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक नहीं हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग। इक्कीसवें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे विश्व स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: लो फिर आ रहा 21 जून ला रहा नया संदेश, योग से जीवन बने विशेष, बढ़ती उम्र के साथ योग का सत न्यारा, योग फॉर हेल्थ एजिंग, ये भूसा हम्स का प्यारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अनूप संयोग। इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: ड्रम्स का प्यारा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन आए, योग को जीवन का हिस्सा बना, एक दिन नहीं हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मुख्य के होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। इसे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: वो फिर आ रहा किस झूला रहा नया संदेश, लोग सेहत बन बने वेश, बढ़ती उम्र साथ योग का साथ न्यारा, योग फॉर हेल्दी एजिंग, ये रोसा हम सबका प्यार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन अपने योग जीवन का हिस्सा बना, एक दिन नहीं हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अटूट संयोग। इस 1 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। इसे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 जून को

0: प्रधानमंत्री किसान सम्मान की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसान के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,36,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक बल प्रदान रही है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के मयूरभंज में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल के हुगली से पीएम किसान योजना की 30वीं किस्त जारी करेंगे। 9 करोड़ से अधिक किसान होंगे लाभान्वित। वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल वित्तीय कार्रवाई कार्यबल के उपाध्यक्ष नियुक्त। भारत ने आतंकवाद विपोषण से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी कल होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल। एबी ने मृत निजकों के शर उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया आसान बनाई। और भारत और अफगानिस्तान के बीच एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच आज चेन्नई में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से ओडिशा और पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। हमारे संवाददाता बताया है कि प्रधानमंत्री आज ओडिशा के मयूरभंज जिले के पहाड़पुर गांव में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उनके 68वें जन्मदिन पर भेंट करेंगे।
2: राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मिलकर पवित्र संथाली जोहरा और जोहरा स्थल पर पूजा अर्चना करेंगे और स्थानीय शिक्षण और कौशल विकास संस्थानों का दौरा करेंगे। इस आदिवासी समुदायों के सशक्तिकरण के प्रति देश की प्रतिबद्धता जाहिर होगी। इसके बाद दोनों नेता एरंग में एक बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और ऊर्जा, परिवहन, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई और औद्योगिक बुनियादी ढांचे जैसे प्रमुख क्षेत्रों में नई योजनाओं की आधारशिला रखेंगे। राष्ट्रपति मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी एक साल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। रामपुर से प्रकाश दा, आकाशवाणी समाचार।
1: पश्चिम बंगाल दौरे में आज प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे। राज्य में विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 23 किस्त भी जारी करेंगे। इसके तहत देश के 9 करोड़ 44 लाख किसानों के बैंकों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे अंतरित की जाएगी। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुगली के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल होंगे और कोलकाता में रोड शो पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में नेतृत्व करेंगे। इसी अवसर पर 3 स्वदेशी युद्धपोत INS दुनोगिरी, INS संशोधक और INS अगय राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री का महत्वपूर्ण परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। कृषि क्षेत्र में श्री मोदी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत करेंगे। संदीप दासगुप्त के साथ काफी नहा आकाशवाणी कोलकाता।
1: गृह मंत्री अमित शाह आज कोल्हापुर और इचलकरंजी के दौरे पर हैं। वे महालक्ष्मी मंदिर परिसर में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे और मंदिर क्षेत्र में पश्चिम महाराष्ट्र मंदिर विकास योजना के तहत चल रही विकास परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। श्री शाह कोल्हापुर के पिस परिग्रह में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्रवाई कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। विभिन्न के गाइल्स थॉम्स स्थान लेंगे। कार्यबल की पूर्ण बैठक में यह निर्णय लिया। विदेश मंत्रालय ने श्री अग्रवाल के चयन को भारत के लिए बड़ी जीत बताया। मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, इस नियुक्ति से आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने और गैर कानूनी वित्तीय नेटवर्क के खिलाफ संघर्ष की भारत की प्रतिबद्धता मजबूत होती है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के तहत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयास पर एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज जानकारी सशक्त भारत के संकल्प को साकार करने वाली सरकार की परिवर्तनकारी पहलों के बारे में।

0: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने भारत के हाईटेक क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाने का काम किया है। स्वस्थ भारत के महत्वपूर्ण आधार हैं सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का विकास और स्पेस स्टार्टअप की तेजी से बढ़ती संख्या। सरकार की नीतियों और फैसलों से सेमीकंडक्टर क्षेत्र में सिर्फ योजनाएं ही बनी बल्कि अब निर्माण और डिजाइन से जुड़े कई एक भी काम कर रहे हैं। 2021 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया गया, इसलिए 76 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। योजना के तहत सिलिकॉन फैब पावर सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्टिंग सुविधा तथा चिप डिजाइन के 50% वित्त सहायता दी गई। साल 2026 में सरकार ने सेमीकंडक्टर 2.2 किया, जिसके लिए 1 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य उद्योगों के सहयोग से शोध और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करना, नई तकनीक का विकास करना और भविष्य के लिए कुशल मानव संसाधन तैयार करना है। इलेक्ट्रॉनिक्स और IT3 यूनिवर्सल कहा कि मिशन 1.2 ने जटिल उद्योग की मजबूत नींव रखी है।
1: हम अपने सेमीकंडक्टर मिशन के पहले चरण में ये हासिल कर पाए हैं। 75,000 से ज्यादा इंजीनियर इस क्षेत्र में प्रशिक्षित हो चुके हैं। 300 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज छात्रों चिप डिजाइन करना सिखा रही हैं। भारत में 2 नैनोमीटर चिप्स डिजाइन की जा रही हैं, जो दुनिया सबसे एडवांस चिप्स हैं। इनमें एनवीडिया और इंटेल की चिप्स भी शामिल हैं और ये सभी अब भारत में ही डिजाइन की जाती हैं।
0: वहीं भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 ने निजी कंपनियों को अंतरिक्ष क्षेत्र में पूरी तरह काम करने की अनुमति दी है। अब निजी संस्थाएं रॉकेट लॉन्च, उपग्रह निर्माण और संचालन, डेटा संग्रह और वितरण तथा ग्राउंड स्टेशन की गतिविधियां कर सकती हैं। इसी के बाद भारत में स्पेस टॉप की संख्या 2014 में केवल 1 से बढ़कर 400 से अधिक हो गई है। इससे निजी अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को नई दिशा मिली है। भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग 8 अरब डॉलर से अधिक है और अगले 8 से 10 वर्षों में इसके 4-5 गुना बढ़कर 40 से 35 अरब डॉलर पहुंचने की संभावना है। आकाशवाणी के साथ बातचीत में अनिल प्रकाश इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महानिदेशक ने बताया कि भारत में अब 4 से अधिक टेक स्टार्टअप्स हैं।
2: नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सेक्टर रिफॉर्म, इस बेस की स्थापना और प्राइवेट पार्टिसिपेशन में को बढ़ावा देने वाली नीति एक क्रांति की शुरुआत की है। आज भारत में 4 से अधिक टेक स्टार्टअप कार्यरत है, जो सैटेलाइट, लॉजिकल ऑब्जर्वेशन, डाटा साइंस जैसे क्षेत्र में इनोवेशन कर रहे हैं।
0: सेक्टर मिशन की उपलब्धियों और तेजी से बढ़ती निजी अंतरिक्ष के माध्यम से भारत विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में लगातार आगे बढ़ा है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय परीक्षा NCERT कल होने वाली नीट UG पुनर्परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी अभ्यास संचालित करेगा। परीक्षा से पहले मानक तैयारी के निरीक्षण के लिए ये ड्रिल की जा रही है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड SEBI ने निवेशकों के शेयरों के आसानी से हस्तांतरण के उद्देश्य से कानूनी उत्तराधिकारी और दावेदारों को प्रतिभूति अंतरित किए जाने के तरीके को सरल बनाया है। कल मुंबई में बोर्ड की 214वीं बैठक में SEBI बाजार क्षमता बढ़ाने, अनुपालन में आसानी और नियामक व्यवस्था में मजबूती लिए कई सुधारों मंजूर दी। और अब खेल खबर। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एकदिवसीय क्रिकेट मैच आज दोपहर चेन्नई के चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। भारत 2-0 की बढ़त के साथ पहले ही श्रृंखला अपने नाम कर चुका है। और अब आज के समाचार पत्रों सुर्खियों के साथ फरहत नाज।
4: धन्यवाद विशाल। टेलीग्राम पर केंद्र सरकार की रोक पर दिल्ली उच्च न्यायालय का फैसला, इस सभी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर दैनिक जागरण की सुर्खी है। टेलीग्राम पर प्रतिबंध सही, फुटपाथ पर पैदल चलना लोगों का मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय, द ट्रिब्यून से कई अखबार है। इस खबर पर भारत टाइम ने पहला शीर्षक से संपादकीय में लिखा, सुरक्षित फुटपाथ केवल सड़क सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा नहीं, ये पर्यावरण और लोगों की सेहत से जुड़ा है। पाकिस्तान अपनी भस्मासुर का शिकार, आतंकियों की खुली पनाह, संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि अनुपमा का ये बयान अमर उजाला में है।
3: धन्य फरहत। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के मयूरभंज में 47,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल के हुगली से PM किसान योजना की 23वीं किस्त जारी करेंगे। वरिष्ठ भारतीय नौकरशाह विवेक अग्रवाल वित्तीय कार्यबल के उपाध्यक्ष नियुक्त। भारत ने आतंकवाद पोषण से बचने की प्रतिबद्धता दोहराई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की कल होने वाली नीट UG पुनरीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल। और SEBI ने मृत निवेशकों के शेयर उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया आसान बनाई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: नालसाचा संवाद युनिट आदिवासी समूहांना शिक्षण आरोग्य कायदेविषयक सल्ला आणि त्यांचे सर्व हक्क मिळवून देण्यासाठी तत्पर आहे. कायदेविषयक मदतीसाठी 15100 वर संपर्क साधा.
1: आया खुशियों का पैगाम पीएम किसान, पीएम किसान.
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे. इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी. पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी. करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल दान कर रही है.

0: आशा उसले सुर फडके यांनी गायलं. लक्ष्मीची पावले चित्रपटातील हे गीत सुधीर मोघे यांचं होतं आणि संगीतकार श्रीधर फडके. मराठी चित्रपट संगीत आपण ऐकत आहात.
1: आया खुशियों का पैगाम पीएम किसान.
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 23वीं किश्त जारी करेंगे. इसके तहत 9,84,00,000 से अधिक किसानों खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी. पीएम किसान की इस किश्त साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक बल प्रदान रही है.

0: बाराव्या आंतरराष्ट्रीय योग दिनानिमित्त दैनंदिन योगाद्वारे प्रतिबंधात्मक आरोग्य सेवा याविषयी योग शिक्षक प्राध्यापक तानाजी बायसर यांचं भाषण आपण ऐकलं. आकाशवाणीच्या चंद्रपूर केंद्रावरून हे भाषण प्रसारित करण्यात आलं.
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे. इसके तहत 9,44,00,000 से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी. किसान की किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए अधिक हो जाएगी. करोड़ों किसान परिवार को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है.

0: आपण ऐकत होता गीत संवादाचा कार्यक्रम गाता हे मेरा दिल. आजच्या कार्यक्रमात संवादित होत्या स्मिता घुमडे.
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून हुगली पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 23वीं किस्त जारी करेंगे. इसके 9,44,00,000 से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी. पीएम किसान किस्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों आर्थिक संबल प्रदान कर रही है.
0: आकाशवाणी हे चंद्र केंद्र आहे. दुपारचे 12 वाजत आहेत. वंदा मंडळ महिलांसाठीचा हा कार्यक्रम आता मुंबई केंद्राहून सहक्षेपित करीत आहोत.

श्रोताओं बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। प्रोग्राम है सुरीला सफर और आज सफर में मैं होंगी आपके साथ आराधा। मेरा प्यार भरा नमस्कार स्वीकार करें। जैसे कि आप जानते हैं कि आज के इस प्रोग्राम में एक इबारत या जिसे कहते हैं टेक्स्ट उसे पोस्ट किया जाता है फेसबुक पेज पर और आपको शब्द चुनने होते हैं। साथ ही साथ ये बताना होता है उस इबारत में से जो शब्द हैं उनमें से कौन से गीत बन रहे हैं जो आज इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। तो आपके प्यारे संदेश प्यार भरे गीतों की लिस्ट हम पहुंच चुके हैं और आपने शब्द भी बहुत सारे खोल लिए हैं। हालांकि इबारत बहुत छोटी थी लेकिन शब्द बहुत से थे तो आपने वो खोल लिए हैं। मैं उड़ चुकी हूं और शुरुआत करते हैं हमारे इस प्रोग्राम की। लेकिन उससे पहले हम उन श्रोत के लिए जिन्हें अभी अभी यूनियन किया है हम ये इबारत फिर से पढ़ देते हैं। इबारत कुछ इस तरह से थी, रिमझिम ये बारिश बल का समा, जमीन ने चुपके से चू लिया आसमां, रुम सी आह एक सपना सा आया, एक लड़की मुस्कान दिल खो सा गया, हाथ में खिता गुलाब और रोशन एक दिया और दिल दीवाना कहना सा, उस लगा जैसे यही है जहां वो बारिश वो जमीन वो आसमान। तो ठीक आप बताइए मुझे कौन कौन से गीत इनसे आपको लगता है कि आज की लिस्ट में शामिल हो। ये भी देखते हैं आपकी और हमारी गीतों लिस्ट कितनी मिलती जुलती है। लेकिन ये बात तो जरूर है कि एक गीत ऐसा है बार बार कमेंट में आया है और जब भी बारिश की बात हुई है सावन की बात होती है जिन की बात होती है वो गीत सबसे पहले जुबान पर

रिमझिम के सावन। जी हाँ, लता मंगेशकर की आवाज, गीत योगी का लिखा हुआ, आर डी बर्मन की तर्ज और मंजिल फिल्म से अभी मैंने आपको सुनवाया। और सबसे ज्यादा आने वाला, सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाला ये गीत आपके कमेंट्स भर भरे था। और भी गीतों बारी आएगी, लेकिन आपके संदेश ले लेते हैं। हमारे पास लिखते हैं, आज की छोटी सी सुंदर सी इबारत, जब रिमझिम बारिश बादलों आसमान के एक खूबसूरत एहसास जन्मता है। रिमझिम गिरे सावन, वो हम ले चुके हैं। बारिश याद दिलाते बचपन, जब बेफिर से बारिश के बादलों साथ उड़ने को जी चाहता था। और प्रकृति में हर तत्व संतुलन, मौसम तब तक अदा है जब तक झमा बारिश ना हो जाए। लेकिन बारिश की कमी थोड़ी लग रही है, थोड़ा इजार ज्यादा करवा रही है बारिश। लेकिन आप जो मैसेज है वो भी एक खूबसूरत बरसात लेकर आई है। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं, सबसे पहले मैं विविध भारती का वो फेमस गीत जो हर समय हर समय बचा है, बहुत ही लाजवाब सुंदर गीत है, रिमझिम गिरे सावन, उसके बारे में लिखा है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक और है, वो लिखते हैं कि बारिश शुरू नहीं हुई लेकिन विविध भारती के सुरीले सफर में बारिश और गीतों के बौछार की बारिश बड़े तेज के साथ आगे चल रही है। ये सफर पूरा करना चाहते हैं हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। रिमझिम बारिश और भी आसमान जाएगा सुरीला सफर में। और एक और श्रोता हमारे हैं, उन्होंने लिख दिया है कि आपकी इबारत ने सचमुच बरसात की बूंदों के मन को धो दिया है। ये

पत्तियां, प्यार, प्रकृति, संकोच के खूबसूरत मन की तस्वीर दर्शा रहा है। बारिश, मौसम और जमीन आसमान जुड़ाव एक रूहानी माहौल बनाता है। शब्द ये रूहानी बनावट और मोहब्बत का मुकम्मल एहसास को छूने वाला है। यहाँ बिल्कुल शुरुआत इस खूबसूरत गीत के साथ और आगे बढ़ते हैं तो ये बारिश की बात है तो इसे जुड़ा कुछ सवाल है। जब बारिश की आती है, बरसात की आती है, पहली बरसात की आती है किसी खास के साथ, तो वो एहसास ही बहुत स्पेशल, बहुत खास होता है। तो आप कुछ पहली बरसात की यादें आप ताज़ा कर चाहें तो लिख पे बहुत ही कम शब्दों, ताकि ज्यादा से ज्यादा आप संदेश पढ़ सकूं। तो बारिश के रूहानी एहसास, पहली मुलाकात या कुछ ऐसा जो बारिश में आपको याद रह गया, मुझे भेजिए।

फिल्म दर्द से ये गीत आप सुन रहे लता मंगेशकर की आवाज में। नक्श लालपुरी ने इसे लिखा और खाइम का संगीत था। बारिश बरसात से जुड़े आपके मैसेजेस मुझ तक पहुंचे हैं। हमारे श्रोता लिखे कल तो यहाँ इतनी रिमझिम बारिश हुई, सुबह 8 से 10 तक मूसलाधार वर्षा हुई और पूरी चारों तरफ भर गया। एक तरह से रेनी भी हो गया और कोई कहीं ऑफिस ही जा पाया है ना, कुछ ही मिल गई इसी बहाने। एक और श्रोता लिखते हैं कि जैसे ही ये गीत जाया हमने वैसे ही बहुत ज्यादा आ गया कि रिमझिम से ये गीत उन्हें सबसे पहले याद आता है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं रिमझिम गिरे सावन सुलग जाए मन, इसी गीत पिछले वर्ष के दिनों हम मुंबई आए हुए मन ड्राइवर समंदर किनारे में मेरी धर्मपत्नी एक छाता लेकर रहे थे। बारिश हुई थी और गीत पर भी ने वीडियो बनाया था और हमारी हाइट भी लगभग वही है जैसी फिल्म में अमिताभ बच्चन और मौसम चटर्जी की है। जी हाँ, ये छोटे छोटे से हमेशा याद रहते हैं और कहीं ना कहीं ये वीडियो बनाना, फोटोज खींचना, कहीं ना कहीं ये याद बड़ी मीठी यादें रहती है और ऐसा जरूर करना चाहिए जब भी वक्त मिले। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि मन फिल्म का गीत जाकर बस एक आस जगा रही है, एक आस जग रही है। यहाँ पर 24 डिग्री तापमान में झुलस रहे हैं और आसमान दिख रहे, बादल तो नहीं दिख रहे, बस आग बर रही है। कहाँ से आपने ये मैसेज संदेश भेजा हमें ये लिखिए और वहाँ का मौसम कैसा है हमें ये भी लिखिए। एक श्रोता करते हैं लिखते हैं कि बूंदों से भिगोने वाली शानदार गीत से अपने आरंभ किया है, ये विविध भारती का बहुत ही फेमस गीत है, हमेशा बता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बारिश हो या ना हो लेकिन ये गीत सुनते ही बारिश बूंदों से हम भीग जाते हैं। एक और श्रोता मानते हैं कि आज तो मौसम और प्रकृति संबंधित विषय पर ही चर्चा हुई और इन्हें लगता है कि बारिश, जमीन, खुशी, अपनापन ये विषय हो सके हैं। एक और श्रोता हमारी लिखती बचपन में गांव में जब तो पहली बारिश में खेतों से उठती सौंधी खुशबू मदस्त मग माहौल बना देती थी। जी हाँ, सौंधी खुशबू बहुत कुछ याद आती है। मुझे लिख भेजिए कि आप कहाँ से हमें संदेश भेजें, वहाँ का मौसम कैसा है, बारिश हुई है, छींटे बरसे हैं या कैसा तापमान है, और आपकी बारिश से जुड़ी यादें जरूर भेजिए। लेकिन साथ साथ कई यादें बहुत अच्छी होती है और कई यादें थोड़ा सा परेशान भी करती है, तो आप इस तरह किससे भीग सकते हैं।

अमित कुमार की आवाज में गीत तेरी कसम फिल्म से आनंद बख्शी लिखा आई बर्मन का संगीत। और आपके बारिश में भीगे खत मुझ तक पहुंचे हैं या यूं कहें मैसेजेस पहुंचे हैं, डिटेल खत दे सकते हैं जो संदेश आप मुझ तक पहुंचा रहे हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं कि रिमझिम गिरी बूंदों और मिट्टी की सौंधी मह के बीच बारिश में हुई वो हमारी पहली मुलाकात आज भी जहन में।

ताजा है। अचानक आई तेज बौछार से बचने के लिए हम दोनों एक छोटे से शेड के नीचे आकर खड़े हुए थे और एक तरफ आसमान से बरस पानी था, दूसरी तरफ हमारे बीच की वो कहीं जग। हवा के ठंडकों के साथ जब हमारी नजरें मिली तो बिलकुल कहीं एक अनजाना सा जुड़ाव महसूस हो गया। बहुत ही खूबसूरती से आपने उस मुलाकात लिखा है और सचमुच एक कहानी जो है वो नजर आ रही, इस कहानी को और आगे बढ़ाया जा सकता है। बहुत ही खूबसूरत संदेश है ये। हमारे दूसरे श्रोता लिखते हैं कि आजकल बारिश सिर्फ नाम ही होती है, रिमझिम बारिश नहीं होती, एक झटके आंधी तूफान के साथ आती है और चली जाती है। हमारे श्रोता

करती हैं तो कागज कश्ती चलाने का बचपन में अपना एक महर रहता था वो उन्हें याद आता है। और गजल सुनना चाहते हैं, देखते हैं आज की लिस्ट में क्या क्या शामिल। एक और श्रोता हमारे हैं जो सफर रहे और वो कह रहे हैं हम सफर में चल रहे हैं, बेटी कार चलाइए, और हेडफोन से सुरीला सफर का आनंद ले रहे हैं। हमारा श्रोता अपनी परेशानी अपनी चिंता यहाँ प्रकट कर और कह रहे हैं कि वैज्ञानिक लोग ना जाए किस किस की भविष्यवाणियां कर रहे हैं और ऐसे में हमारे प्राण अटक जाते हैं, कई साल बाद ऐसे होने जा रहा है और बरसात बहुत कम रही है, किसानों पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसका, और जो मानसून अटका पा है आगे भी नहीं रहा, इससे खेती को बहुत ज्यादा उस पर प्रभाव पड़ेगा, ना जाए क्या होगा। देखिए चीजें हमें छोड़ देनी चाहिए भगवान के ऊपर, है ना, बस जैसे जो आ रहा है उसे उसी तरीके से उसे एक्सेप्ट लेना चाहिए, बस ये है। हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं सूरत गुजरात से, वो कह रहे हैं कि यहाँ पे बारिश हुई है और ऊपर से चिलचिला गर्मी है, आपके बारिश के गाने अलग है, तो अब हम क्या करें। आप गीत सुनिए और आनंद लीजिए। हमारे एक श्रोता कह रहे हैं कि मैं नागपुर महाराष्ट्र से लिख रहा हूँ और यहाँ कभी बारिश का लेश मात्र स्पर्श तक नहीं है, वो आसमान से आग बरस रही है। एक श्रोता हमारे बहुत ही खूबसूरत पंक्तियां लिखते हैं, एक लिखा था बदलों को भीगा गसा जवाब अभी, बहुत ही खूबसूरत। चलिए प्रोग्राम आगे बढ़ते हैं और ये जो बारिश का मौसम जिसने हमें दीवाना रखा है उस पर ये गीत।

मैंने प्यार किया ये फिल्म का राम मंगेशकर की आवाज में सुन रहे आप ये गीत, असद भोली ने इसे लिखा और राम लक्ष्मण का संगीत था। हमारे श्रोता लोग जो हैं वो हमें मौसम बारे में बता रहे हैं। जालंधर सिटी में तापमान 6 डिग्री है इस वक्त। कोई श्रोता है वो लिखते हैं कि मेरे बेटी दांत बेटा नाती वैष्णो देवी घूम गए हैं और सूचना मिली है कि वहाँ मौसम बहुत हसीन सुंदर और ठंडक से भरा हुआ। जी हाँ, वहाँ पे गर्मी के वक्त भी बहुत अच्छा मौसम होता है। और श्रोता लिखते हैं कि चिल्लाती धूप में बारिश आने सुनकर लग रहा है जैसे फिजिक्स के एग्जाम में केमिस्ट्री के प्रश्न आ गए हों। हमारे श्रोता ने अपना किस्सा साझा किया है कि धुआंधार बारिश में एक बड़ी दर्दनाक घटना हो गई थी। वो नए डाक विभाग में सिलेक्ट हुए और नजदीक शहर से थोड़ी दूरी पर गांव में उन्हें आना था। बाइक अप डाउन करते थे, बीच में एक नदी थी जिस पर पुल हुआ करता था और बारिश के दिनों में ऑफिस की छुट्टी होने पर वो निकल पड़े। ऑफिस छुट्टी होने अच्छा ऑफिस खत्म हुआ तो निकल पड़े और जोर से बारिश हो रही थी और पुल पानी पर चढ़ चुका था। ऐसे में जब वो क्रॉस करना चाह रहे उसे तो बहाव इतना तेज है कि बाइक समेत पानी में धकेल दिया गया पानी के बाव ने उनको। और गमत है कि अच्छा तैरा होने के नाते वो किनारे तक पहुंच गए लेकिन बाइक बह गई। जी हाँ, ये परेशानी तो होती है लेकिन अच्छी तैराकी ने आपको बचा लिया। और सचमुच कुछ ऐसे होते हैं, कुछ ऐसी चीजें होती है जो हर इंसान को सीखना जरूरी होता है और होना चाहिए शौक के तौर पर। और एक बहन भी होता है जो ऐसी सिचुएशन थी तो ऐसे इनको बचा देता है। एक और श्रोता ने बहुत खूबसूरत लाइन लिखी है कि शायद कोई ख्वाहिश होती रहती है मेरे अंदर ब्रिश होती रहती है। अहम फराज की लिखी पंक्तियां हैं ये। एक और श्रोता है वो कहते हैं कि 10 गीतों की लिखी इबारत में से 8वें नंबर पर ये गीत शामिल हुआ है और उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। और इस गीत में लता मंगेशकर ने ये पगला है इन शब्दों बहुत अलग अलग तरीके से गाया है और गौर से सुनने लायक है। यहाँ अजमेर से हमारे श्रोता लिखते हैं कि बारिश तो नहीं है, रिमझिम बारिश हल्की फुल्की बारिश हो रही है और काले बादल जमा है आसमान में बन रहा है और थोड़ी खुशी आती है पहर की लोगों के चेहरे पर कि बारिश होगी लेकिन काले बादल आटा बाय बाय करते हुए निकल लेते हैं। दौर से हमारे श्रोता लिखते हैं कि रिमझिम गाने सुनने के लिए बादल आ गए हैं, उसमें धूप थी लेकिन अभी अचानक मौसम में बदलाव आ गया और ऐसा लग रहा है कि भी हमारा मौसम हमारे प्रोग्राम है सुन रहा है और इसी तब्दीली आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। जी आगे बढ़े हमारे इस प्रोग्राम में अगला गीत।

हमारे शो लिखते हैं कि मेरे हमसफ के साथ में पहली बारिश बारा खा गया था और वहाँ दोनों भीग थे। उन्होंने एक साथ चाय पी और सचमुच ही पहली बारिश मुझे हमेशा याद रहेगी। अभी उनकी हमसफर उनके साथ नहीं है, लेकिन भारती का साथ सदैव ही रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। एक और पता लिखते हैं, धूप ने धरती को इतना तपाया है, हर नजर बादलों बुलाया है, खंडवा की राहों बस ये अरमान है, बरसे में झूम कर यह सबका इंतजार है। जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत संदेश। सुरीला सफर का अंदाज बहुत कुछ बयां रहा है, खूबसूरत के साथ हुआ आज का कार्यक्रम। सचमुच बारिश वाली है और हमारे यहाँ तो पहली बारिश हो चुकी है। चारों तरफ हरियाली हरियाली नजर आती है और प्रकृति को झूमते हुए देख मन भी बड़ा प्रसन्न हो जाता है। और ये संदेश भेज रहे हैं इतावर से, बहुत बहुत धन्यवाद आपके संदेश का। एक और लिखते हैं, बारिश से मच्छर बताते हैं रखो और दिन में मक्खियां और दो में कॉम्पिटिशन लगा हुआ रहता है और इंसानों को परेशान करने का, तो इन सभी से जरूर बचें। बिल्कुल, जो भी जरूरी एहतियात है उसे बरतें और जरूर जरूर बचें इन सब चीजों से, कि बारिश है ही लेकिन रात में बीमारियां भी इस समय बहुत आती है, तो अपना ध्यान रखें। हमारे श्रोता लिखते हैं, आज के जो गीत हैं लोगों को सुकून दे रहे होंगे, ही ना कहीं उन्हें लगता है क्योंकि गीत उन्हें पसंद आ रहे हैं। एक और श्रोता लिखते हैं, भीड़ तो तय है चाहे बारिश में हो या गर्मी में, अभी दुकान पर काम करते करते हमारी बातें सुन रहे हो और बाहर घने बादलाए हैं, दुकान के अंदर पीने से भीग रहे हैं वो। 2019 की एक बात कहते हैं श्रोता और उन्होंने लिखा कि अगस्त महीने में पटना में इतनी बारिश हुई थी कि पूरा पटना बारिश से डूब चुका था, जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया और से दिक्कत हुई, इससे ज्यादा दिक्कत हुई वो पीने की हुई, पीने का जो पानी था उसकी बहुत दत हुई, वो ही मिल पा रहा और जहाँ हाँ कैसे करके इंतजाम किया गया मोहल्ले में और कोई गाड़ी भी नहीं पा रही थी उस वक्त। तो ऐसे में ये कुछ चीजें हैं जो कहीं कहीं परेशानी दे है। जी हाँ, इनका ख्याल रख बहुत जरूरी है। साथ एक और श्रोता लिखते हैं कि बारिश के फुहारों साथ हंसे सुले फुहारे अब निकले, साथ में मेरी हमसफर थी और पैदल चलते हुए फोल्डिंग छतरी तेज हवा के कारण अधी ऊपर की हो गई थी, हम भी रहे थे और हंस भी रहे थे। बहुत ही खूबसूरत संदेश और अब ये गीत इस फेरिस्त में।

मोहम्मद अजीज और अनुरा पौडवाल की आवाजों में गीत भी हो तो ऐसी इस फिल्म से आप सुन रहे थे समीर ने सिखा और लक्ष्मीकांत दिलाल का संगीत था। इस साथ ही हम चले हैं इस प्रोग्राम की समाप्ति और आपके मैसेज मुझ तक बहुत से आए हैं। मैंने कोशिश की है कि सब मैसेजेस पढ़ूं, सबके संदेश पढ़ूं, लेकिन हमारे श्रोता लिखते हैं कि एक बोले बरस थे, सच में उनका ठीक ठाक था, फोन से वो प्ले रही थी और उनके गर्दन पर एक गोला आकर गिरा जो कि बहुत पेनफुल था। एक श्रोता हमारे लिखते हैं उन्हें अपने जीवन साथी के साथ बाइक पर बारिश में भीग हुए घूमना बहुत पसंद था, लेकिन अभी वो ऐसा नहीं कर सकती है। हमारे एक और श्रोता लिख रहे हैं कि आपके गीत के साथ बल आ रहे हैं, जा रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी यहाँ पर बारिश भी हो जाएगी। जी हाँ, बहुत खूबसूरत संदेश है और अब समय हो चुका है आपसे अलविदा कहने का। आपने आज का ये सफर तय किया अनुराधा के संग। इजाजत चाहती हूँ इस प्रोग्राम से जिसका नाम है सुलह सफर।

आज त्रिवेणी की धाराएं मिलेंगी वाह पर। एक ड्या घर जन्म लेती है और धीरे धीरे बड़ी होती है। माता पिता का दिल हर मोड़ पर उसकी बलाए लेते हैं। छोटे छोटे हाथों रोटी बनाती बिटिया, गुड़ियाओं से खेलती बिटिया धीरे धीरे बड़ी हो जाती है। बचपन की पायल की छुन छुन धीरे धीरे लुप्त हो जाते और बिटिया के विवाह का समय आता है। जिन गालों में अब दूध का उजाला रहा था, अब सिर्फ चुनर डालते ही वो गाल सुर्ख लाल हो जाते हैं। ससी समर्थी दुल्हन अस्म दरस्म किसी और की होती चली जाती है। माता पिता के मन में अनेकों सवाल उभरने लगते हैं कि नए घर हमारी बिटिया को उतनी प्यार से अपनाएगा ना, लाड़ो वर ढूंढ में हमने कोई कमी तो नहीं की ना, हमारी बिटिया खुश तो रहेगी ना। ऐसे तमाम सलाद के बीच बारात आ जाती है।

विवाह के समय लोग कई सारी तस्वीरें खींचते हैं, पर माँ पिता और दुल्हन के मन की तस्वीर अगर कोई ले पाता तो जानता कि उनके मन में कितनी उथल पुथल चल रही है। कहीं उम्मीद की धूप है तो कभी अनजाने का कोहरा, कभी भीगी भीगी से जुलाई की फुहार है तो कभी आंख में नमी, कभी अपने कलेजे के कुड़े को विदा करते माता पिता कई सवालों से घिरे होते हैं। इन तमाम बातों के बीच बिटिया नए घर के लिए विदा होती है। जाते समय आशीष पोटली भी उसके साथ जाती है, जिस होती है कई सारी सीख और नसीहतें। उस घर को अपना बनाने की सीख, मान और प्रतिष्ठा को हेजने की सीख, सबको अपना बनाने की सीख, भावों की लहरों पर सवार होकर वो बाबुल का घर तोड़ देती है।

मिले। विवाह यानी एक जीवन का प्रारंभ, एक नया संसार। जितना स्त्री के लिए न है उतना ही पुरुष के लिए भी होता है। दोनों मन में कई सपने और कई अपेक्षाएं होती है। शादी के बंधन में दो परिवारों का मिल होता है। खुशहाल शादीशुदा जीवन के लिए सभी के स्नेह और सामंजस्य की जरूरत होती है। ये बंधन ना रहे और आगे चलकर सुखद परिणाम दे, इसके लिए घर के अन्य लोगों का सहयोग भी अपेक्षित होता है। नहीं तो ये बंधन टूटने में देर नहीं लगती। समझदारी और सहजता के साथ साथ फिर के इस बंधन को प्रेम से लबरेज खा जा सका है। हाँ ये संभव है, हाँ ये संभव है।

0: यह है विद्यार्थी कुछ हिलों में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं अवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ ओडिशा में 47,600 करोड़ रुपए से अधिक के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। सरकार ने 16 फिक्स डोज कॉम्बिनेशन दवाओं के उत्पादन गृह और वितरण पर प्रतिबंध लगाया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा कल होने वाली नीट यूजी पुनरीक्षा से पहले देश में मॉक ड्रिल। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल तराई क्षेत्रों और सिक्किम में कुछ स्थानों पर कल तक मूसलाधार वर्षा का अलर्ट जारी किया। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच चेन्नई में जारी। और फीफा विश्व कप में ब्राजील ने हैती को 3-0 से हराकर पहली जीत दर्ज की। समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के मयूरभंज जिला स्थित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पैतृक गांव पहाड़पुर पहुंचे। राष्ट्रपति मुर्मू 68वें जन्मदिन के अवसर पर अपने गांव में हैं। ओडिशा के राज्यपाल डॉक्टर हरिबाब कंबमपति, मुख्यमंत्री मोहन चंद मांझी और स्थानीय लोगों ने उनके आगमन पर गर्मजोशी से स्वागत किया।
2: ओडिशा आदिवासी इलाकों पहुंचने एक अहम कोशिश के तहत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मयूरभंज जिले में अपने गांव पहाड़पुर गई। प्रधानमंत्री ने पवित्र सांथाली जोहरा और जहरा पूजा स्थल पर प्रार्थना की और स्थानीय आदिवासी समुदाय के लोगों के बातचीत के जिससे उन्हें उनकी समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं और जीवन शैली के बारे में जानकारी मिली। प्रधानमंत्री ने स्किल डेवलपमेंट सेंटर और SLS मेमोरियल स्कूल का भी दौरा किया, जहाँ उन्हें छात्रों से बातचीत की और उन्हें शिक्षा, कौशल विकास और आत्मनिर्भरता की दिशा में बढ़ने के प्रोत्साहित किया। ये दौरा इसलिए भी खास क्योंकि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति मुर्मू के 68वें जन्मदिन के मौके पर उनके गांव में उनका साथ शामिल हुए। इन कार्यक्रम से आदिवासी सशक्तिकरण, शिक्षा को बढ़ावा देने और समावेश विकास प्रति उनकी साझा प्रतिबद्धता पता चला है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अब रायपुर के डांगरेस में ओडिशा सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। यहाँ प्रमुख क्षेत्रों में 47,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की बीच परियोजना का उद्घाटन और उन्हें राष्ट्र को समर्पित किया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए रायपुर में प्रकाश।
1: इस समय राष्ट्रपति प्रधानमंत्री ओडिशा सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर रंगपुर में आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित हैं। इस अवसर पर ऊर्जा, पर्यटन, औद्योगिक ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई और पेयजल से जुड़ी 47,600 करोड़ रुपए से अधिक के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। इस समय प्रधानमंत्री एक विशाल जनसभा को संबोधित रहे हैं। ये सुनते हैं उनका संबोधन।
3: ओडिशा के मंत्री गणेश खुंटिया जी, कृष्णेंद्र महापात्र जी, सांसद नवाचर माझी जी, मनमोहन सामर जी, बैजन पांडा जी, अन्य महानुभाव भाई और बहनों, हमारा ओडिशा इन दिनों उत्सवों के आनंद में डूबा हुआ है। यहां का गण पर्व रज पिछले हफ्ते ही धूमधाम से मनाया गया है। महाप्रभु जगन्नाथ की रथ यात्रा की तैयारियां भी पुरजोर चल रही है। मयूरभंज के बाईपदा रथ यात्रा को लेकर भी उत्साह का माहौल है।
1: प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल भी

आएंगे हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री राज्य में विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। वे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी करेंगे। इसके अंतर्गत देश के 9,84,00,000 किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रूपए से अधिक की राशि सीधे अंतरित की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंग दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि ये दिन पश्चिम बंगाल के भारत का अभिन्न अंग बने रहने के संकल्प और आकांक्षाओं का प्रतीक है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि वर्ष 1947 में इस दिन एक ऐतिहासिक फैसले में भारत के अहम हिस्से के रूप में पश्चिम बंगाल राज्य के गठन का मार्ग प्रशस्त किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल साहित्य, संगीत, कला, आध्यात्मिकता, विज्ञान, व्यापार, वाणिज्य के प्रसिद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता में कल स्वदेश में निर्मित नौसेना के 3 जहाजों INS धुनेरी, INS संशोध और INS अग्रय का अनावरण करेंगे। इन जहाजों का निर्माण भारत में किया गया है। इनका उपयोग समुद्री सुरक्षा, सर्वेक्षण और पनडुब्बी अभियानों में किया जाएगा। ये भारत रक्षा और जहाज निर्माण क्षमता को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह आज कोल्हापुर और तिलकरंजी के दौरे पर हैं। वे मां लक्ष्मी मंदिर परिसर में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन किया और कोल्हापुर के पुलिस परेड ग्राउंड में एक जनसभा को संबोधित किया। मोदी

0: शुरू होगा।
1: इसके बाद गृहमंत्री चरण जी में जनता सहकारी के नए भवन का उद्घाटन करें तो एक सहकारी चीनी कारखाने के नामकरण और विस्तार उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsai.gov.in और हमारे न्यूज AIR ऐप पर उपलब्ध है। सरकार ने जनहित में 16 फिक्स्ड डोज कमीशन FDC दवाओं के उत्पादन बिक्री वितरण पर तत्काल भाव से प्रतिबंध लगा दिया है। ये फैसला सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर की गई विशेषज्ञ समिति की समीक्षा के बाद लिया गया। समिति ने पाया कि इन दवाओं के संयोजन का पर्याप्त चिकित्सीय औचित्य नहीं और ये उपयोग स्वास्थ्य संबंधी जोखिम हो सकते हैं। प्रतिबंध दवाओं में त्वचा दर्द और शरीर ऐंठन उपचार तथा कुछ एंटीबायोटिक दवाएं शामिल हैं। स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ने कहा कि इसका उद्देश्य केवल सुरक्षित प्रभावी और वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। मंत्रालय ने राज्य औषधि नियामकों और संबंधित एजेंसियों को इस प्रतिबंध को सख्त से लागू करने के निर्देश दिए हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी कल होने वाली UGC 2026 पुनर्परीक्षा की तैयारी के अंतर्गत आज देश भर में मॉक ड्रिल करी है। सुबह 9 बजे शुरू हुआ यह अभ्यास पूरे दिन जारी रहेगा। इस अभ्यास में 2.5 लाख से अधिक सुरक्षाकर्मी तैनात हैं। इसका उद्देश्य परीक्षा का सुरक्षित निष्पक्ष और सुचारू संचालन सुनिश्चित करना है। एजेंसी के अनुसार UGC पुनर्परीक्षा भारत के 551 शहरों और देश के 14 शहरों में आयोजित की जाएगी जिसमें 2,79,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल हैं। परीक्षा में CCTV निगरानी, आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन और परीक्षा सामग्री के सुरक्षित परिवहन जैसे विशेष सुरक्षा व्यवस्थाएं की गई हैं। सरकार के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्यवाही कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। ब्रिटेन के गाइस थॉमसन का स्थान लेंगे। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस नियुक्ति ने आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने और गैर कानूनी वित्तीय नेटवर्क खिलाफ संघर्ष भारत की प्रतिबद्धता मजबूत होती है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल दुनिया में मनाया जाएगा। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। ये विषय हर उम्र योग के महत्व को रेखांकित कर रहा है। हमारे संवाददाता कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर संस्कृति मंत्रालय देश भर में 100 स्थानों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इनमें भारत की समृद्ध विरासत और योग परंपराओं को प्रदर्शित किया जाएगा।

0: नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने कल मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय दिवस से पहले रन फॉर योग विशेष जुम्बा सत्र का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को अपने दैनिक जीवन में योग अपने के लिए प्रेरित करना था। संस्थान के निदेशक प्रोफेसर प्रदीप प्रजापति मीडिया से बात करते हुए कहा कि योग केवल एक मनाने की चीज नहीं है बल्कि पूरे साल नियमित रूप से करना चाहिए।
1: हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम 365 डेज योगा करें और इस बार के योगा के बड़े डिक्लेरेशन भी होने जा रहा है कि वर्ल्ड में कम से कम 15 से 20 मिनट अगर योग करें अपना आयाम करते हैं जो इस तरह हमारे लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स है उनको हम अच्छे तरह से मैनेज कर सकते और ये हो चुका है।
0: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का राष्ट्रीय कार्यक्रम कल कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेतृत्व में आयोजित किया जाएगा। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद और विदेशों से भारतीय मिशनों के संयुक्त प्रयासों से इस वर्ष योग दिवस कार्यक्रम

0: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य राष्ट्रीय कार्यक्रम कल कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेतृत्व में आयोजित किया जाएगा। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद और विदेशों स्थित भारतीय मिशनों के संयुक्त प्रयासों से इस वर्ष योग दिवस कार्यक्रम दुनिया भर में लगभग 2500 स्थानों पर आयोजित किया रहे हैं। इनमें 210 से अधिक भारत मिशन भाग ले रहे हैं। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: स्लोवाकिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित जाएंगे। स्लोवाकिया गणराज्य में भारतीय राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने आकाशवाणी को बताया कि स्लोवाकिया योग और आयुर्वेद लोकप्रिय हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि भारतीय दूतावास और अन्य संगठन राजधानी ब्रातिस्लावा और अन्य स्थानों पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं।
2: स्लोवाक रिपब्लिक में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए भारतीय दूतावास का मुख्य कार्यक्रम ब्रातिस्लावा शहर में आयोजित किया जाएगा। दूतावास मशहूर ब्रातिस्लावा कैसे में भी एक योग कार्यक्रम आयोजित करेगा। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने बताया कि दूतावास परिसर में हर दिन दो योग कक्षाएं आयोजित की जा रही है और अब पूरे स्लोवाकिया में सैकड़ों योग प्रशिक्षण केंद्र संचालित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल ही में हुई स्लोवाकिया यात्रा के दौरान आयुष मंत्रालय द्वारा हस्ताक्षरित समता ज्ञापन से स्लोवाकिया में योग को और मजबूत करने के रास्ते खोलने की उम्मीद है। स्मृति एस पल्लुरु की रिपोर्ट के साथ समारोह कक्ष से मुकेश कुमार बल।
1: कड़ी में आकाशवाणी समाचार आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभाव राव जाधव का विशेष साक्षात्कार प्रसारित करेगा। आकाशवाणी FM गोल्ड 100.1 MHz चैनल पर यह साक्षात्कार आज रात 9:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। श्री जाधव ने बताया कि कामकाजी लोगों के लिए सरकार ने वाइब्रेक ऐप भी शुरू किया है।
3: दिन चेयर पेटी काम करना पड़ता है, वो लोग जब लंच ब्रेक हुआ तब तक बहुत सारी छान वो लोग है, तो वो कान दूर करने के लिए उनके लिए वाई ब्रेक नाम का हमने निकाल लिया है। उसमें 10 मिनट है, तुम चेयर पर बैठे बैठे कौन से आसन कर सकते हो, करने से जो भी हमारा थकनाएं होंगी दूर हो जाएगी।
1: भारत सोमवार से शुरू हो रही 2 दिवसीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल करेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार बैठक में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और प्रतिनिधिमंडल नई सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श करेंगे। बैठक नई तकनीक से जुड़े सुरक्षा खतरों और आतंकवाद से निपटने के उपायों पर चर्चा होगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रशंसा करते हुए उन्हें मजबूत और प्रभावशाली नेता बताया। उन्होंने कहा कि श्री मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग साथ दुनिया के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक हैं। एक साक्षात्कार में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि श्री मोदी के पिछले 12 साल के नेतृत्व में भारत को मजबूत और स्थिरता मिली है। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में कल तक स्थानों पर मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में भी बारिश की संभावना व्यक्त की है। भारतीय सूचना सेवा के पूर्व अधिकारी दीपांकर उपाध्याय कल रात लंबी बीमारी के बाद कोलकाता में निधन हो गया। 70 वर्ष के थे। क्रिकेट में चेन्नई भारत और अफगानिस्तान के तीसरे अंतिम एक दिन क्रिकेट मैच में ताजा समाचार मिला। अफगानिस्तान ने 12 ओवर में 6 विकेट पर 42 रन ला लिए हैं। उधर फीफा फुटबॉल विश्व कप में ब्राजील ने हैती को 3-0 से हराकर पहली जीत दर्ज की। में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ ओडिशा में 47,600 करोड़ रुपए से अधिक के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। सरकार ने 16 फिक्स डोज कॉम्बिनेशन दवाओं के उत्पादन बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा कल होने वाली नीट UG परीक्षा से पहले देश भर में मॉक ड्रिल। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल तराई क्षेत्र और सिक्किम में कुछ स्थानों पर कल मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच चेन्नई में जारी और फीफा विश्व कप में ब्राजील ने हैती 3-0 से हराकर पहली जीत दर्ज की। इस साथ ही दोपहर समाचार का ये समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: प्रस्तुत है कृषि एवं किसान कल्याण,
5: ये है विविध भारती। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

0: मोहम्मद रफी ना की आवाज और गीत अभी आ रहे थे जब जब फूल खिले फिल्म का नाम था। आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा, कल्याण जी आनंद जी की तर्ज थी।
1: एक जानी माने पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोह यात्रा।
2: हमारे देश प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव आना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य देखने को समझने में।
1: बातें जो इतनी दिलचस्प है अब खोज,
2: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में क्या है तो मनुष्य को संबोध है।
1: जाने माने पेंटर अकेश से एक बातचीत।
2: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को दे उतना ज्यादा उसके बारे में सीखते हैं जान सकते हैं।
1: आज के मान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भती पर।
0: भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं सदाबहार नगमे।

गीता दत्त की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे। पैसा फिल्म दे साहिल लुधियानवी ने से लिखा और एस डी बर्मन की आवाज थी। आप इस वक्त सुन रहे हैं विविध भारती प्रेम सदाहार नगमे।

0: लता मंगेशकर मन्ना डे और साथियों की आवाज में गीत मधुमति फिल्म सुन रहे थे। शैलेंद्र ने इसे लिखा था, सलिल चौधरी संगीत था।
1: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है। फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्या इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: इम्पोर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीजें हम कर पाए ना तो फिर हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
1: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर टाइम पे नहीं सो खाए तुरंत सोए तो एसिडिटी की संभावना काफी ज्यादा होती है, और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद भी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
1: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 22 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रेम सदाबहार में।

मेरे महबूब इस फिल्म से एक अभी आप सुन रहे मोहम्मद रफी आजमी, शकील बदायूनी ने इसका और नौशाद का गीत था। इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम सदाबहार नगमे यहीं संपन्न हुआ है।

0: सुरेश वाडकर की आवाज में गीत अभी सुन रहे थे। प्रेम रोग उनसे सरोज आने से लिखा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तरफ थी और इसे सुनना चाहता ककाला बदाई उत्तर प्रदेश से डॉक्टर मसूर खान, मोहम्मद सरफराज खान, अहमद अंसारी और मस्त परिवार ने, उल्लास नगर से पुरुषम शामतकर, ज्योति और चेतन ने, जाबोद राजस्थान से पूजा तक, कमला देवी शंभु दयाल खट्टर ने।
1: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन

0: आपके शरीर में हो रहा है। परेशान हूं मैं। पेटिलर इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं, इन दो बहुत कॉमन है।
1: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू टेस्टेड टू योर डॉक्टर। तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद हमारी बीमारी कम हो जाए।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
1: अगर टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत हो गए तो एसिडिटी के संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7-8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं, ज्यादा फैटी लिवर चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 22 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती।

किशोर कुमार की आवाज में गीत आप सुन रहे थे याराना, उनसे अनजान ने सीखा राजेश रोशन का संगीत था। इसे सुनना चाहता कपाल सालुरा जिला बारा राजस्थान से सतीश श्रीवास्तव, श्रीमती प्रेमलता, हिमानी, हर्षित और अभिषेक ने। जसपुर उत्तराखंड, रिया हुसैन सिद्दीकी, नजमा बेगम।

रियाज, राकत, शमरीन परीन और मोहम्मद रिहान माहिरा नूर ने इसको सुनना चाहा था। गंगानगर बीकानेर से कैलाश सिंह, गोविंदा और उत्तम सोनी।

मोहम्मद रफी की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे धड़ी फिल्म से। राजेंद्र कृष्ण ने लिखा था, शंकर जयकिशन तर्ज थी। इसे सुना चाहा था रमाकांत शर्मा, मीनाक्षी रवि और अक्षय शर्मा ने जालंधर से, मॉडर्न टाउन करना से सुधीर नूतन, सुधा शर्मा और माया कुमार।

0: कुमार साहू अलकाग्नि की आवाजों में गीत आप सुन रहे थे हम राही प्यार के इस फिल्म से। इस गीत को चाहा था छत्तीसगढ़ देवरी भाटापारा के गन्नूला रजक के आर साहू अनी कुमार गणेश ने अमर सिंह का बीकानेर राजस्थान से सिकंदर अली खान और उन परिवार ने और नई छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवगन कौलिया हेमता और बल देवगन ने। इसके साथ ही आज ये प्रोग्राम मन चाहे गीत यही समाप्त होता है।
1: मन चाहे गीत
2: मन चाहे गीत
1: मन चाहे गीत यह है विविध भारती।
2: नाट्य तरंग श्रोताओ आज कार्यक्रम में आपको सुनते हैं आलोक भट्टाचार्य के मूल बांग्ला टक का हिंदी अनुवाद मृदुहीन प्राण। हिंदी अनुवादक दीप नारायण मिठोलिया निर्देशक सुदर्शन कुमार। ये आज सुनते हैं नाटक का पहला भाग।

0: सांझ होती जा रही है इस पार्क में अकेले अकेले लगता सचमुच बेंजामिन का फेर गया है ता नहीं उसकी ऐसी कोई गुप्त खबर है जिसे वो मुझसे ही छुपाना चाह रहा है आखिर ये गुप्त खबर हो क्या सकती है अभी तक की कभी कोई पता नहीं और मैं झूठ मूठ चली ही जाऊं
1: जिनी
0: हाँ
1: जिनी
0: कौन बेंच
1: खामोश हाँ? आहिस्ता इधर इस तरफ
0: लेकिन
1: इस दर के पीछे
0: आखिर मामला क्या है बेंच इतना छुप मुझे डर लगने लगा है
1: तुम्हारे डरने की कोई बात नहीं है जिनी हमारे यहाँ पहुँचने की खबर पुल को पहले लग है इसलिए प्रॉब्लम को चेंज करने पड़े हैं
0: बेंच डर सिर्फ मेरे लिए ही नहीं तुम्हारे लिए भी है
1: जिनी तुम फौरन उस बेंच पर जाकर जाओ
0: अच्छा
2: जुड़ू बात क्या है इस पार्क के शिव वाले गेट बाईं ओर की मीटिंग होने की बात है शाम 4 बजे का पर अब तो सच हो चुकी है कहीं कोई एक भी बदमाश नजर नहीं आया
3: सर फिलिप्स ने कहीं हमें गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दी
2: फिलिप्स गलत इन्फॉर्मेशन देने वाला आदमी नहीं है मुझे लगता है जुड़ू हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली है शायद उसकी भनक उन्हें पहले ही लगी है सच इन्हें गिने कुछ काले कुत पर अब तक हम काम नहीं पा सके दिस डिस्ग्रेसफुल ऑन आवर पार्ट
3: उस बेंच पर कौन बैठा है कोई लड़की है शायद क्यों
2: वही तो देख रहा हूँ
3: हाँ बड़ी हिम्मत वाली मालूम पड़ती है छोकरी
4: ए लड़की यहाँ अकेली क्या कर रही हो
2: छिपकर कुछ प्यार मोहब्बत करने आई हो शायद ना
0: नहीं नहीं मतलब यूं ही जरा घूम रही थी मैं घर ही जा रही हूँ
2: ठहरो कितनी देर से तुम यहाँ बैठी
0: जी बस थोड़ी देर मतलब सांझ से
2: सांझ से बस जी थोड़ी देर से और अब इस सांझ ठेले
0: जी मैं घर जा रही हूँ
3: तुमने यहाँ कोई मीटिंग होती थी है
0: जी नहीं नहीं देखी
2: मीटिंग मतलब एक खास बात नहीं है कुछ लुच्चे लफंगे छोकरों की जात और क्या
0: नहीं ऐसा मैं कुछ भी नहीं देखा यहाँ अच्छा तो अब मैं चलूं
2: हाँ हाँ जाओगी जाओगी क्यों नहीं अच्छा क्या तुम कॉलेज में पढ़ती हो
0: अच्छा
2: कविताएं पढ़ती हो मान लो जैसे बेंजामिन मोलाइज की कविताएं पढ़ती हो
0: हाँ पढ़ती हूँ बहुतेरे पढ़ते हैं कि अच्छा लिखते हैं
2: जानती भी हो
0: बेंजामिन को बेंजामिन को भला जानूंगी कैसे
3: वो ऐसा कोई खास रिपीटेड का नहीं है
0: अच्छा तो अब मैं चलूं
2: जाओ
3: मिस्टर थॉमसन बेंजामिन मॉरिस क्या बहुत ही डेंजरस एलिमेंट है
2: आदमी के हिसाब से डेंजरस है कि नहीं नहीं मालूम पार्टिसिपेंट उसकी कलम बंदूक से ज्यादा खौफ है कविताएं कविताएं तो जबरदस्त खतरनाक
3: ओह

0: अधरों छिपी है मृत्यु के अधरों छिपी है सही शब्द नहीं सूझा मृत्यु के अधरों छिपी माँ माँ
1: क्यों रे बेंट क्या बात है वो बुला रहा है
0: माँ दिल से जरा तो आना
1: तू उतार कर अभी आती हूँ जरूर
0: मुझे सही शब्द चाहिए ही समय बहुत कम है कुछ एक के बाद सूर्य दिवस चरण का प्रोग्राम है पीछे से प्रेस में भी
1: क्या बात बेंच क्यों बुला था
0: माँ सुनो मृत्यु देती नित्य नूतन आस जीवन की मृत्यु के अधूरों छिप है ये मृत्यु के अधूरों छिप के बाद क्या होगा
1: इसके बाद क्या होगा अरे किसका क्या होगा
0: माँ सुनो मृत्यु देती नित्य नूतन आस जीवन की मृत्यु के अधूरों छिपी है ये छिपे के बाद क्या शब्द होना
1: मुझे नहीं मालूम जाने क्या उठपट बके जा रहा
0: उठपट नहीं है माँ सुनो मृत्यु का मतलब नहीं है अंत सृजन का मृत्यु में है सार्थकता सार जीवन का मृत देती प्रेरणा प्रतिकार करने की जुम का अन्य का संघा करने की
1: चुप कर चार दीवारों के भी कान होते हैं
0: माँ अब चुप रहने से काम नहीं चला अब तो मजबूत गले से आवाज बुद करने का वक्त गया
1: नहीं बैठ ऐसी बातें मुंह से निकाल देखा नहीं देश भर में दिन पर दिन ऐसी कैसी घटनाएं घटती रही हैं
0: मैं तो देश बाहर नहीं हूँ माँ घटनाएं जैसे आगे बढ़ी वैसे वैसे हम ही खैर छोड़ो इन बातों को पहले मेरी कविता के लिए जरा शब्द तो बताओ
1: कविता के शब्द
0: हाँ
1: अच्छी बात है तो फिर अपनी लाइन और एक बार बोल
0: सुनो मृत्यु देती नित्य नूतन आस जीवन की मृत्यु के अधरों छिपी है इसके
1: मृत्यु के अधर छिपी है श्वास जीवन की
0: श्वास कोई और शब्द बोलो माँ दूसरा शब्द बोलो
1: संतरास
0: संतरास इसमें जाने के भीरुता में नीच की गंध है माँ ये तो कायरों की निशान है
1: अधरों प्यास शब्द जोड़ता हाँ फिर इसे लिखो मृत्यु के अधरों छिपी है प्यास जीवन की
0: और राइट राइट बिल्कुल बिल्कुल ठीक था माँ सच माँ माँ हो माँ तुम कभी बेंजामिन मालवेस की सचमुच की माँ हो एक बहुत बड़ी कवरी बहुत बड़ी माँ
1: अरे रोड भी पकल गई
2: बाटी
0: जीनी
1: आ बेटी अंदर आ जा बता क्या खबर है तेरे माम सभी अच्छे ना
2: हाँ मौसी सभी अच्छी तरह से वो परीक्षा नजदीक आ पहुंची है तभी वैसे इकोनॉमिक्स के चैप्टर को समझ के लिए आई हूँ
1: अच्छी बात है तुम लोग पढ़ाई लिखाई करो मैं जरा रोई घर में जा
0: जीनी कौन सी परीक्षा तुम्हारे नजदीक आ पहुंची
2: बहुत भयंकर परीक्षा उसे अग्नि परीक्षा भी कह सकते
0: अच्छा होगी कोई पर जरूर है कि तुम्हारी पहलियों को समझना मेरे लिए टेढ़ी खीर है खैर इस कविता को मृत्यु देती नित्य नूतन आस जीवन की मृत्यु के अधरों छिपी है प्यास जीवन की गीत जीवन का सुनाने की ले अभिलाष संधि क्षण में पहुंचकर वे हुए घोर हताश पूर निर्मम दानवी निर्लज्जपन में जकड़ सी सौंडेला गर्म आंख में यह नहीं प्रवाद या संवाद की वेला असह्य अन्याय हमने किस कर झेला तुरंजित राह पर बढ़कर करो जय घोष सुप्त मने रह जाए उल्टा आक्रोश मृत्यु देती नित्य नूतन आस जीवन की मृत्यु के अधरों छिपी है प्यास जीवन की
2: वाह क्या बात है बेंच बहुत सुंदर बहुत सुंदर यू आर आवर पोएट And in time, you will be a great poet, bitch.

0: वो पढ़ते हैं मेरी कविताओं को, इसीलिए तो मुझे छुप छुप भागना पड़ रहा है। हकीकत यही है। अच्छा बताओ, ये कॉमिक्स का कौन चैप्टर पढ़ोगी?
1: कोई भी चैप्टर नहीं पढ़ूंगी, पढ़ने नहीं आई हूँ।
0: अरे पढ़ने नहीं आई हो तो फिर किस लिए आई हो?
1: किस लिए आई हूँ, क्यों आती हूँ, क्या तुम नहीं जानते?
0: नहीं,
1: कुछ नहीं समझते।
0: बताओगी नहीं तो समझू कैसे?
1: सब बातें से ही नहीं जाती बेंच, समझ लेनी पड़ती है। क्यों तुम्हारी बातें सुनने के लिए आगे चलती हूँ, क्यों तुम्हारी कविताएं मुझे बेचैन करती हैं, क्या तुम मेरी आंखों की भाषा पढ़ नहीं पाते?
0: जिनी, तुम्हारी दृष्टि मेरे सीने में एक अजीब लहर सी कर देती है, मेरी कविताओं को अनुग्रहित करती है, पर केवल इस तरह की अनुभूतियों को लेकर झूठ मूठ समय बात करने का वक्त भी नहीं है जिनी।
1: झूठ मूठ से बर्बाद क्यों करे बेंच? पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम दूसरे की अनुभूति को सच कर स्वीकार ही ना करें।
0: दिल की बात दिल में ही रहे, ठीक है, क्या जरूरत है उसे बाहर सामने खड़ी स्वीकृति देने की?
1: बेंच,
0: तुम तो जानती हो मैं खतरनाक राहों का राही हूं, मेरी स्वीकृति का मतलब ही है तुम्हारे ऊपर अतिरिक्त खतरे का बोझ लाद देना। सो मैं वैसा कतई नहीं करना चाहता जिनी।
1: बेंच, तुम्हारे लिए डर से दिन रात मेरा कलेजा कांपता रहता है, भारी बूटों की आवाज कानों में आते ही मैं चौंक चौंक जाती हूँ।
0: मेरे लिए तुम्हारी छाती डर से कांपती है, तभी तो मेरा सीना हिम्मत से फूल उठता है जिनी।
1: सरा सावधानी के साथ चला फिरा करो, भेड़िए तुम्हारे चारों ओर चक्कर काट रहे हैं। तुम ही तो मेरी आंखें हो बेंच, तुम्हें अगर कुछ हो गया तो मैं बिल्कुल अंधी हो जाऊंगी, मैं बिल्कुल अंधी हो जाऊंगी बेंच।
0: जिनी हाथ छोड़ो, शायद मां आ रही है।
1: अब, अच्छा तो मैं जा रही हूँ मौसी, अब मैं चलती हूँ।
2: लिखाई पढ़ाई हो गई?
1: अब हाँ मौसी हो गई।
2: अरे थोड़ी चाय तो पी कर जा।
1: नहीं आज रहने दो मौसी, कुछ जल्दी में हूँ, मैं चलती हूँ।
2: बड़ी प्यारी लड़की है।

0: सर बहुत ही भला लड़का है। जहां तक मुझे खबर मिली है बेंजामिन मॉलियस जैसा लड़का उस मोहल्ले में दूसरा और कोई है ही नहीं। लिखाई पढ़ाई स्वभाव
1: विल यू स्टॉप टू डू।
0: यस सर। यस मिस्टर थॉमसन। मैं तो
1: कुछ नहीं जानते तुम। उसकी लिखी कविताएं पढ़ी हैं तुमने?
0: नहीं पर मैं
1: कविताओं का हर शब्द एक एक बुलेट है और इन सब का इस्तेमाल किया गया है श्वेत सरकार ये हम लोगों के खिलाफ।
0: पर बात ऐसी है सर कि मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली
1: सारी
0: है।
1: गलत है। बेंजामिन मोलाइस भला लड़का है उन ब्लैक स्वाइनों के लिए हमारे लिए नहीं। इस बात को याद रखो।
0: यस सर।
1: तुम्हें पता है हमारे सबसे ज्यादा वफादार इन्फॉर्मर फिलिप स्लेपी का इन लोगों ने ही खून किया है।
0: अच्छा इनकी इतनी हिम्मत। तब तो फौरन उनके खिलाफ कार्रवाई ना करने से दूसरों का मनोबल टूट जाएगा सर।
1: यस चारों ओर से कॉम्बिंग अभियान शुरू कर दो। कॉले कुत्तों का एक ही पिल्ला बच ना निकले।
0: ओके सर।
1: मेरा नाम थॉमसन है। स्टेट सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के थॉमसन द टेरर को भला कौन नहीं जानता। हमारे लोगों पर हाथ उठाकर सोचा है बच निकलोगे बच्चों? सारा कुछ जलाकर राख कर डालूंगा। कमान चढ़ो।
0: यस सर।

0: कहना ही भूल गया बाबू, आज जोहान्सबर्ग गणतंत्र के फ्रंट की एक मीटिंग होगी यहाँ, लगता है वही सब आए हैं, देखता हूँ।
1: तो जेम्स तुम भी?
0: हाँ बापू, मेरे जैसे हजारों हजार लड़के अपनी जिंदगी को दांव पर लगाए जूझ पड़े हैं जिस स्वाधीनता की लड़ाई में, उस लड़ाई में मैं भी शरीक हूँ बापू। आइए आइए मिस्टर जैकब। नमस्कार।
2: नमस्कार।
0: नमस्कार मिस्टर सावरकर।
2: नमस्कार।
0: अंदर आ जाओ ना।
3: माँ, हम तुम्हारे वही बेटे हैं, इस बार जीवन की आशा बटा लाए हैं, अटल विश्वास का एक कमल खाया है माँ।
4: ये तुम्हारी कविता है बेटे?
3: नहीं, एंगोला के प्रति कवि ऑगस्टो नेटो की है।
0: तुमसे परिचय तो करवा दूं, ये मेरे पिता मिस्टर जोसेफ पिस्से हैं, और आप हैं हमारे संगठन शाखा के नेता टॉम्स जैकब।
2: नमस्कार।
5: नमस्कार।
0: और आप रॉबिन खापड़कर हैं, इनके जिम्मे ही नाटाल प्रदेश का नेतृत्व है।
2: नमस्कार।
5: नमस्कार। खापड़कर माने भारतीय वंश के?
0: हाँ बापू, ये भारतीय वंशोद्भूत हैं।
5: अच्छा अच्छा, बैठिए आप लोग।
0: बापू, बैंजर को तो तुम जानते हो?
5: अरे इसे भला जानूंगा मैं? अच्छी तरह जानता हूँ, यही तो हमारा सिपाही जिसके कलम में फूट निकलती है काले लोग के रुदन खून पसे से लिखी कविताएं।
3: नहीं नहीं, ऐसा न कहे, भला मुझमें इतनी ताकत का?
6: अरे भाई, किसकी ताकत नहीं है, और वो कहाँ छिपीती है इसे खुद भी नहीं जानता।
3: इस तरह से मुझे ऊपर ना लिए मिस्टर जब, मैं मातृभूमि का एक मामूली बिना सा सेवक हूँ।
5: अच्छा भाई, तुम लोग बाय करो, मैं जरा चका पानी चढ़ा।
0: ठीक है बाबू। बाबू, पानी जरा ज्यादा ले लिया, और भी चपन जने आगे।
5: अच्छा।

0: आज भी नहीं आया बेंच। आज 5 दिन होने को और बेटे को घर लौटने की फिक्र तक नहीं। शहर भर में पुलिस ने उन्हें उथल थल मचा दी है। ईश्वर जाने बेंच क्या करता है, क्या सोचता है, फिर तो कुछ भी समझ में नहीं आता, कुछ भी समझ नहीं आ रहा।
1: मौसी, मौसी,
0: जिन्नी, आओ दी, इस कमरे में चलो, आओ, बैठो।
1: बेंच की खबर में मौसी?
0: अरे ये कैसे खबर मिलेगी बेटी, मैं तो भरोसे बैठी हूँ, कोई खबर मिली?
1: जो तो कोई खबर नहीं मिली।
0: पर क्या?
1: न जाने, वो पूछो।
0: जिन्नी बता बेटी, क्या खबर है मेरे लाल की? बहन कहाँ है, कैसा है?
1: ऐसी कोई बात नहीं है मौसी, सब ठीक ठाक होगा। वो एक मीटिंग।
0: मीटिंग? किस मीटिंग?
1: अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस की उपचार की एक मीटिंग है, शायद बेंच वहीं आया होगा।
0: कि मीटिंग कहाँ है?
1: ये तो नहीं मालूम मुझे।
0: मीटिंग, गुप्त समिति, इधर उस जासूस फिलिप्स खून होने के बाद से भेड़ियों की नजरें चारों घूम रही। पता नहीं मेरा बच्चा कहाँ होगा, कैसा होगा।
1: अच्छा होगा, ठीक होगा मौसी, निश्चित रूप से सलामत हो, तो कुछ नहीं हो सकता, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, सब अच्छी तरह होगा, सब राजी खुशी होगा ना मौसी?
0: तुम ठीक कह रहे हो बेटी, मेरा बहन जरा राजी खुश है, राजी खुशी रहेगा।

0: इस हमारी स्वाधीनता की जन्म में बदलती है और यही वजह है स्वाभाविक रूप से हमारी जिम्मेदारी पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई।
1: इस सिलसिले में जैकब मेरा ये निवेदन है कि आज अपनी गुप्त शाखा गठन के पूर्व इतिहास की जानकारी सबको दी जाए, क्योंकि हमारे बहुत लोग ऐसे हैं जिन्हें के बारे में कुछ भी नहीं मालूम, हालांकि उन लिए भी ये सब कुछ जानना जरूरी है। मैं समझता हूँ एक क्षण इस बात को भी निपटा लेना।

0: होगा।
1: इस बारे में आप लोगों की क्या है?
2: गुल, मिस्टर रविन खापर का सुझाव एकदम सही है,
3: लेकिन इस बात का ख्याल रखना होगा कि हम स्वाधीनता संग्राम के स्रोत से कहीं न जाएं, अस्कर आम जनता से कहीं न हो जाएं।
4: तो फिर सुनिए, सन 1952 में चंद काले लोग पैदल चलकर श्वेत आदमी के खेल कूद सुरक्षित इलाके में घुसे थे, रंग भेद के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करने के लिए। उस दिन की उस घटना ने धीरे धीरे आगे चलकर सारे राष्ट्र अहिंसक विवाद का रूप ले लिया,
1: और उस विवाद के कंठों दबोचने के लिए शार्पे की सरकार ने एक जन्य तरीका बनाया था।
4: हाँ, 700 राउंड गोली चली, 60 लोग मरे और 186 घायल हुए। उसके बाद ही केवल अफ्रीका की राष्ट्रीय कांग्रेस ने उमखंटो उइसिजुई अथवा राष्ट्रीय प्रतिबंध के नाम से एक सशस्त्र वाहिनी गठित करने का प्रस्ताव पारित किया।
3: कौन कौन हो सकता है?
5: कौन है? कौन कौन है?
3: अरे ये तो जोन बर्क के नेता रोयंगा आवाज है। जेम्स, जल्दी से दरवाजा खोलो।
5: अरे हुआ ऐसा?
3: क्या बात है?
5: क्या हुआ?
3: ठीक है, किसने ऐसा किया?
6: उसने यहाँ आने के लिए निकला था, बाद में मालूम हुआ कि कर्फ्यू लग गया, चक्कर काट कर बेहोश से आ रहा था कि अचानक था अब टॉम्स अपने दल बल के साथ सामने मेरी ओर चला आ रहा है।
5: ओ, तब तो उन्होंने आपको जरूर दे
6: दिया। हाँ, भी लिया था, तभी चेस किया मुझे, मैं कुछ बार फांद कर सो पाया, लेकिन के पहले गोली लगी मेरे पैर में।
5: चलिए पहले पहले मैं ये बेल्ट बांध दूँ।
3: बांधो बांधो। देखो जैसे हो रोयंगा को अभी ही वक्त डॉक्टर मॉरिस के पास ले जाना।
1: कंधे के सहारे चल सकेंगे ना?
6: जरूर चलूंगा।
3: तो फिर बस अब ये और देर करना ठीक नहीं। आइए पीछे वाले दरवाजे निकलकर बड़ी ओर नए रास्ते से चलाइए। देखो ईश्वर इनकी रक्षा कर। अब हमें क्या करना चाहिए?
5: बाबू बाबू दरवाजा जरा देर से खोलना।
3: अच्छा, आता हूँ आता हूँ आता हूँ।
5: आप लोग जो लोग अंदर हो ये सब क्विक कहाँ है ये सब? तो आप ही जोधर से हैं?
3: जी हाँ।
5: ये कौन है? चलो लड़का है, क्या नाम है तुम्हारा?
3: जिम्स पिस्से।
7: वाले का दरवाजा खुला लगा उसी ओर भागे।
3: आखिर मामला क्या है सर? कुछ भी तो समझ में नहीं आ रहा है।
5: हाँ, पीछे कीजिए, अभी समझ में आ जाएगा। बताइए अभी अभी पैर में गोली खाकर जो छोक रहा था कहाँ गया?
3: यहाँ तो कोई नहीं आया सर।
5: शट अप, झूठ नहीं कहा। किधर वो शैतान?
7: नहीं सर, उस तरफ कोई नहीं है।
3: मैं सच कह रहा हूँ, यहाँ कोई नहीं है।
5: मैं भी तो सच ही जान चाहता हूँ। तुम्हारे दोस्त के खून के दागों ने हमें ठीक जगह पहुँचा दिया।
7: मिल गया?
5: क्या मिल गया?
7: जात पर पट्टी बांधी गई, तेरे ही खून सनी रही, तभी खून के दाग और खेकी और खाई नहीं पड़ रहे।
5: यू आर राइट
7: सर। इसके अलावा इस कमरे में इन दोनों को छोड़कर और भी कम से कम 5 जने थे। अभी एक मिनट ले, उन लोगों ने यहाँ बैठकर चाय की चुस्कियाँ ली हैं। ये देखिए चाय के 7 कप जो अभी भी ठंडे नहीं हो पाए।
5: तो मिस्टर जोसेफ पिस्से, जरा बताइए तो सही, आपने अपने उस मेहमान का कहाँ चला कर दिया? समझते हैं हम सबको जान चुके हैं।
3: नहीं नहीं जी, सर अभी थोड़ी देर पहले आदमी,
5: हम लोग उसे नहीं जानते हैं। मैंने तो नहीं पूछा है। हाँ, तो आप कहिए।
3: हाथ बंदूक लिए एक अनजान आदमी अचानक घुसा सर, उसमें डरा कर रकम पर पटाने को मजबूर कर दिया।
8: समारोह में कई परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे, इसके साथ ही कई अन्य योजनाओं का शिलान्यास भी करें। साथ ही माननीय प्रधानमंत्री इस अवसर पर किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी करेंगे। आइए आपको सीधे कार्यक्रम में लिए जाते हैं। विवरण दे रहे हैं सिद्धार्थ कुमार सिंह और वैभव ज्योत्सना श्रीवास्तव।

0: आज का दिन पश्चिम बंगाल के लिए भी खास है क्योंकि आज है पश्चिम बंगाल दिवस और ये 1947 में बंगाल विधानसभा द्वारा पारित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के उस ऐतिहासिक प्रस्ताव की याद आता है जिसके तहत बंगाल के विभाजन के बाद पश्चिम बंगाल एक अलग राज्य के रूप में भारत का हिस्सा बना और आज पश्चिम बंगाल दिवस के दिन देश के किसानों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए आज पीएम किसान उत्सव दिवस भी मनाया जा रहा है जिसके मुख्य कार्यक्रम का आयोजन तारकेश्वर में किया गया है। आप बता दें कि तारकेश्वर जो पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में स्थित है इसे बाबा धाम या शिव शहर कहा जाता है जो पश्चिम बंगाल दिवस के साथ साथ आज का दिन पीएम किसान उत्सव दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस विशेष अवसर से कुछ देर में माननीय प्रधानमंत्री महोदय प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यानी पीएम किसान की 23वीं किस्त जारी करेंगे और इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम का आम देखा हाल लाने के लिए मैं हूं आपके साथ सिद्धार्थ सिंह और मेरे साथ हैं मेरे साथी कमेंटेटर वैभव ज्योत्सना श्रीवास्तव।
1: एब्सोल्युटली सिद्धार्थ, अ ग्रेट डे फॉर द स्टेट ऑफ बंगाल, अ ग्रेट डे फॉर द फार्म ब्रदर्स सिस्टर ऑफ द कंट्री, अ विकसित बंगाल, अ विकसित भारत, अ डेवलपिंग बंगाल, अ डेवलप्ड इंडिया, रिजॉल्व टू द कंट्री अ विकसित भारत, अ डेवलप्ड इंडिया बाय 24/7 टू मेक द लाइव्स ऑफ द पीपल ऑफ आवर ग्रेट नेशन सेफ, सक्सेसफुल एंड सस्टेनेबल. To help and assist our farmer brothers and sisters have the lives that they have always dreamt of. This is the mission of the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, who has made a vow to make India world class, the India of our dreams and aspirations. Prime Minister Shri Narendra Modi will release the 23rd installment of the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi PM Kisan scheme to the eligible beneficiaries on the 20th. That's today, was also the West Bengal Day, because it was this day that the West Bengal state was founded. From Tarkeshwar, located in Hooghly district in West Bengal, the event will be organized by the Ministry of Agriculture, Government of India, with the support of the Government of West Bengal. An amount exceeding 18,808 crore will be transferred directly into the accounts of over 9.44 crore farms in the 23rd installment. Over 2.18 crore women farms will receive the benefit in the 23rd installment. Siddharth, truly a day to celebrate India of tomorrow, truly a day to celebrate the vow that the Prime Minister had made to the people of the nation that yes, India will be developed, India will be the India of our dreams, and we will never ever leave our farm brothers and sisters behind.
0: बिल्कुल वैभव, भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में जैसे संकल्प लिया है माननीय प्रधानमंत्री और जिस तरह की बात चल रही है ये बहुत बड़ा कदम है और आज जबकि से कुछ दिन माननीय प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि किसान की 23 किस्त जारी करने रहे हैं और आपको बता दें कि इस किस्त के अंतर्गत देश भर के 9,44,00,000 से अधिक किसानों बैंक खाते में सीधे 18,880 करोड़ रुपए से अधिक राशि अंतरित की जाएगी और खास बात वैभव यहाँ के है इस किस्त से 2,18,00,000 से अधिक महिला किसान लाभान्वित होंगे। ये एक वुमेन एम्पावरमेंट की जब हम बात करते हैं वैभव या महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं उसमें भी एक बड़ा कदम है और आपको बता दें कि जैसे पश्चिम बंगाल की हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल में ही 45,00,000 से अधिक लाभार्थी के खातों में 900 करोड़ से अधिक की राशि जमा की जा रही है जिसमें राज्य में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान के अंतर्गत कुल जो वितरण राशि यहाँ पर है वो 15,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी। और ये भी बता दें 2019 में योजना के शुभारंभ के बाद देश भर में कुल वितरण राशि जो थी 4.46 लाख करोड़ थी और उससे ज्यादा हो गई और अब तक 22 किस्तों के माध्यम से लगभग 4,28,000 करोड़ रुपए देश करीब 9.5 करोड़ किसानों के खाते में सीधे हस्तांतरित किए जा चुके हैं। तो वह ये एक जहाँ एक ओर हम महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं वहीं दूसरी ओर किसान सशक्तिकरण की भी बात चल रही है क्योंकि जैसा कि सरकार का उद्देश्य है कि प्राथमिकता हमारे प्रधानमंत्री की किसानों को आगे रखना, किसानों को लेकर इस विकास यात्रा को आगे रखना है।
1: Absolutely, Siddharth, to make the incomes of the farms go double and triple, when the country develops, we have to take care of every person in the nook and corner of the country. The policy or the basis of foundation of all missions, which is Atyodaya. When we keep

0: और निर्णय से जुड़ा है। 15 अप्रैल 1947 को तारकेश्वर में बंगई हिंदू महासभा एक महत्वपूर्ण 3 दिन का अधिवेशन था। इस अधिवेशन में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को पश्चिम बाल के गठन के लिए कदम उठाने के आधिकारिक रूप से अधिकृत किया गया था और इसी ऐतिहासिक जनादेश के आधार पर डॉक्टर मुखर्जी ने बंगाल विभाजन का प्रस्ताव रखा और आज पूरे पश्चिम बंगाल में ये दिवस पारंपरिक रूप से मनाया जा रहा है।
1: सिद्धार्थ इन द ग्रेट वर्ड्स ऑफ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, टेस्ट अगेंस्ट इनजस्टिस, रेजिस्ट ऑप्रेशन एंड नेसेसरी रिटेलिएट। दीज वर द वर्ड्स ऑफ दिस ग्रेट मैन हु गेव विजन टू पीपल ऑफ वेस्ट बंगाल दैट यस वी एज पार्ट ऑफ इंडिया हैव मेक इंडिया अ सोनिक चिड़िया द गोल्डन बर्ड अगेन। वी हैव फॉट अ लॉन्ग बैटल अगेंस्ट द ब्रिटिश राज अगेंस्ट द कॉलोनियल रूल एंड नाउ इट्स टाइम दैट वी टेक थिंग्स इनटू आवर ओन हैंड्स एंड वी मेक वेस्ट बंगाल द कंट्री ग्रेट। एंड टुडे इज ओकेजन wherein we remember all those great years during the critical years 1946-1947, Dr. Shyama Prasad Mukherjee has a powerful voice for safeguarding the interests of Bengal and its people. Strong public opinion emerged, demanding that Western part of Bengal within India, Tarkeshwar, stands a silent witness to that mentioned chapter of history. On June 20th, 1947, the historic decision, as told by Siddharth, was taken, determining the future of Bengal, which later the foundation stone for the formation of West Bengal. This is glorious history. This is a pride of heritage. This is a commitment to progress.
0: बिल्कुल अब ऐसा कि तुमने राइट की बात करी तो इस वर्ष के पश्चिम बंगाल दिवस का विषय है पश्चिम बंगाल विरासत सद्भाव और विकास राज्य सांस्कृतिक समृद्धि सामाजिक एकता और विकासात्मक आकांक्षाओं को ये दिवस दर्शाता है। आपसे आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल दिवस के अवसर पश्चिम बंगाल के सभी नागरिकों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि दिवस उस राज्य का जश्न मनाता है जिसने साहित्य संगीत कला आध्यात्म विज्ञान व्यापार एवं वाणिज्य सामाजिक सुधार सहित अनेक क्षेत्र में अपने मूल्य योगदान से भारत के इतिहास को महत्वपूर्ण रूप साकार दिया है। माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल ने अनगिनत तरीके से भारत की राष्ट्रीय चेतना को समृद्ध बनाया है और जरा की बात बंगाल के लिए बेहद खास है और ये दिन उस राज्य कृष्ण मनाता है जिसने साहित्य संगीत का को एक नई दिशा दी वैभव। और बंगाल जब भी बात होती है तो इस तरह से जिस तरह का बंगाल का हम देख रहे हैं कि वहां का साहित्य वहां की संस्कृति और बंगाल अब विकास की एक नई ऊंचाइयों को छूने जाए है।
1: With which the government has been formed in Bengal after years and years of injustice. Now we see that the government, this will be a government, which will be a government of a double engine. And today function, Siddharth, it's not just something that we see for the first time. This is the 23rd installment. This is a direct transfer. We don't just see one promise. We see many promises together. We see an actual execution of the digital Bharat. We see middlemen. We see direct transfers, financial benefits going into the hands of brother and sister farmers throughout the country. This is a place. An amount seeding 907.2 crores will be transferred to over 45.35 lakh beneficiaries in West Bengal alone, the 23rd installment. Imagine the mammoth scale on which this PM Kisan Samman Nidhi is operating right now and the mammoth scale on which it is benefiting farmer brothers and sisters in the country. Along with the release of the 23rd installment, Siddharth, of PM Kisan Nidhi, the following schemes or the programs that will be launched will be Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana, that is the restructured weather-based crop insurance scheme. The next one will be Digital Agriculture Mission. There will also be National Mission on Natural Farming, NMF, and Pradhan Mantri Dhan Dhanchi Yojana, which was approved by the Cabinet in the July of 2025 and launched on the 11th of October 2025. An initiative aimed at accelerating agricultural growth in 100 districts characterized by low productivity, low cropping intensity, and limited crop flow. Iman. We are taking so many steps. It's not just the crop flow that's going to the farmers. It's just the money that is going to farmers. It is also fertilizers. It is also the good quality of seeds. It is

0: Also, the scientific research that is going on continuously in the country, which is helping farmers gain momentum and be a part of this development journey.
1: बिल्कुल वैभव, जैसा कि तुमने बताया कि ये जो यात्रा है ये न सिर्फ योजनाओं की यात्रा है बल्कि किसानों को हर तरीके से सशक्त बनाने की यह है। और आज प्रधानमंत्री जी कई केंद्र कृषि योजनाओं का शुभारंभ करने वाले हैं। योजनाओं में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, डिजिटल कृषि मिशन के अंतर्गत एग्रीस्टैक, प्रति खेती राष्ट्रीय मिशन और प्रधानमंत्री धान कृषि योजना शामिल है। प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिसे हम PMBY का नाम देते हैं, इसका शुभारंभ करेंगे, जिससे विश्व की सबसे बड़ी फसल बीमा योजना का लाभ राज्य के किसानों तक पहुंचेगा। 2026-27 के दौरान इस पहल का उद्देश्य पश्चिम बंगाल राज्य में लगभग 14 लाख हेक्टेयर की भूमि पर लगभग 50 लाख किसानों को बीमा कवरेज प्रदान करना है, जिससे लगभग 28,140 करोड़ के अनुमानित बीमित मूल्य की फसलों की सुरक्षा हो सकेगी और किसानों को पर्याप्त प्रीमियम सब्सिडी के माध्यम से सहायता प्रदान की जाएगी। और इसके अलावा, जैसे कि वैभव हम जानते हैं, डिजिटल जमाना है और जिस तरह से भी ये सी चीजें चल रही हैं, डिजिटल कृषि मिशन के अंतर्गत क्या होने वाला है, प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल में एग्रीटैक का शुभारंभ कर रहे हैं। इस अंतर्गत उर्वरक वितरण, किसान क्रेडिट, प्रत्यक्ष हस्तांतरण और न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली के अंतर्गत जैसे सघन कृषि संबंधी सेवाओं के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म, यूनिफाइड डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध होगा। और ये पहल कृषि क्षेत्र में डिजिटल शासन को मजबूत करी और किसान केंद्रित सेवाओं के कुशल वितरण को सुगम बनाई, तो अब चीजें डिजिटली लोगों के पास पहुंच जाएंगी बहुत फास्ट।
0: एब्सोल्यूट एज यू सर, चीजें बहुत जल्द लोगों के पास पहुंच जाएंगी। आई वांट टू से दैट इट वोंट जस्ट बी द प्रोक्योरमेंट ऑफ थिंग्स दैट विल हैपन इन अ वेरी स्मूथ एंड अ वेरी फंक्शनल वे, बट द होल लाइन ऑफ क्रेडिट. Once you get the raw material, which is of a good quality, which has been backed by scientific research, which has been done by great government institutions, huge amounts of money that has been invested into this, you get those raw materials into the soil, which is continuously made fertile by more fertilizers, again, through natural and organic ways, then you get the produce of those farms, you get them to the markets at a good rate, again, benefit to the farmers. And then when you get those rates, and when you have to improve, or let's say you have to develop your farm, you have to expand your farms, get the credit facilities. So at each and every level of this whole line flow, you're getting support from the government. Kisan or the farm brothers and sisters are getting support from the government. That is exactly what should happen. That is the feeling, that is the concept of frontier. When you include each and every person who is in the nook and corner of the country, when you include everyone together in development journey, this is exactly when you get a developed Bharat. That is exactly when you get a Viksit Bharat.
1: बिल्कुल, विकसित भारत की बात आप की है। और एक सरकार की जो नई पहल है, इसमें जिस तरह से कोऑपरेटिव सोसाइटीज का निर्माण किया जा रहा है, जो मिडिलमैन की भूमिका है उसको खत्म किया जा रहा है कि किसान को सीधे मार्केट में एक अवसर से, आप ऐसा सोच के वैभव के गांव में हुआ कोई बात या देश के किसी सुदूर क्षेत्र में कि किसान का प्रोड्यूस होता है, जो यह प्रोडक्ट होता है उसको एक बाजार को उपलब्ध करा, सरकार की मंशा के देश ज्यादातर जो ऑपरेटिव को हम डेवलप करें, इसको डेवलप करें और ज्यादा से ज्यादा किसानों को इस जोड़े, ताकि एक एक जो व्यवस्था है वो डिजिटल में उनको एक टेक्नोलॉजी मिले। जैसा आज आपने टेक्नोलॉजी की बात करी कि उत्कृष्ट तकनीक के साथ एक उत्कृष्ट उत्पाद की बात करते हैं वो किसानों का लोगों तक पहुंचने के लिए, और जितनी भी सारी उसमें इस पूरे प्रोसेस में, इस पूरी प्रक्रिया में, जहां जहां किसानों, चाहे हम किसके सॉइल की बात करनी हो, चाहे फर्टिलाइजर की बात करनी हो, चाहे हमें अन्य टेक्नोलॉजी की बात करनी हो, आज ड्रोन दीदी बात होती है तो किस तरीके से आज वेदर फोरकास्टिंग की बात होती है, हम हर तरीके से वैज्ञानिक रूप से किसानों को सशक्त बनाने की कोशिश कर रहे हैं।
0: You've used and you have used this word earlier as well, which is sashakt banana, is to make the farmer brothers and sisters empowered. How to make them empowered exactly, that is the question, and that was probably the question in mind of the Honorable Prime Minister when he had introduced the Digital India Mill. Because imagine a farmer sitting in one corner of a village somewhere completely disconnected what is going on in the world, but he knows and he trusts the

0: घटना। और इस समय हम देख पा रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी का मंच पर आगमन हो रहा है, वो मंच पर पहुंच गए हैं और चारों तरफ से ये लोगों की आवाजें उनको अभिवादन करते हुए स्वागत करते हुए लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं और माननीय प्रधानमंत्री महोदय अपना स्थान ग्रहण कर लिया है और
1: The Honourable Prime Minister on the stage sitting along with the Governor of Bengal, Sri Ravi, and the Chief Minister of West Bengal, Sri Bindu Adhikari, people training their necks, now the national anthem and the national song.

0: ऑफ वेस्ट बंगाल।
1: जी हाँ, माननीय प्रधानमंत्री इस समय उनका स्वागत किया रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं इस समय, और प्रधानमंत्री जी के साथ
2: अभिनंदन करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी,
1: माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने के लिए मुख्यमंत्री माननीय शुभेंदु अधिकारी।
2: सम्मान प्रतीक पहले बाबा तारक जी प्रतिक्रिया।
1: जी हाँ, बाबा सारनाथ जी की प्रतिकृति उनको भेंट करते हुए और बंगाए माँ दुर्गा शैली में बहुत तो है और माँ दुर्गा की पूजा की जाती है और माननीय प्रधानमंत्री महोदय को भेंट देते हुए और
2: कॉमिक मिठाई रसगुल्ला रोशन,
1: और वो बंगाल का जो रसगुल्ला है वो तो पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में प्रसिद्ध, उसको भेज रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी।
2: जोधोरा संदेश यानी संदेश के अंदर रस से भरा हुआ एक अनमोल मिठाई।
3: सिद्धार्थ, यू शुड रिमेम्बर दैट दिस इज नॉट जस्ट अ कनेक्शन ऑफ लिन, इट्स जस्ट अ कलेक्शन ऑफ ट्रेडिशन ऑफ लेगेसी ऑफ हेरिटेज ऑफ स्वीट्स ऑफ all the things that now people are expecting from government, the sweetness of dream aspirations that the people have from honorable prime minister,
1: aur woh uski mithas yahan jo jan samuday hai mein dikh raha hai mani pradhanti ji logo sambodhit kar, aur is samay mukhyamantri mahoday jo woh sambodhit karne liye aaye hain
4: mane dr shyama prasad mukherjee laho pranam, dr shyama prasad mukherjee laho pranam, केसरी लह प्रणाम, स्वामी प्रमानंद लह प्रणाम, सम्मान्य देशेर यशस्वी प्रधानमंत्री, गोटा पृथ्वी सबचे जनप्रिय नेता, जिनी 140 कोटी भारतवासीर हृदयेर अंतरेर आत्मीय, जी निजे के प्रधानमंत्री बोलें ना प्रधान सेवक बोलें, उनके बाबा तारक नाथेर पुण्यभूमि तारकेश्वरे पश्चिमबंग दिवसे पश्चिमबंग सरकार पक्ष के आमी प्रणाम श्रद्धा एवं स्वागत जानाच्छि। आमादेर मध्ये उपस्थित आछेन ई राज्येर अत्यंत लोकप्रिय एकजन राष्ट्रवादी राज्यपाल, আমাদের সরকারের প্রধান পরিচালক সম্মানীয় আর রবিজি এবং জনতা জনার্দন, আজকে এই ঐতিহাসিক দিনে এই তারকেশ্বরের পূর্ণভূমিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তার ব্যস্তম শিডিউলের মধ্যে উপস্থিত হয়েছেন, তা কারণ আমি অল্প কথায় নিবেদন করব। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জি উড়িষ্যায় মহামহিম রাষ্ট্রপতিজির সং প্রোগ্রাম করে এখানে এসেছেন, তাকে কলকাতা ফিরতে হবে, তিনি আগে লোকভবনে থাকবেন, আগামীকাল বিশ্ব যোগা দিবসে বন্দে যোগম কর্মসূচিতে তিনি লক্ষ লক্ষ যোগা অভ্যাসকারীদের সঙ্গে থাকবেন, তাই আমি বিস্তারিত বক্তব্য রাখব না। 1947 সালে ডক্টর শ্যামা প্রসাদ মুখার্জির নেতৃত্বে এখানে হিন্দু মহাসম্মেলন হয়েছিল 4 এপ্রিল কে 7 এপ্রিল, সেই দিন এখানে রেজুলেশন অর্থাৎ সিদ্ধান্ত হয়েছিল যে আমরা পশ্চিমবঙ্গে ভারত ভুক করতে চাই, আমরা কংগ্রেসের বিশিকা হয়ে দেশ ভাগ যার যন্ত্রণা এখনো ভারতবর্ষের মানুষ বয়ে নিয়ে চলেছে, আমরা বাঙালি হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ এই পশ্চিমবঙ্গ ভারত মাতার আশ্রয়ে আমরা শরণ নিতে চাই, এই সিদ্ধান্ত হয়েছিল। এর আগের কংগ্রেসের সরকার, কমিউনিস্টের সরকার, তৃণমূলের সরকার

0: मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से विनम्र अनुरोध करी हूँ कि वे कृपया विभिन्न मंत्रालय की कुछ विशेष योजना का शुभारंभ, उद्घाटन तथा राष्ट्र को समर्पण करने की कृपा करें।
1: The release of the PM Tan Nidhi, the 23rd installment, be done by the Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi with a smile on his face and a confident hand. Now, this has been released. Various beneficial schemes for the people of the country, various schemes including infrastructure of railways, of roadways, of port developments, of trees, of highways, so many things together being released by the Honorable Prime Minister.
2: जी हाँ, माननीय प्रधानमंत्री ने कई सारी योजनाओं का शुभारंभ किया आज, और इस तरीके से लगातार यहाँ पे आप देख रहे हैं। और हम आपको बताना चाहते हैं कि इस रंगारंग कार्यक्रम के तुरंत बाद ये जो नई विकास परियोजनाएं हैं उन परियोजनाओं की शुरुआत की है माननीय प्रधानमंत्री जी।
1: इट रिलेट्स टू द गुड प्रोडक्शन, द लेबोरेटरीज दैट आर देयर, रिलेट्स टू द पोर्ट्स दैट आर डेवलप्ड, रिलेट्स टू द फार्म प्रोड्यूस दैट विल बी गिवन अ फेयर शेयर इन द मार्केट। All these things have released now by the Honorable Prime Minister. The people in the next happy to see the Prime Minister and happy to see the fact that the Prime Minister has delivered on each and every promise that he had made. And the one win that is in mind is, of course, Viksit Bharat for Developed India 2047.
2: जी हाँ प्रधानमंत्री, अभी लगातार कई सारी परियोजनाओं का शुभारंभ रहे हैं। और अब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान योजना की जो 23वीं किस्त का हस्तांतरण माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने रिमोट का बटन दबाकर किया, और इसके साथ ही ये किसान के खाते में ये रकम पहुंच गई। आज 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसान के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपए वो उनके खाते में पहुंचे।
1: So that's more than 2 crore women beneficiaries are amongst those farmers who will be getting this direct transfer, this installment PM Kisan Samman Nidhi. Imagine the level at which this scheme is now operationalized, is functional, is being executed. Imagine what is happening now, the moment that everyone has been waiting for. Everyone is now waiting for the fact that yes, the Honorable Prime Minister will speak his heart out. And there he is on stage. Prime Minister
3: Mahadev par virajman Rajpal R.N. Ravi ji, yahan ke lokpriya aur urjavan mukhyamantri Narendra Modi ji,

अन्य सभी महाभाव और बंगाल के मेरे भाई और बहनों, बाबा तारकनाथ और बंगाल की पुण्य भूमि पश्चिम बंग दिवस की ऐतिहासिक तारीख और इतनी बड़ी संख्या में आप सभी की उपस्थिति आज चुनाव और शपथ ग्रहण के बाद मुझे पहली बार आपके बीच आने का सौभाग्य मिला है। बंगाल की हवा में अब एक नई ताजगी है। यहां के कण कण से एक नई खुशबू आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे बंगाल अब बेड़ियों से आजाद हो गया है, जैसे बंगाल का गौरव लौटने का आरंभ हो गया है। आज का यह कार्यक्रम साक्षी है, इन परियोजनाओं का शुभारंभ गवाह है कि हमारा बंगाल अपने नए भविष्य के निर्माण में जुट गया है। बंगाल के लोगों के चेहरों की चमक, गांव गांव में खुशी और विश्वास का भाव, मैं आपके इस आनंद में भागीदार बनने के लिए आया हूं। आपका एक वोट, एक चुनाव कितना कुछ परिवर्तन कर सकता है ये बंगाल में साफ साफ नजर आ रहा है। परिवर्तन भालो आगे से तो मैं इस अवसर पर बंगाल के लोगों को और सभी देशवासियों को इस आयोजन की, पश्चिम बंग दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज आप सभी की मैं स्वच्छता से स्वागत पहल के लिए भी सराहना करना चाहता हूं, पूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। स्वच्छता हमारे दैनिक जीवन का अभिन्न हिस्सा होना चाहिए। जहां स्वच्छता होगी, विकास भी उतना ही सुंदर दिखेगा। मैं आपको स्वच्छता के स्वागत के लिए भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, इस बार पश्चिम बंग दिवस की तारीख और भी खास है। आजादी के बाद बंगाल के उज्जवल भविष्य के लिए सपना देख गया था। बंगाल की महान आत्माओं ने जो परिकल्पना की थी, आज एक तरह से पहली बार हम पश्चिम बंग दिवस पर उन सपनों को सच्चाई में बदलते देख रहे हैं। यह ऐतिहासिक तारीख पश्चिम बंगाल के विकास की प्रेरणा बने, हम एक नया और गौरवशाली इतिहास रचे। आज बीजेपी एनडीए सरकार में इसके लिए विकास के महाअभियान की शुरुआत हो रही है। साथियों, बंगाल दशक तक पहले लेट

फिर टीएमसी ने जो गड्ढे बनाए उन्हें भरने के लिए डबल इंजन सरकार ने सुपर फास्ट स्पीड से काम करना शुरू कर दिया है। बिजली की रफ्तार से फसले हो रहे हैं, रुकी हुई योजना पर काम आगे बढ़ने का है। इसी कड़ी में आज यहां सैकड़ों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ है। रेल, रोड, कृषि, मछली पालन, इससे जुड़ी परियोजनाएं बंगाल के विकास को नई गति दी। इन परियोजनाओं से यहां की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। मैं बंगाल के लोगों को इन विकास परियोजनाओं की बधाई देता हूं। आज पीएम किसान सम्मान निधि की 23 किस्त भी जारी की गई है। देश भर के 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में लगभग 19,000 करोड़ रुपए सीधे भेजे गए हैं। मैं देश के सभी लाभार्थी में किसान परिवारों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, गुलामी के दौर में हमारे बंगाल ने क्या कुछ नहीं सहा, कितने बलिदान दिए, कितने त्याग किए। 1942 में कोलकाता में हुई हिंसा, नोआखली के दंगे, कितने निर्दोष बंगाली मानुष, बंगाल के लोग उसकी भेंट चढ़ गए। भाई बहनों, बंगाल ने रक्तपात सहा, बंगाल ने अपनों को खोया, अपनी मातृभूमि के टुकड़े होते देखे, लेकिन बंगाल ने अपनी अस्मिता और पहचान को नष्ट नहीं होने दिया। इसी का परिणाम था जब पूरे बंगाल को भारत से अलग करने की साजिश हो रही थी, तब अलग पश्चिम बंगाल बनाकर उन मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया गया। हजारों वर्ष पुरानी सभ्यता, संस्कृति, यहां की मूल आस्था, परंपरा, तब अनेक संघर्षों के बाद बच गए थे और आज वो मूल्य, इस धरती के संस्कार आज पश्चिम बंगाल के रूप में न केवल सुरक्षित है बल्कि जीवंत भी है। इसलिए पश्चिम बंग दिवस के रूप में हम केवल एक तारीख याद नहीं कर रहे हैं, हम पूरे इतिहास को याद कर रहे हैं। हजारों साल पुरानी बंगाल की विरासत को नमन कर रहे हैं। साथियों, आज की पीढ़ी को हमें बार बार पश्चिम बंग दिवस की अहमियत बताने की जरूरत है। उस दौरान क्या हो रहा था, ये युवा पीढ़ी को जानना जरूरी है। जब पूरे बंगाल को पाकिस्तान का हिस्सा बना जाने की कोशिशें हो रही थी, तो कांग्रेस उन षड्यंत्रकारियों के सामने

पड़ी और यही वो समय था डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी ने उसके खिलाफ आवाज उठाई। अप्रैल 1947 में उन्होंने ऐतिहासिक रेजोल्यूशन पास करा। उन्होंने घोषणा की पूरा बंगाल पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनेगा, इसके लिए बंगाली हिंदू होमलैंड मूवमेंट शुरू किया गया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसका नेतृत्व कर रहे थे। प्रसिद्ध वैज्ञानिक मेघनाथ साहा, इतिहासकार आसिम माजुमदार, इतिहासकार जगन्नाथ सरकार, सुनीति कुमार चट्टोपाध्याय, बंगाल के ऐसे कितने प्रबुद्ध और प्रसिद्ध लोग इस मूवमेंट का हिस्सा बने। जीडी बिला जैसे उद्यमियों ने इसे आगे बढ़ाया। मतवा लीडर पी आर ठाकुर ने आगे आकर इस मूवमेंट को समर्थन दिया। अखबारों में लेख लिखे गए, इससे कहानियां लिखी गई। बने मातम की भावना को एक बार फिर स्फुरित किया गया। बंगाल की इस आवाज को मजहबी एजेंडों से दबाया जा रहा था। इस आंदोलन से स्वर फिर से मुखर हो उठे। इसी का नतीजा भारत विरोधी लोगों को ये पता चल गया, पूरे बंगाल को भारत से तोड़ना नामुमकिन होगा। पश्चिम बंगाल के रूप में ये हिस्सा मां भारती के साथ रह गया। साथियों, जिस भावना से पश्चिम बंगाल को बचाया गया था आजादी के बाद, उसी भावना पर इसे आगे बढ़ाने की जरूरत थी। लेकिन दुर्भाग्य से ठीक इससे उलट कम हुआ। पश्चिम बंग दिवस और इसकी भावना को भुलाने की कोशिश हुई। सियासी एजेंडों के कारण इतिहास का व्हाइट वॉश किया गया। भाइयों बहनों, विभाजन के समय जो कांग्रेस बंगाल को लावारिस छोड़ना चाहती थी, विभाजन के बाद उसने बचे हुए पश्चिम बंगाल में तुष्टीकरण के खेल खेलने शुरू कर दिया। पश्चिम बंगाल के इतिहास को दबाया गया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनसंघ के संस्थापक बने, इसलिए उनके योगदान को नकारा गया। जिस भावना को लेकर उन्होंने बंगाल के लिए लड़ाई ली थी, उस विचार को भी पकड़ने की कोशिशें होती थी। गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, स्वामी विवेकानंद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे जिस धरती का ऐसी महान संतानों से नाता रहा हो, उस पर विदेशी विचारधारा थोपी गई। पहले कांग्रेस, फिर लेफ्ट, फिर टीएमसी, दशकों तक पश्चिम बंगाल को सहेजने और सारने की जगह इसे अवैध घुसपैठियों का अड्डा बन दिया गया।

बंगाल भारत विकास का नेतृत्व कर सकता था, वो आगे बढ़ने जगह पिछड़ता चला गया। साथियों, आज पश्चिम बंग दिवस पर हमारा कर्तव्य है, हम संकल्प लें अब यहां की वो गलतियां दोहराई नहीं जाएगी। अब पश्चिम बंग दिवस से प्रेरणा लेकर नया इतिहास रचा जाएगा। साथियों, दशकों के कुषाण ने पश्चिम बंगाल को मीलों पीछे पहुंच दिया है। आप हमने देखा है पुरानी सरकारों के समय में कैसे हाथ हो गए थे, यहां बड़े उद्योगों का पायन हुआ, छोटे उद्योग धंधे ठप्पड़ते चले गए, युवाओं का रोजगार छिनता गया, संसाधनों पर गुसेठियों का कब्जा होता था गया। जो पश्चिम बंगाल कभी अवसरों की भूमि होती थी, वो पायन का केंद्र बनती चली गई। इसी माहौल में आपने एक संकल्प लिया, टीएमसी सरकार को पड़ने का, उस हटाने का। आपने बीजेपी को सिरवा दिया, रिकॉर्ड सीटों के साथ हमें विजय बनाया। और आज पूरा देश देख रहा है कैसे तुरंत ही इसका नतीजा भी बंगाल को मिलने का है। जिस अधिकार से आपको बरसों तक दूर रखा गया, आज वो हक आपके द्वार तक पहुंच रहा है। मैंने चुनाव के समय आपको आयुष्मान भारत योजना की गारंटी थी, बंगाल के हर गरीब को आयुष्मान भारत का लाभ मिला तय हो गया है। माता बहनों को अन्नपूर्णा योजना का सीधा लाभ मिलना शुरू हो गया है। हर घर स्वच्छ पानी पहुंचे, इसके लिए भी पश्चिम बंगाल सरकार और केंद्र सरकार के बीच जल जीवन मिशन को लेकर एमओयू साइन हो गया है। हमने चुनाव के समय बंगाल के युवाओं से वादा किया था, वो वादा पूरा करते हुए नौकरियों में आयु की सीमा में ढील दी गई है। महिलाओं को फ्री बस यात्रा वादा भी पूरा हो चुका है। साथियों, सालों साल राजनीतिक दुश्मनी में इन योजनाओं को रास्ते में ही अटकाया गया, लटकाया गया। आज उस सारी बंदिश को तोड़कर जन कल्याण शिविरों के जरिए हर सरकारी योजना का लाभ सीधे आप तक पहुंचाया जा रहा है। अब कोई बिचौलिया नहीं, कोई रुकावट नहीं, सिर्फ आपके अधिकार पर फोकस है, बंगाल के विकास पर फोकस है, बंगाल और देश की सुरक्षा पर फोकस है। आपने देखा होगा सीमा पर फेंसिंग के लिए पिछली सरकार ने जमीन ट्रांसफर का जो काम दशकों से रोक रखा था, नई सरकार बनते ही वो काम भी पूरा करने का काम शुरू हुआ है। भाइयों बहनों, मुझे खुशी है कि पश्चिम बंगाल में औद्योगिक गति की नींव फिर बननी शुरू हो गई है। इस नींव के दो भिन्न अंग है, ईमानदार और पारदर्शी शासन, दूसरा

कानून का राज। पश्चिम बंगाल ही नहीं, पूरा देश आज इस बदलाव को देख रहा है। जिन्होंने आपको लूटा, खुद आकर लूट के पैसे लौटा रहे हैं। बड़े बड़े लूटरों को जेल भेजा जा रहा है। सिंडिकेट वाले जनता से माफी मांग रहे हैं। टोल नाकों पर अवैध वसूली करने वाले गुंडे नाके छोड़कर भाग गए हैं। मंगला के लोग बिना रोक के आ जा रहे हैं। एकोन काटमानी शेष का शुरू होएगी छे। साथियों, बंगाल अभी तक खराब सड़कों, खस्ताहाल इंफ्रास्ट्रक्चर से जूझ रहा था। वहां अब वर्षों से लगे अटक प्रोजेक्ट्स तेजी से आगे बढ़ने लगे। आप के चीनी घाटा क्रॉसिंग पर कोलकाता मेट्रो की ऑरेंज लाइन का रुका हुआ काम पूरा हो गया है। हावड़ा लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत है। नए डिविजनल रेलवे अस्पताल की नींव भी रखी गई है। यहां इमरजेंसी सेवाएं होगी और गंभीर बीमारियों के इलाज की व्यवस्था होगी। पूर्व इंदिपुर हर और राधा मोहनपुर बीच रोड और ब्रिज, संकरेल संतरागाछी लिंक लाइन, ऐसे प्रोजेक्ट यहां के लोगों को सुविधा होने वाली है। साथियों, आज पीएम किसान सम्मान निधि के तहत एक वर्ग 9 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में पैसे भेजे गए और पश्चिम बंगाल किसानों के लिए एक और खुशी की खबर है। आज से राज्य में पीएम फसल बीमा योजना शुरू की जा रही है। फसल बीमा योजना मुश्किल समय में किसान परिवार को सहारा देगी। फसल को नुकसान होने पर किसान पर बोझ नहीं पड़ेगा। साथियों, अब पश्चिम बंगाल डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन से भी जुड़ा है। एग्रीस्टेक के माध्यम से किसान रजिस्ट्री बनेगी। गांव के नक्शे और बोई गई फसल की जानकारी डिजिटल रूप में उपलब्ध होगी। खाद की खरीद, किसान क्रेडिट कार्ड, डीबीटी और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद जैसे सेवाओं में इससे आसानी होगी। साथियों, कृषि क्षेत्र में जो सबसे पिछड़े जिले हैं उन्हें आगे लाने के लिए सरकार ने पीएम धन धान्य कृषि योजना शुरू की है। इसमें पश्चिम बंगाल के चार जिले तुलिया, दार्जिलिंग, अलीपुरद्वार और झाड़ग्राम शामिल है। इन जिलों में खेत की उत्पादकता बढ़ाने, स्टोरेज सुविधा बनाने और किसानों के लिए लोन आसान करने पर काम होगा। बंगाल में मछली पालन से किसान, मछुआरे, व्यापारी सब जुड़े हैं। इसे दक्षिण 24 परगना के फेसरगंज सिंह हार की क्षमता बढ़ाई गई है। वीरभूम में आधुनिक फिश मार्केट बनाने का भी काम हुआ है। अब बंगाल मेगा नहीं, बंगाल अब इतिहास रचेगा। एक बार बंगला तांबे ना, एक और इतिहास गौर में। साथियों, आज इस कार्यक्रम में

देश के अलग अलग हिस्सों के लाखों किसान साथी भी जुड़े हुए हैं, वहां के मुख्यमंत्री गवर्नर भी जुड़े हुए हैं, देश भर की सरकारों के मंत्री भी जुड़े हुए हैं। इसके साथ साथ लाखों किसान भी आज हमारे दिवस को मनाने में वो भी भागीदार बने हैं। सभी किसान पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थी हैं। आज अपने इन सभी किसान भाइयों बहनों से मैं एक आग्रह करना चाहता हूं, अगर किसान भाई बहन मेरी बात को जरा गौर से सुनिए, मैं आप हाथ के बिंद कर रहा हूं कि हमें अपने बच्चों को बर्बाद होते खेत नहीं देने हैं।

को मनाने में वो भी भागीदार बने हैं। सभी किसान पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थी हैं। आज अपने इन सभी किसान भाइयों बहनों से मैं एक आग्रह करना चाहता हूं, अगर किसान भाई बहन मेरी बात को जरा गौर से सुनिए, मैं आप हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं कि हमें अपने बच्चों को बर्बाद होते खेत नहीं देने हैं, हमें अपने बच्चों को उपजाऊ खेत देने हैं, हमें हमारी धरती माता को बचाना है। इस समय भारत सरकार खेत बचाओ अभियान चला रही है, इसके तहत मिट्टी की सेहत बढ़ाने, केमिकल खाद का इस्तेमाल कम करने और प्राकृतिक खेती अपनाने पर जोर दिया जा रहा है। आप भी ज्यादा से ज्यादा संख्या में खेत बचाओ अभियान से जुड़े, खुद का खेत बचाने का संकल्प करें, आस पास के किसानों को खेत बचाने के प्रेरित करें और हम सब मिलके हमारी धरती माँ की रक्षा करें। वो हमारी माँ है, हम केमिकल से हमारी माँ को मरने का पाप नहीं कर सकते हैं, हमें हमारी धरती माँ को बचाना होगा। साथियों, भारत 2047 तक विकसित देश बन के लक्ष्य काम का, विकसित भारत के संकल्प का सबसे बड़ा आधार है पूर्वी भारत का विकास। इसके लिए हम मिशन पूर्वोदय पर काम कर रहे हैं। इस बंगाल की भूमिका बड़ी है, बंगाल की प्रगति से पूरी भारत की गति बढ़ेगी। भाइयों बहनों, विकास के इस अभियान में एक और बात का ध्यान रखना है, विकास की पहली शर्त है जिसे हमें कभी भूलना नहीं है और वह है शांति, सौहार्द और सामाजिक स्थिरता। हमें बंगाल की सांस्कृतिक पहचान और सामाजिक आने वाले को और मजबूती देनी है, हर सबको साथ लेकर चलना है। साथियों, कल देश और दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाया जाना है। इस बार मैं बंगाल में ही योग दिवस का हिस्सा बनूंगा। स्वामी विवेकानंद और महर्षि अरविंद जैसे योगियों की भूमि, यहां से वो संदेश आएगा, उससे पूरे विश्व का मार्गदर्शन होगा। मैं चाहूंगा इस बार बंगाल कोने कोने में योग दिवस के आयोजन हो, आप सब योग करें, योग दिवस का हिस्सा बने। इसी अनुरोध के साथ मैं एक बार फिर आप सभी को विकास परियोजनाओं की बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज जब हम उत्साह और उमंग के साथ पश्चिम बंगाल दिवस मना रहे हैं, तो मैं आप सब आग्रह है, अपना मोबाइल फोन निकाले, अपने मोबाइल फोन फ्लैश लाइट चालू किए और हम सब मिलकर के आज ये बंग दिवस मनाए। सब मोबाइल फोन की लाइट चालू हो, मेरे साथी, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की वंदे।

0: Dhanak. Moving towards the future, towards a Viksit Bharat, developed India 2047, we hope and pray that the resolve and the power of the Prime Minister bears fruit and we see all those great results in the lives and lives of the country, in the lives of everyone to be there in the future.
1: धीरे धीरे कार्यक्रम अपनी समाप्ति की ओर बढ़ रहा है अब समय है विदा लेने का शाओं इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने तुझे सहयोग दिया जी एस खान ने और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे श्री प्रमोद कुमार यह कार्यक्रम आकाशवाणी की दिल्ली की से प्रसारित किया गया इसी के साथ मैं सिद्धार्थ सिंह अपने साथ कमेंटेटर वैभव जोशना श्रीवास्तव के साथ आज अनुमति लेता हूँ नमस्कार
2: प्रसार भारतीच्या वेव ओटीटी प्लॅटफॉर्म आणि न्यूज ऑन ए आर ॲप सहित 558 किलोहर्ट्झवर आकाशवाणी मुंबई केंद्राची ही आहे अस्मिताबाई मिश्र संगीतच्या कार्यक्रमात आता आपले गीत जत्रे जैत या चित्रपटातील हे गाणं गायलं आहे आशा भोरे आणि साथीदारांनी कवी आहेत नादो मनोर संगीत आहे पंडित हृदयनाथ मंगेशकर यांचं

0: बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।
1: आज सैकड़ों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास हुआ है। रेल, रोड, कृषि, इससे जुड़ी परियोजनाएं बंगाल को नई गति देगी। इन परियोजनाओं से यहाँ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। मैं बंगाल के लोगों को इन विकास परियोजनाओं की बधाई देता हूँ।
0: श्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त भी जारी की। इसके अंतर्गत देश के 9,44,00,000 किसानों के बैंक खाते में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक राशि सीधी अंतरित गई। प्रधानमंत्री कोलकाता में कल स्वदेश में निर्मित नौसेना के 3 जहाजों INS दूनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय का अनावरण करेंगे। पोतों में 70% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। के निर्माण में 200 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों ने योगदान दिया है। सरकार ने जनहित में 16 फिक्स्ड डोज कॉर्पोरेशन FDC दवाओं के उत्पादन, गृह और वितरण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लग गया है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर विशेषज्ञ समिति की समीक्षा के बाद ये फैसला लिया गया। समिति ने पाया कि इन दवाओं के संयोजन का पर्याप्त चिकित्सीय औचित्य नहीं है, इनके उपयोग से स्वास्थ्य संबंधी जोखिम हो सकते हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA का होने वाली नीट UG 2026 पुनर्परीक्षा की तैयारियों के तहत आज देश भर में मॉक ड्रिल कर रही है। सुबह 9 बजे शुरू हुआ ये अभ्यास पूरे दिन जारी रहा। इस अभ्यास में 2.5 लाख से अधिक कक्षाकर्मी शामिल रहे। भारत सोमवार से शुरू रही 2 दिवसीय ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल करेंगे। बैठक में नई तकनीक से जुड़े सुरक्षा खतरों और आतंकवाद से निपटने के उपाय पर भी चर्चा होगी। बोलिविया के राष्ट्रपति रोड्रिगो पास ने देश भर में ईंधन की कमी, रिकॉर्ड महंगाई और लगभग 50 दिनों से जारी सरकार विरोधी प्रदर्शनों और सड़कों की नाकेबंदी के बाद पूरे देश में आपातकाल की घोषणा की है। चेन्नई में तीसरे और अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान ने भारत को 219 रन लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत के चौथे ओवर में बिना किसी नुकसान के 35 रन बना लिए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी नागपूर हे वांगी विकर्णी आपल्याला प्रादेशिक बातम्या देते आहे। ठळक बातम्या। आंतरराष्ट्रीय योग दिनात मुख्य कार्यक्रम उद्या कोलकाता पंतप्रधानांच्या उपस्थित होणार। नीट योजना 2026 फेरपरीक्षेच्या पार्श्वभूमीवर देशभरात सुरक्षा मॉकड्रिल गैरप्रकार रोखण्यासाठी प्रशासनातर्फे विविध उपाययोजना। राज्यातील 90 लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना खरीप हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर मिळणार मोठा दिलासा। कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे। OBC समाजाच्या स्वतंत्र जनगणनेसाठी राज्यव्यापी आंदोलन उभारण्याची तयारी सुरू असल्याची काँग्रेस विधिमंडळ नेते विजय वडेट्टीवार यांची माहिती। आणि अनुसूचित जाती आरक्षण उपवर्गीकरण विरोधी कृती समितीद्वारे उपवर्गीकरणाच्या विरोधात नागपूर मोर्चा आयोजित। आता सविस्तर बातम्या। 12वा आंतरराष्ट्रीय योग दिवस उद्या साजरा होणार आहे। निरोगी वयोवृद्धीसाठी योग अशी यंदाच्या योग दिनाची संकल्पना असून जगभरात सुमारे 2,500 ठिकाणी विविध संस्था संघटनातर्फे योगविषयक कार्यक्रम होणार आहे। 210 पेक्षा जास्त इंडियन मिशनच्या पुढाकारातून हे कार्यक्रम होणार आहे। उद्या योग दिनाचा मुख्य कार्यक्रम कोलकाताच्या ऐतिहासिक गेट रोडवर होणार असून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी त्यात सहभागी होतील। या कार्यक्रमाचा थेट प्रसार सकाळी 6:30 वाजल्यापासून आकाशवाणीच्या सर्व केंद्रांवरून केला जाणार आहे। दरम्यान ओडिशा सरकारच्या 2 वर्षांच्या कार्यकाळाच्या पूर्ततेनिमित्त मयूरभंज जिल्ह्यात रायपूर इथं आयोजित कार्यक्रमात पंतप्रधानांनी भारतातील तसंच जगभरातील लोकांना योग दिनात मोठ्या संख्येनं सहभागी होण्याचं आणि योगाचा जीवनशैली म्हणून स्वीकार करण्याचं आवाहन केलं।

0: एक जाने पेंट जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादू दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
1: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश मीनाधन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाओं भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने समझने।
0: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प है कि आप हो जाए।
1: मैं ये सुनना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को सम्बोध है।
0: जी माने पीटर अखिलेश से एक बातचीत।
1: इतना ज्यादा समय आपने काम को दे उतना ज्यादा आप उस कार्य में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
0: आज के मेहमान 24 जून 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: जाने माने फिल्मी गीतकार सुधा शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: प्यार की तो डरना क्या की लाइन, शकील सबसे अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो ऐसा मतलब मैं एक परेशानी थी मैं क्या करूं। हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्हें प्यार तो डरना क्या की एक ट्यून बना, कहा इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन लिखेंगे, बस इस हुक लाइन रखेंगे। वो गाना करते करते हुक लाइन बनी, ओढ़ ली नरिया तेरे नाम।
0: जरूर सुनेगा बॉम्बे टॉकीज में 27 जून 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। कवि कृष्णमूर्ति और साथी की आवाजी, फिल्म का नाम वासु, शब्द समीर के और चंद ललिता।

0: अभी तक कृष्णमूर्ति की आस थी और फिल्म नाम था उत्सव। विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरा भाषा से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग प्रयोग करता था, हास्य मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था, तो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे इसी मुद्दे पर। वो कुछ लोगों ने कहा कि आप बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं, ये मजे की बात है कि बात चल करके व्यंग भी प्रमुख भी हो गए।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विद भारती पर। कार्यक्रम में अब हम आपको सुना रहे हैं कुमार सानू की आवाज का नाम कभी हाँ कभी ना। इस गीत को मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखा है और संगीत जतिन ललित है।

0: इस गीत साथी आज का तराने नए पुराने ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: तराने नए पुराने।

हम विविध भारती से बोल रहे हैं, ये है राष्ट्रीय सेवा देश की सुली धड़कन। लीजिए रोखा के अंतर्गत सुनिए हमारी आज और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। पहले सुनिए हमारे आज के शेष कार्यक्रम। अब से थोड़ी देर बाद में 6:35 आप सुनेंगे संध्या रंजन, 6:45 संगीत सरिता, संध्या 7 विशेष माला कार्यक्रम पेश करेंगे अभिता अमरीश पुरी। 7:45 पर धनुष के अंतर्गत सुनेगा जी क्या, रात्रि 8 हवा महल में हम आपको सुनाएंगे सुनो कहानी के अंतर्गत कहानी स्वामिनी भाग मुंशी प्रेमचंद की कहानी है ये, वाचक भर ममता सिंह का और प्रस्तुत करा हर्षवर्धन वही। पितृलोक का प्रसारण समय रात्रि 8:15 और रात्रि 9 आप सुनते हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके लिए। आज के फनकार ये कार्यक्रम केंद्रित होगा निर्देशक आसू भट्टारे पर, समय रहेगा रात्रि 9:30 प्रस्तुतकर्ता आकाशा सिंह। रात्रि 10 छाया का प्रसारण होगा, आलेख और स्वर आरती श्रीवास्तव का, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह की। रात्रि 10:30 पर आएंगे ढल जाए रात और 11 चित्रपट संगीत और मैटिनी शो का पुनः प्रसारण। तृतीय आज के मुख्य कार्यक्रम और अब सुनिए कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का लेखा जोखा। कल सुबह 6:05 वंदन वार और चिंतन, 6:35 पर श्री रामचरितमानस का 226वां भाग प्रसारित होगा। संगीत सरी कार्यक्रम में कल सुबह 6:45 और संध्या

6:45 आप सुनेंगे श्रृंखला वायलिन का विहंगम संसार। कलाकार वायलिन वादक एस एल कंडा का भाचार प्रसार होगा। प्रस्तुत कर रहे हैं मनीषा जैन। कल सुबह 6 बजे भूल बिसरेगी 7:30 पर हम हैं राही प्यार की। त्रिवेणी का प्रसारण समय कल सुबह 8:15 और कल दोपहर 2 बजे लेख और स्वर विधि जैन का। प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पारक। कार्यक्रम चित्रलोक आप सुने कल सुबह 8:30 और कल रात 8:15 पर। आज की फकार ये कार्यक्रम सुनिएगा कल सुबह 9:10 और कल रात 9:10 पर। कार्यक्रम अभिनेता टॉम अल्ट पर केंद्रित होगा। बॉय टॉकीज कल सुबह 10 बजे सुनेंगे कोरियोग्राफर टेरेंस लुइस से अमरकांत दुबे की बातचीत का पुनर्प्रसारण। इसका भाग 3 प्रसार होगा। विधा का प्रसारण समय कल दिन 11 बजे। विषय रहेंगे आरडी बर्मन कल्याण जी आनंद। इन पर बातचीत होगी और इस कार्यक्रम प्रस्तुत कर होंगी मशा जैन। कल दोपहर 12:05 पर यादों की महफिल। 1 बजे आप सुनेंगे सुरीला सफर। दोपहर 2:30 पर सदाबहार में और कल दोपहर 3 बजे फरशी फिल्मी गानों का कार्यक्रम होगा मन चाहेगी। नृत्य तरंग में कल दोपहर 3:20 पर सुनिएगा नाटक मृत्यु प्राण भाग 2। मूल बंगला नाटक ये आलू भट्टाचार्य इसके लेखक हैं। हिंदी अनुवादक हैं दीप नारायण मिठोलिया और निर्देशक सुदर्शन कुमार। कल दोपहर बाद 4 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के। इस कार्यक्रम में रिया अमरापुरकर से यूसुफ खान की बातचीत का पहला भाग प्रसारित होगा। प्रस्तुत कर हैं तेजश्री कांबले। गीत पुनः प्रसारण कल संध्या 5 बजे 5:30 पर सुनेंगे ताने नए पुराने। कल सन 6:30 संध्या रन 6:45 पर संगीत सरिता। संध्या 7 बजे यानी कल संध्या 7 बजे विशेष जयमा कार्यक्रम होगा। सैनिकों की शौर्य था में कल महावीर चक्र सिपाही पांडुरंग साखे पर ये कार्यक्रम केंद्रित होगा। प्रस्तुतकर्ता है तेजश्री कांबले। कार्यक्रम इंद्रधनुष में सुनिया सार और आवाज संध्या 6:45 पर कल। इसमें बांसुरी रखूंगे पारसनाथ। हवा में का प्रसारण समय कल रात 8 बजे आप सुनेंगे झलकी मोटी मली। लेखक हैं वी एम आनंद निर्देशक हैं जयदेव शर्मा कमल। कल रात 10 बजे आप सुनेंगे छाया गीत आलेख और स्वर यूनुस खान का सुदकर्ता राजेंद्र सिंह की। रोखा में अभी आप सुन रहे थे हमारी आज और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण और अब ये कार्यक्रम संध्या रंजन।

लता मंगेशकर की आवाज थी, फिल्म नाम था अमर भीम। गीत को आनंद जी ने लिखा और धुन बनाई थी राहुल देव बर्मन ने।

0: लता मंगेशकर की आवाज में अभी आपने फिल्म शागिर्द का ये गीत सुना। गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी थे और धुन बनाई लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।
1: एक बेटी की याद में उसके पिता
2: 78 में मेरे पिताजी सदाशिव आपुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आशवाणी परभणी में वो अनाउंसर उन्होंने जॉब किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
1: सदाशिव अपुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
2: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया तब मैंने पूछा था कि मुझे रोल के लिए कास्ट किया। गोविंद जी उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक
1: जाली उनकी यादों के इस कार्यक्रम में।

0: मानी अनीता सदाशिव अम्पुरकर की बेटी रीमा अम्रापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग मुंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को दिखा, रामा शेट्टी रामा की रामा की, और इतनी हड़बड़ी और झूठ वहां पर आई कि अब पता ही चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये है विविध भारती।
3: विविध भारती देश का रेडियो।
4: चाहे हो पुणे मधुर गाने या नए संगीत की ताज,
3: चाहे हो मनहावनी बात।
5: एक्टर का शौक मुझे हुआ, मैंने शहीद फिल्म देखी थी दिलीप कुमार साहब, और कुछ ही महीनों में फिल्म फेयर में टैलेंट कॉन्टेस्ट के लिए अर्जी छपकर आ गई, और जी मैंने भरी धर्मेंद्र सिंह बोल तस्वीरें भी नहीं, मुझे ला लिया गया और मेरी फोटो सेलेक्ट करने वाले थे दत्त सावन नरसी।
4: विविध भारती पर हर पल है हाँ।
0: आज के मेहमान
3: और कार्यक्रम में अपने आप में अनोखे
6: आज के फनकार।
7: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती।
8: संगीत सरिता

0: श्रोताओं नमस्कार। संगीत सरिता कार्यक्रम में इंदु आप सुन रहे हैं श्रृंखला वॉयलिन का विहंगम संसार। आमंत्रित कलाकार हैं जाने माने वॉयलिन वादक पंडित एसएल कंडारा। आपसे बातचीत की है जयंत पात्रिक ने। ये आज सुनते हैं इस श्रृंखला की तीसरी कड़ी।
1: सभी संगीत प्रेमियों का पुनः स्वागत है और स्वागत है जाने माने संगीतज्ञ वॉयलिन वादक पंडित एसएल कंडारा जी का। पंडित जी, वायोलिन का विहंगम संसार ये शीर्षक भी अभी का दिया हुआ है
2: जी।
1: वायोलिन की व्यापकता की हम बात करते हैं तो देखते हैं कि फिल्म संगीत में कितना अधिक इसका इस्तेमाल हुआ है।
2: बिल्कुल जय जी, बहुत सही बात कह रहा हूँ। और इस बाजे की व्यापकता को आप देखिए कि पाश्चात्य संगीत में देश के बाजों में इसकी प्रमुखता से हुई
1: जी।
2: और बड़े बड़े कंपोजर्स ने इस पे काम किया और बहुत अच्छा काम हुआ और उनको देख के हिंदुस्तान में ये बाजा जो आया
1: जी।
2: तो हमारे म्यूजिक डायरेक्टर्स थे क्लासिकल और वेस्टर्न भी, जुबिन मेहता का मैं नाम लेना चाहूँगा कि उन्होंने भी इस बाजे का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया अपनी सिम्फनी में। और फिल्म म्यूजिक की बात करें आप, फिल्मों में तो इसका जवाब इस्तेमाल हुआ। एक जमाना था 50-50 वायलिन इस्तेमाल होते थे फिल्म स्टूडियोज में और उस जमाने में इतने अच्छे अच्छे इस पे पीसेज ने इतना अच्छा काम हुआ कि आपको मैं बयान नहीं कर सकता। श्रोताओं को आप एक पीस जरूर सुनाए लेकिन फिल्म का, जो कि दयानाथ मंगेशकर जी ने कंपोज किया हुआ है
1: जी। आशा की आवाज में होगा
2: एग्जैक्टली मिखाल से झूठ नए ना बोले अच्छी बतिया
1: जी जी। ये गीत है और इस गीत में वो वायलिन बजा है
2: जी।
1: आप उस की बात
2: उसी बात कर
1: तो उस गीत की ये झलक खासतौर ग्रुप वायलिन जाया गया है। अपने श्रोताओं को सुनाते हैं फिर उस पर बात करें।

0: क्या बात है, मजा आ गया पंडित जी। लग रहा था कि इसे सुनते ही चले, इसकी विशेषता के बारे में आप बताइए।
1: इस गाने में, इस गीत में इस तरह से लयनाथ मंगेशकर जी ने वायलिन का इस्तेमाल किया, मेरे ख्याल से 25-30 वायलिन जरूर होंगे, क्योंकि मैं तो जब गाना रिकॉर्ड हुआ वो उपस्थित नहीं था। हाँ। उसका अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ऐसा वायलिन उसमें बजे हैं और किस दक्षता के साथ ऑर्केस्ट्राइजेशन हुआ है।
0: जी हाँ जी।
1: फिल्म में 6-6 काम हुए हैं इस बाजे के साथ, और ये वहाँ से अगर शुरू करें रोशन साहब के जमाने से, मदमोहन जी के जमाने से, या नोटा साहब के जमाने से, तो एक से एक गीतों में इस वाद्य की उपस्थिति आपको प्रभावित करे। और बहुत अच्छे अच्छे पीसेज हमारे म्यूजिक डायरेक्टर्स ने बनाए हैं
0: जी।
1: इस वाद्य को लेकर एक गीत जो याद आता है, वैसे तो कई सारे गीत हैं का जिक्र करना संभव नहीं यहाँ पे, लेकिन नौशाद साहब का गीत आप बजा सकते हैं जिसमें बहुत संजीदा किस्म के पीस उन्होंने इस्तेमाल किए हैं
0: जी।
1: कल रात जिंदगी से मुलाकात हो गई, लब थर थरा रहे थे मगर बात हो गई।
0: बहुत ही खूबसूरत गाना है
1: जी,
0: आइए सुनते हैं।

0: श्रोते, संध्याकाळचे 10:57 आणि 46 स्कंद होत आहे. आपण ऐकत आहात आकाश आणि मुंबई कराची अस्मिता वाहिनी.
1: कोई ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बताओ जिसमें कम प्रीमियम, बोनस भी अच्छा मिले और भरोसे वाला भी हो.
2: पीएलआई है ना,
3: सरकारी कर्मचारी के साथ साथ सभी प्रोफेशनल, ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर ले सकते हैं पीएलआई पॉलिसी का फायदा, और साथ में पोस्ट डिपार्टमेंट का भरोसा भी. अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से आज ही संपर्क करें या लॉग करें indiapost.go.in पर.
4: सौभाग्याची

0: श्रोते हो नमस्कार, आजच्या वृत्तविशेष वर आपलं स्वागत। श्रोते हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते काल प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजनेअंतर्गत 24 कोटी रुपयांच्या प्रोत्साहनपर निधीचं थेट वितरण करण्यात आलं। या रोजगार लग्न प्रोत्साहनातून देशा रोजगार आणि उद्योग क्षेत्राला बळकटी देणाऱ्या या योजनेशी संबंधित विविध पैलूंची चर्चा आपण आजच्या वृत्तविशेष करणार आहोत। श्रोते हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी काल प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजनेअंतर्गत 24 कोटी रुपयांच्या प्रोत्साहनपर निधीचं वितरण केलं। खरं तर ही योजना मात्र कर्मचारी आणि नियोक्ता या दोघांनाही एकाच वेळी थेट प्रोत्साहनपर लाभ देणारा देशात पहिला अभिनव आणि पथदर्शी उपक्रम ठरला आहे। अर्थात घडून आलंय ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वामुळे। ही योजना म्हणजे निव्वळ रोजगार योजना नाही, तर व्यावसायिक आयुष्याची वाटचाल सुरू करणाऱ्या युवा वर्गाच्या पाठीशी केंद्र सरकार कायम ठामपणे उभसल्याची ग्वाही देणारं आणि रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण करणाऱ्या संस्थांना प्रोत्साहन देणारं माध्यम असल्याचंही त्यांनी अधोरेखित केलं। या अनुषंगानंच या पथदर्शी योजनेविषयी प्रधानमंत्री काय म्हणाले ते ऐकूया त्याच्या शब्दात।
1: दुनिया आज भारत की युवा शक्ति की चर्चा कर रही है। भारत के टैलेंट, स्किल और पोटेंशियल की चर्चा सब दूर हो रही है। दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके। और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ। यह रोजगार योजना सामान्य तौर पर सोचे जाने वाली रोजगार योजना से बहुत आगे बढ़कर पहली नौकरी पाने वाली युवा के सपनों को शक्ति देने वाली योजना है। युवा और उद्योगों के बीच एक मजबूत सेतु बनाने वाली योजना है। साथियों, आम तौर पर योजनाएं या तो कर्मचारी के लिए बनती

0: अलका याग्निक, सोनू निगम और साथियों की आवाजें थी। फिल्म नाम था धड़कन। इस लिखा समीर ने और धुन बनाई थी नीम श्रम ने।
1: ये है विविध भारती।
2: विविध भारती देश का रेडियो।
0: चाहे पुराने मधुर गाने या नए संगीत ताजगी,
2: चाहे हो मन लुभाओ बातें।
3: एक्टर बनने का शौक मुझे हुआ, मैंने शीत फिल्म की थी दिलीप कुमार साहब की, और कुछ ही महीने में फिल्म फेयर में टेंट कॉन्ट्रैक्ट के लिए अर्जी छपर आ गई। अर्जी मैंने भरी, धर्मेंद्र सिंह देओल तस्वीरें भेज दी, मुझे बुलाया गया और मेरी फोटो सिलेक्ट करने वाले थे दत्त साहब एंड नर्सी।
0: भारती पर हर पल है हाँ।
2: आज के मेहमान और कार्यक्रम है अपने आप में अनोखे।
4: आज के फनकार
0: भारती हर रोज लाती है ढेर सारी खुशियाँ और ढेर सारा मनोरंजन।
4: भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।
2: विविध भारती, संगीत मनोरंजन और संस्कृति का संगम।
0: स्वर है अभिजीत और अक्षय याग्निक। फिल्म का नाम है फिर भी दिल है हिंदुस्तानी।

मित भारती से आप रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। द लेजेंड ऑफ भगत सिंह यह है फिल्म का नाम जिसका गीत अब आप सुनने आ रहे हैं। सर अलग याग्निक उदित नयन और साथियों के गीत रचना समीर की और संगीत ए आर रहमान का।

0: नसीर तो ज्यादा ना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा अबीला, और फरूक तो बहुत निक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने उसके दोनों को पाई दिया। नसीर ने कहा वो तो मैं हूँ ना बसु, और फारूक ने कहा वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा तुम लोग क्या चाहते हो, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं है, वही जिसा क्या रोल करने में क्या मजा है, हाँ वही करोगे।
1: इस लाइन विविध भारती पर आ रहा है कौन,
2: आवाज़ अलका की, उनका नाम है हमराज, गीतकार सुधा शर्मा और संगीतकार हिमेश रेशमिया।

0: जर्मनी फिल्मी गीतकार सुधाकशा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: प्यार किया डरना क्या की सेकंड लाइन शील साहब से अच्छी मैं नहीं पाऊंगा, तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि क्या करूं। हेमा जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की ट्यून बनी, कहा इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, इसको होल लाइन रखे। वो गाना करते होल लाइन बनी ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम।
0: जरूर लिएगा बॉम्बे टॉकीज में 27 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: और आगा चित्रों कार्यक्रम समाप्त हुआ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत को शांति और सहयोग का पक्षधर बताया। कहा, वैश्विक संकटों और युद्ध जैसी परिस्थितियों का समाधान संवाद और कूटनीति से ही संभव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जनजातीय समुदाय देश के विकास में महत्वपूर्ण भागीदार बन रहा है। ओडिशा में 47,000 करोड़ रुपए अधिक की परियोजनाओं का शुभारम्भ। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त जारी की। 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि किसानों के खातों में अंतरित। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री कल कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर राष्ट्रीय समारोह का नेतृत्व करेंगे। नीट यूजी 2026 पूर्व परीक्षा कल, परीक्षा केंद्र पर कड़ सुरक्षा बंद। ईरान ने युद्ध विराम उल्लंघन के बाद होर्मुज़ जल डमरू मध्य फिर से बंद किया। और चेन्नई में तीसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 9 विकेट हराकर श्रृंखला 3-0 से जीती। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत हमेशा शांति और सहयोग का पक्षधर रहा है कि जटिल वैश्विक दो और युद्ध जैसे संकटों का समाधान केवल संवाद और कूटनीति से ही संभव है। राष्ट्रपति ने मोहन चरण मांझी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ओडिशा के मयूरभंज जिले के आयरंगपुर में एक जनसभा में ये बात कही। राष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व नेताओं के साथ अपने दूरदर्शी शासन और संपर्क के जरिए वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाया है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना पदभार संभालने के बाद राष्ट्रीय हित में कई कदम उठाए हैं। इस महीने उन्होंने लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल पूरा करने का रिकॉर्ड बनाया। मैं सभी नागरिकों की तरफ से इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए उन्हें बधाई देता हूँ। मैं कामना करती हूँ कि वे देश के लोगों के हित के लिए निरंतर काम करते रहें और भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का सपना साकार करने में राष्ट्र का नेतृत्व करते रहें।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं से शक्त होकर जनजातीय समुदाय भारत के विकास में सक्रिय योगदान दे रहे हैं। उन्होंने पूर्वी भारत के विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के पूर्वोदय दृष्टिकोण का भी उल्लेख किया।
2: ओडिशा में आर्थिक गतिविधियां, निवेश और उद्योगों को आकर्षित करने का सामर्थ्य नजर आ रहा है। केंद्र सरकार का विजन है पूर्वी भारत के विकास से भारत का विकास। इसलिए हम पूर्वोदय की नीति पर काम कर रहे हैं। जिस पूर्वी भारत को कांग्रेस के दौर में पिछड़ेपन का पर्याय बना दिया गया था, आज वो प्रगति का प्रवेश द्वार बन रहा है।
0: इस दौरान ओडिशा में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। बाद में प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से राज्य की ग्रामीण

0: अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त के रूप में 18,880 करोड़ रुपए जारी किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे देश के 9,44,00,000 से अधिक किसानों को लाभ मिलेगा।
1: साथियों, आज पीएम किसान सम्मान निधि के तहत देश भर 9 करोड़ अधिक किसानों के बैंक खातों में पैसे भेजे गए और पश्चिम बंगाल के किसानों के लिए एक और खुशी खबर है। आज से राज्य में पीएम फसल बीमा योजना शुरू की जा रही है।
0: प्रधानमंत्री कोलकाता में कल आईएनएस दुनगिरी, आईएनएस संशोधक और आईएनएस अग्र का अनावरण करेंगे। इन पोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: स्कीम के डील और न्याय बंद कानूनी स्थिरता एवं दुर्घटना कार्य से जुड़े कृषि सहायता डील टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल विश्व भर में मनाया जाएगा। इस वर्ष विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। मुख्य कार्यक्रम कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में योगाभ्यास के दौरान राष्ट्र का नेतृत्व करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि रोड पर राष्ट्रीय कार्यक्रम सुबह 5 बजे शुरू होगा।
2: संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत ऐतिहासिक स्थलों और योग परंपराओं को जोड़ते हुए देश के 120 स्थानों पर योग विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस पहल के तहत 12 प्रमुख स्थलों पर बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें नई दिल्ली में लाल किला, उत्तराखंड में हरिद्वार, उड़ीसा में कोणार्क, कर्नाटक में हम्पी, तमिलनाडु में महाबलीपुर, महाराष्ट्र में मुंबई, बिहार में नंदा, गुजरात में अहमदाबाद, उत्तर प्रदेश में सारनाथ, लद्दाख में लेह, तेलंगाना में हैदराबाद और असम में सिलचर शामिल है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के साथ मिलकर विश्व में मौजूद 200 से ज्यादा भारतीय मिशन लगभग 2500 स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित करेंगे। वहीं दिल्ली शांति पथ, यमुना स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, कबे पथ, न्यू मोतीबाग, सेंट्रल पार्क और तालकटोरा गार्डन जैसे प्रमुख सार्वजनिक स्थान पर योग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उपराज्यपाल मनोज झा कल श्रीनगर में डल झील के किनारे अंतर्राष्ट्रीय योग समारोह का नेतृत्व करेंगे। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय कल नई दिल्ली के भारत मंडप में विशेष योग दिवस समारोह आयोजित करेगा। इस आयोजन में लगभग 1500 वरिष्ठ नागरिकों के शामिल होने की संभावना है। इसी कड़ी में आकाशवाणी समाचार आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्रताप राव जाधव का विशेष साक्षात्कार प्रसारित करेगा। आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर ये साक्षात्कार आज रात 9:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। श्री जाधव ने बताया कामकाज लोगों के लिए सरकार ने वही ब्रेक ऐप भी शुरू किया है।
3: लोग दिन भर चेयर पे बैठ काम करना पड़ता है, वो लोग भी जब लंच ब्रेक होता तब तक बहुत ही थकान हो लोगों में, तो वो थकान दूर करने के लिए भी उनके लिए वाई ब्रेक नाम एक हमने ऐप निकाले कि 10 मिनट में चेयर पर बैठे बैठे कौन से आन कर सको, करने से जो भी हमारा थकान आई होगी वो दूर हो जाएगी।
1: दुनिया भर में भारतीय दूतावास और राजनयिक मिशन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए पूरी तरह तैयार हैं। आज नेपाल में भारतीय दूतावास ने लुम्बिनी में योग कार्यक्रम आयोजित किया। चीन में भारतीय दूतावास ने पेचिंग में आयोजित योग कार्यक्रम की झलकी साझा की। उधर जापान में भारतीय दूतावास ने कल सुकिजोंगन जी मंदिर में योग दिवस कार्यक्रम आयोजित करने की घोषणा की है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले संयुक्त अरब अमीरात में भी कई कार्यक्रम आयोजित हुए। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा कल आयोजित की जाएगी। परीक्षा देश के 551 शहरों और विदेश में 14 शहरों में हुई। इसमें 22,79,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों के अंतर्गत आज राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल आयोजित की। एक रिपोर्ट।
4: परीक्षा के सुरक्षित पारदर्शी और सुचारू संचालन के लिए पर्यवेक्षकों, समन्वयकों, पुलिस लोगों और

0: प्रशासनिक अधिकारियों सहित 2 लाख से अधिक कर्मियों की तैनाती की गई है। निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। एनटीए भ्रामक सूचनाओं पर रोक लगाने और किसी प्रकार की अनियमितता को रोकने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की भी सक्रिय रूप से निगरानी कर रहा है। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 आयोजित की जाएगी। सकलैन अखर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: नीट यूजी 2026 की पुनः परीक्षा संयुक्त अरब अमीरात में 3 निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम का प्रसारण कर रहा है। आज जानकारी सशक्त भारत के संकल्प को साकार करने वाली सरकार की परिवर्तनकारी पहलू के बारे में।
2: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने भारत के हाईटेक क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाने का काम किया है। सशक्त भारत के महत्वपूर्ण आधार हैं सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम विकास और स्पेस स्टार्टअप्स की तेजी से बढ़ती संख्या। सरकार की नीतियों और फैसलों से सेमीकंडक्टर क्षेत्र में सिर्फ जुनाए ही नहीं बल्कि अब निर्माण और डिजाइन से जुड़े कई इकाई काम कर रहे हैं। दिसंबर 2021 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया गया। इसके लिए 76,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। इस योजना के तहत सिलिकॉन फैब कंपाउंड सेमीकंडक्टर इकाई असेंबली और टेस्टिंग सहायता तथा डिजाइन के लिए 40% तक वित्तीय सहायता दी गई। साल 2026 में सरकार ने सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 शुरू किया जिसके लिए 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। मुख्य उद्देश्य उद्योग सहयोग से शोध और प्रशिक्षण स्थापित करना, नई तकनीक का विकास करना और भविष्य के लिए कुशल मानव संसाधन तैयार करना है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि 1.0 ने इसी उद्योग की बहुत नींव रखी है।
3: हम अपने सेमीकंडक्टर मिशन के पहले चरण में हासिल कर पाए हैं। 70,000 ज्यादा इंजीनियर इस क्षेत्र में प्रशिक्षित हो गए हैं। 300 से ज्यादा यूनिवर्सिटी छात्रों को डिजाइन कर सिखा रही हैं और भारत में 2 नैनोमीटर चिप डिजाइन की रही हैं जो दुनिया की सबसे एडवांस चिप्स हैं। इनमें एनवीडिया और इंटेल की चिप्स भी शामिल हैं और ये सभी अब भारत में डिजाइन की गई हैं।
2: वहीं भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 ने निजी कंपनी को अंतरिक्ष क्षेत्र में पूरी तरह काम करने की अनुमति दी है। अब निजी संस्थाएं रॉकेट लॉन्च, उपग्रह निर्माण और संचालन, डेटा संग्रह और वितरण तथा ग्राउंड स्टेशन जैसी गतिविधियां कर सकती हैं। इस नीति के बाद भारत में स्टार्टअप्स की संख्या 2014 में केवल 1 से बढ़कर 400 से अधिक हो गई है। इससे देश की निजी अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को नई गति मिली है। भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग $8 अरब से अधिक की है और अगले 8 से 10 वर्षों में इसके 4 से 5 गुना बढ़कर $40-47 अरब तक पहुँचने की संभावना है। आकाशवाणी की बातचीत में अनिल प्रकाश स्पेस इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महानिदेशक बताया कि भारत में 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप्स हैं।
4: नरेंद्र मोदी जी नेतृत्व स्पेस सेक्टर रिफॉर्म इस स्थापना और प्राइवेट स्पेशन में को बढ़ा देने वालियों ने एक नई क्रांति की शुरुआत की है और भारत में 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्ट कार्यरत हैं जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ऑब्जर्वेशन और डाटा सर्विस जैसे क्षेत्र में इनोवेशन कर रहे हैं।
2: सेमीकंडक्टर मिशन की उपलब्धि और तेज बढ़ती निजी अंतरिक्ष के माध्यम से भारत विकसित देश बनने की दिशा में लगातार आगे रहा है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonir.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान की संयुक्त सैन्य कमान ने आज घोषणा की है कि हुर्मुज जलमरू मध्य को एक बार फिर बंद कर दिया गया है। ये फैसला लेबनान में इसराइल की सैन्य कार्रवाई का हवा देते हुए किया गया है। सरकारी टेलीविजन प्रसारित बयान में ईरान ने चेतावनी दी है अगर इसराइल के हमले जारी रहे तो वह और कड़ा कदम उठा सकता है। उधर दक्षिणी लेबनान में इसराइल के हवाई हमलों में 2 बच्चों सहित 16 लोगों की मौत हो गई। ये हमले संघर्ष विराम की खबरों कुछ ही घंटों बाद हुए। कैलाश मानरोवर यात्रा के यात्रियों का पहला जत्था आज नाथा दर्रे से होते हुए चीन में प्रवेश कर गया। इस दल में 47 लोग हैं। चेन्नई में भारत ने तीसरे और अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अफगानिस्तान को 9 विकेट से हराकर श्रृंखला 3-0 जीत ली है। भारत ने 29वें ओवर में 1 विकेट पर

0: 264 रन बनाकर जीत हासिल की। 5 विकेट लेने वाले प्रसिद्ध कृष्णा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत को शांति और सहयोग का पक्षधर बताया। कहा, वैश्विक संकटों और युद्ध जैसी परिस्थितियों का समाधान संवाद और नीति से ही संभव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जनजातीय समुदाय देश विकास में महत्वपूर्ण भागीदार रहे हैं। ओडिशा में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ। मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त जारी की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस अवसर पर प्रधानमंत्री कल कोलकाता के ऐतिहासिक रोड पर राष्ट्रीय समारोह का नेतृत्व करेंगे। नीट यू 2026 पर परीक्षा कल। परीक्षा केंद्रों पर कड़े सुरक्षा प्रबंध। और चेन्नई में तीसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को हराकर श्रृंखला 3-0 से जीती। इसके साथ समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: विविध भारती है राष्ट्रीय सेवा, देश की सूली धड़न। रात्रि 9 बजे हैं। तेजी सुनिए कार्यक्रम आपके लिए। इस कार्यक्रम में एक बार आपसे सुनने वाला तहे दिल से स्वागत है। ये स्वर लता मंगेशकर और किशोर कुमार की। फिल्म नाम है त्रिशूल। गीतकार ताहिर लहनवी। संगीतकार हयाम।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार को अभी आपने सुना फिल्म नाम था त्रिशूल। कार्यक्रम का अगला गीत नौशाद साहब का गीत मजरूह सुल्तानपुरी बोल, लता मंगेशकर की आवाज और फिल्म है साथी।

लता मंगेशकर को आपने सुना, फिल्म का नाम था साथी। इसी आवाज को सुनी, फिल्म का नाम है लंग टोक्यो। गीतकार हसन जयपुरी हैं, संगीतकार हैं शंकर जयकिशन।

दिन की दौड़ के बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की जुवन, अपनेपन गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

शंकर जयशन के संगीत निर्देशन में ये था हजरत जयपुरी का लिखा गीत, स्वर मोहम्मद रफी का था और फिल्म का नाम था यकीन। लता मंगेशकर की आवाज है फिल्म उछन के लिए।

यावती लामंगेशकी और फिर का नाम था बिलचन। लीजिए अब सुनिए आश भोसले और मोहम्मद रफी को। फिल्म का नाम है यादों की बात। इसको लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने और संगीत राहुल देव मन का है।

इस युगल ग्रंथाति आज का आपकी कार्यक्रम अब समाप्त होते है। आज ये सर आपने किया अब दोस्त मंदारी जोशी के साथ।

0: आप सुने हैं विद भारती।
1: आज के फनकार ये करीब आप सुनेंगे कुछ पलों की बात।

0: विविध भारती के पास है विशाल हाथियों का अनमोल खजाना।
1: हम जो घर बनाते हैं उन्हें 50% 50% हाथ जो सिर्फ सॉन्ग राइटर का है।
0: संगीतकार ओ पी नैयर,
1: ये हकीक है, इसको बाकी लोग नहीं लेंगे। जिगरा चाहिए ये मान के लिए कि ओ पी नैयर कुछ नहीं बगैर सॉन्ग राइटर के। मैं दूसरों की बात करता, आप 50% शायर हो गए और 25% जो कम है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है ऑर्केस्ट्रेशन में और सिंग में। बाकी आप 25% अगर मुए तो क्रेडिट कंपोजर का है, ज्यादा कुछ है।
0: ऐसी अनमोल यादें आप मिलेंगी सिर्फ विविध भारती। विविध भारती आपका जीवन रंगीन।

अब्बास अत्याचार्य जन्म 1934 में कोलकाता हुआ था। उन परिवार कासिम बाजार पश्चिम बंगाल का रहने वाला था। बहुत बचपन में जब बासु अत्याचार्य ने सतीत्री की फिल्में देखी तो उनका फिल्मों से लगाव बढ़ गया। खास तौर पर 1956 में आई फिल्म अपराजितों ने उन्हें बहुत ज्यादा प्रभावित किया। उन्होंने ये तय कर लिया कि जीवन में वो कुछ न कुछ तो ऐसा करेंगे कि फिल्मों में काम करने की स्थिति बन जाए।

0: पास सना।
1: बासु भट्टाचार्य जब मुंबई आए तो उनका मकसद था राज कपूर के साथ काम करना, क्योंकि आवा और श्री 420 जैसी फिल्मों ने उन्हें बहुत ज्यादा प्रभावित किया।

आखिरी मुंबई आ रही इतफाक ये हुआ कि बासु टचारिय बिमल रॉय फिल्म टोली में एज असिस्टेंट डायरेक्टर शामिल हो गए। सन 1958 में आई मधुमति और सन 1960 में आई फिल्म सुजाता में बासु टचारिय बिमल रॉय के सहायक निर्देशक रहे।

जाहिर है अब बास भट्टाचार्य का फिल्म करियर धीरे धीरे अपनी दिशा रहा था। इसी बीच जाने कार शैलेंद्र ने फिल्म बनाने का फैसला किया और इसके लिए उन्होंने एक अनमोल कृति हिंदी सुसिद्ध कलाकार और उपन्यासकार पश्वरनाथ रेणु की मारे गुलफाम तीसरी कसम।

तीसरी कसम का निर्माण शुरू हुआ और इसके लिए बासु भट्टाचार्य को बतौर निरीक्षक चुन गया। जो बासु भट्टाचार्य राज कपूर के साथ फिल्म बनाना सीखना चाहते थे। आखिरकार उनकी फिल्म यात्रा एक तरह से राज कपूर के साथ ही शुरू हुई और उन्होंने फिल्म तीसरी कसम में राज कपूर को डेट किया। तीसरी कसम बनने में कई परेशानियां आईं। इस फिल्म का निर्माण एक तरह से संघर्षों से भरा रहा था, पर ये फिल्म हिंदी की एक विजयी फिल्म साबित हुई। फिल्म तीसरी कसम को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार भी हासिल हुआ था।

देश देश में फिल्म तीसरी कसम की बहुत ज्यादा तारीफ हुई। इस बीच बासु आचार्य ने सन 1966 में एक फिल्म बनाई, उसकी कहानी मुख्य कलाकार थे अंजू महेंद्रू और दीना पाठक।

बासु भट्टाचार्य को ये सब में आ गया था कि उन्हीं का खास रहे की शैली है, फिल्म बनाने का उनका अपना एक खास मुहावरा है और इसलिए बासु भट्टाचार्य ने अपनी तरह का सिनी बनाया। मुंबई में फिल्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन के जरिए उन्होंने अब फिल्म बनाई अनुभव। साल 1971 में फिल्म अनुभव के मुख्य सितारे थे संजीव कुमार और तनुजा। बासु भट्टाचार्य की खासियत रही है वैवाहिक रिश्तों की जटिलता और वैवाहिक रिश्तों तनाव पर वो बहुत बारीक काम अपनी फिल्मों करते रहे हैं। फिल्मों के जानकार ये कहते हैं कि बासु भट्टाचार्य ने जीवन में वैवाहिक संबंधों की पड़ताल पर एक ट्रायोलॉजी बनाई है और 1971 में आई फिल्म अनुभव इसी ट्रायोलॉजी का यानी इस फिल्म का पहला हिस्सा साबित हुई।

फिल्म अनुभव के गीत गुलजार ने रचे और इसका संगीत कनू रॉय का था। जदत की आवाज में इस फिल्म के गाने जो दिल को चीर डालते हैं।

सन 1972 में फिल्म अनुभव को दूसरी सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार हासिल हुआ था। इस बीच भट्टाचार्य ने एक फिल्म बनानी शुरू की डाकू, पर वो फिल्म पूरी नहीं हो पाई। अनुभव से जुड़ी दिलचस्प बात ये है कि शुरुआत में भट्टाचार्य संजय कुमार की बजाय इस फिल्म में प्राण को लेना चाहते थे। उन्होंने काम भी शुरू कर दिया था, पर उन्हें लगा कि संजीव कुमार इस फिल्म के लिए बेहतरीन साबित होंगे और उनका ये विश्वास रंग लिया। फिल्म अनुभव एक बेमिसाल फिल्म मानी जाती है।

जैसे हमने कहा, बासु भट्टाचार्या वैवाहिक संबंध की जटिलता की एक अनमोल फिल्म का है। अनुभव के बाद वैवाहिक संबंधों पर उनकी एक और फिल्म आई आविष्कार। आविष्कार 20 सितारों से सजी फिल्म थी। इस फिल्म में राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर ने काम किया। एक बार फिर संगीतकार

राजेश खन्ना को इस फिल्म सर्वश्रेष्ठ अभिनय का फिल्म फेयर पुरस्कार हासिल हुआ था। राजेश खन्ना करियर की एक बहुत ही महत्वपूर्ण सार्थक फिल्म ली जाती है आविष्कार।

1976 में बाबू भट्टाचार्य ने फिल्म संगत बनी चाही, हालांकि ये फिल्म पूरी नहीं हो पाई और सन 1979 में बासु भट्टाचार्य वैवाहिक संबंधों की पेचीदगी पर अपनी तीसरी फिल्म लेकर आए गृह प्रवेश।

अनुभव, आविष्कार और गृह प्रवेश, ये तीन ऐसी फिल्में हैं जिनके जरिए बासु भट्टाचार्या वैवाहिक संबंध की जटिलता की जांच करते हैं, उसकी पड़ताल करते हैं और उसके अलग अलग आयामों को सामने लाते हैं। संजीव कुमार उन प्रिय सितारे थे, वही फिल्म गृह प्रवेश में नजर आए सामने शर्मिला टैगोर और सरिका गुलजार ने इस फिल्म के गाने लिखे।

0: सासु टचारिया फिल्मी अपनी कहानी अब जटिलता अपने संगीत लिए खास तौर पर याद की जाती हैं। बासु भट्टारिया ने बहुत ज्यादा फिल्में नहीं बनाई, लेकिन उन्होंने फिल्में बनाई वो अपने आप में स्पून है। वो ऐसी फिल्में हैं जो जीव के यथार्थ को दर्शाती हैं। सन 1986 में उनकी एक फिल्म आई पंचवटी। पंचवटी में दीप्ति नवल और सुरेश ओबेरॉय मुख्य सितारे थे। सार्थक फिल्मों की दुनिया में फिल्म पंचवटी एक महत्वपूर्ण फिल्म के तौर पर याद की जाती है। यहाँ एक बात और आप बता दें, सन 1979 में बासु भट्टाचार्य निर्माता बने। उन्होंने सई पराजपे की फिल्म प्रोड्यूस की, स्पर्श, नजरुद्दीन शाह और शबाना आजमी बेमिसाल अभिनय वाली फिल्म स्पर्श समानांतर सीमा आंदोलन की एक बेहतरीन फिल्म मानी जाती है।
1: आप संस्था से जो मैंने पाया है वो मैं कभी बता नहीं पाऊंगा।
2: आपका आना सरा के लिए कितना फायदेमंद हुआ।

0: मैं आपको खा नहीं सकता, बहुत खुश हैं आजकल से, जब पहली बार ममता मिली।
1: 1997 बासु भट्टाचार्य ने अपनी आखिरी फिल्म बनाई आस्था। मुख्य तारे थे रेखा, ओमपुरी और दिनेश ठाकुर।

20 जून 1997 को इस असार संसार को छोड़कर एक लंबी यात्रा पर चले गए बाबा भट्टाचार्य। बाबा इस दुनिया से विदा हो गए, पर ही गया उनका सिनेमा, उनका वो सिनेमा जो मानवीय संबंधों की पड़ताल करता है। ये वो सिनेमा जो अब तरह से राला है, इसीलिए लोग इन फिल्मों को खोज खोज कर देखते हैं और एक फिल्मकार के रूप में बासु भट्टाचार्य को याद करते हैं। वैसे बासु भट्टाचार्य का सबसे बड़ा योगदान कुछ फिल्म समीक्षक तीसरी कसम मानते हैं। तो अब आपसे विदा लेने से पहले तीसरी कसम में कह गई ये सीख।

0: के पास आना है।
1: आज के कार्यकारी आज इंद्रित था, जानी निर्माता निर्देश बासु भट्टाचार्य पर, दूध लेख स्वर यूनुसन, संपादन आकाश सिंह, प्रस्तुति रमेश गोखले।

नमस्कार साथियों, मैं हूँ आरती श्रीवास्तव। प्रस्तुत है छाया गीत। हवा के साथ नींद करवाई बदलती है, आंखों आंखों में बात करती है। जर पत्तों बीच ढूंढती है खुशबू, फूल तो सूख गए वो कहाँ समझती है। मन की दहलीज रखकर चराग याद के, खत वो चुके से अंधेरे में रुस पड़ती है। तो कोई शोक हसीना नहीं है, पर यू ही कभी भी उदासियों के बीच हंसती है। ये अभी कौन सा मौसम लगा गया उसको, गुलाब इतनी खुशबू से वो महकती है। दर्द से इश्क लड़ाने की उसको आदत है, गम के सहरा में खड़ी तितलियां पड़ती है।

मुलाकात का ये मौसम, तेरी आंखों में डूब जाने का सम, रंगों में सिमटी हुई तू जब आती है मेरे सामने, कायनात में घर जाता है बहारों का मौसम, और जब की वीरानियां तेरे ख्यालों से गुलजार होती हैं, तो बहुत भाता है तेरी यादों का मौसम, इश्क के तमाम रंगों को ओढ़कर जब आती है सामने, तो मेरी नजर का ख्वाब बन जाता है तेरी खूबसूरती का मौसम।

स्याह रातों में दिन के उजालों में एक तेरा चेहरा नजर आता है सभी नजरों में। हर तरफ यही अफसाने हैं कि हम तेरे अदाओं के दीवाने हैं। कभी काले घट को ओढ़कर दिन में तू निकलती है तो कभी झिलमिलाती हुई शब में तू चांदनी बिखरती है। तेरे पैरहन अंदाज वो तेरे हुस्न जलवे तेरे कदमों पर से झुकाकर चांद भी करता है तेरे सजदे। बेनूर यह मेरी जिंदगी तेरे बिना कड़ा हूं मोहब्बत तुझे मैं बेपनाह।

अंतर के बाद एक बार फिर स्वागत है छाया गीत में। कुछ कहानियां धूरी सी, चंद मुलाकातें पूरी सी, बड़े हसीन दिन थे वो, खूबसूरत थी वो रातें, हाथों में हाथ मले करते थे हम ढेर सारी बातें। चांद का नूर तुम्हारी आंखों में झलकता था, काली टाएं लहराती थी जुल्फों में, ढलते ढलते शाम कुछ यूं से लिपट जाती थी जैसे रात की आगोश में कली सी खिल जाती थी।

अदाएं भी हैं तुझ में, है अंदाज सबसे जुदा। हुस्न की मूरत है तू, तू ही है मेरा जहां। कभी बेमौसम बरसात ही तू मेरे वजूद को भिग जाती है, कभी अनकही किसी बात सी तू मुझे मदहोश कर जाती है। खामोशी की भी जुबान होती है, ये सुना था मैंने। तेरी आंखों को पढ़ा जब इस बात को माना मैंने। तेरे होने से ही है फूलों में खुशबू, तेरे होने से ही है हवा में दादू। तू है जैसे एक हसीन गजल या फिर कोई एक महता सा कंवल।

एक सुबह हो तुम धुली ली, एक शाम तुम अधोश सी, एक कतरा हो तुम शबनम का, एक सितारा हो कह कशा के दाम का, एक मुकम्मल हुस्न तुम्हारा परंपरा में सिमटा हुआ सा, कुछ कुछ हया की चांदनी में लिपटा हुआ सा, दिल भा रही है तुम्हारी हर एक अदा, इश्क को ऐसे दे रही हो सदा, फूलों की खुशबू हो तुम या कोई फूल ही है मेरे रू रू, चांद की किरण कहूं या चांद तुम हूँ।

0: अपने दो आरती श्रीवास्तव को छाया समाप्त करने की दीजिए अनुमति। नमस्कार।
1: यह विविध भारती।

0: जाने माने फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: प्यार किया तो डरना क्या की सेकंड लाइन शकी साहब से अच्छी मैं नहीं पाऊंगा, तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। हेमा जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की ट्यून बनाई, कहा इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसे सेकंड लाइन लिखेंगे, बस को हुक लाइन रखेंगे, वो गाना करते करते हुक लाइन बन ओढ़ चुनरिया तेरा।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 27 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: विविध भारत पर आ रहे हैं साथी जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी से साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हंस भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता। जो स्वाभाविक रूप से व्यंग निकलते थे के मुद्दे पर, कुछ लोगों ने कहा कि आप तो अच्छा व्यंग बोल लेते हैं, ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रतिभा होगी।
0: तो ना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध।

0: ये है विविध भारती देश की सुरीली धड़कन। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रपट संगीत।
1: दिल्ली का आंध्र प्रेस चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर, रात 800 किलोहर्ट्ज, डीएम 810 किलोहर्ट्ज पर। अब से कुछ ही देर बाद समाचार होंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिजी।

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत हमेशा शांति और पक्ष धर रहा है। ये जटिल वैश्विक मुद्दों और युद्ध जैसे संकटों का समाधान केवल संवाद और कूटनीति से ही संभव है। राष्ट्रपति ने मोहन चरण माझी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एक जनसभा में ये बात कही। राष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक नेताओं के साथ अपने दूरदर्शी शासन और संपर्क के जरिए वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ा है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना पदभार संभालने के बाद से राष्ट्रीय हित में कई कदम उठाए हैं। इस महीने उन्होंने लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल पूरा करने का रिकॉर्ड बनाया। मैं सभी नागरिकों की तरफ से ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए उन्हें बधाई देती हूँ। मैं कामना करती हूँ कि देश के लोगों के हित के लिए निरंतर काम करते रहें और भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का सपना साकार करने में राष्ट्र का नेतृत्व करते रहें।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं से सशक्त होकर जनजातीय समुदाय भारत के विकास में सक्रिय योगदान दे रहे हैं। उन्होंने पूर्वी भारत के विकास में तेज लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के पूर्वोदय दृष्टिकोण का भी उल्लेख किया।
2: ओडिशा में आर्थिक गतिविधियां निवेश और उद्योगों को आकर्षित करने का सामर्थ्य नजर आ रहा है। केंद्र सरकार का विजन है पूर्वी भारत के विकास से भारत विकास, इसलिए हम पूर्वोदय की नीति पर काम कर रहे हैं। पूर्वी भारत को कांग्रेस के दौर में पीछेपन का पर्याय बना दिया गया था, आज वो प्रगति का प्रवेश द्वार बन रहा है।
0: बाद में प्रधानमंत्री हुगली जिले के ताकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त के रूप में 18,880 करोड़ रूपए जारी किए। प्रधानमंत्री ने कहा इससे देश भर के 9,44,00,000 से अधिक किसानों को लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री कोलकाता में कल IAS दुनारी, IAS संशोधक और INS अग्रय का अनावरण करेंगे। इनपुट में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया है। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विश्व भर में मनाया जाएगा। इस वर्ष का विषय है बड़ी उम्र के भाव को रोकने के लिए योग। यह कार्यक्रम कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में योग अभ्यास के दौरान राष्ट्र का नेतृत्व करेंगे। रेड रोड पर राष्ट्रीय कार्यक्रम सुबह 5 बजे शुरू होगा। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट UG 2026 की पुनः परीक्षा कल आयोजित की जाएगी। ये पुनः परीक्षा भारत 551 शहरों और विदेश 14 शहरों में होगी। इस पुनः परीक्षा में 22,79,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। महाराष्ट्र के परभणी जिले के मनवथ तालुका में एक निर्माणाधीन मंदिर का ऐसा गिरने से कम 5 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और लगभग 40 अन्य घायल हो गए। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस तस्दी पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्हें प्रत्येक मृतक के परिवार को 5,00,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। चेन्नई में भारत तीसरे और अंतिम दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 9 विकेट हराकर श्रृंखला 3-0 से जीत है। भारत ने 29वें ओवर में 1 विकेट पर 224 बनाकर जीत हासिल की। 5 विकेट लेने वाले प्रसिद्ध कृष्णा को प्लेयर ऑफ मैच चुन गया। और मौसम विभाग ने कल पश्चिम बंगाल में हिमालय तराई क्षेत्र और सिक्किम में अत्यधिक वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 2 दिन तक असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashwani, the news read by Abhi Shukla.

0: ये आकाशवाणी है। हर साल विश्वास से विकास के कल्याण की विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज ने सशक्तिकरण से समृद्धि की ओर बढ़ते भारत पर परिचर्चा, इसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार नीरू रंजन और सर्जन शर्मा, परिचर्चा का संचालन कर रही हैं सुनु सूद।
1: 12 वर्ष के कार्यकाल में वर्तमान सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सभी को भागीदार बनाकर राष्ट्र विकास का मूल मंत्र है सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास सब विश्वास, उसके तहत उन्हें जो एक लक्ष्य रखा है 2047 तक एकसित राष्ट्र बनाने का भारत को, उसमें उन्हें चार जो स्तंभ है उनकी पहचान ही है, क्या भी कहा जा रहा है, गरीब, युवा और अन्नदाता यानी कि हमारे किसान और नारियां। तो इन चारों जो वर्ग है उनके सशक्तिकरण पर सरकार ने लगातार बल दिया है। अगर हर बजट में देखें जो भी प्रमुख संबोधन होता है प्रधानमंत्री जी का, उसमें इन वर्ग को सख्त करने की बात की जाती है। और आज हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट सर्जा शर्मा जी और नीलू रंजन जी दे हैं, इससे हम समझना चाहेंगे कि इन 12 वर्षों में जो ये चार वर्ग है इनको सशक्त करके ऐसे वो देश को समृद्ध करने का सपना है उसको साकार करने की तरफ हम बढ़े हैं। दोनों का ही बहुत स्वागत कार्यक्रम।
2: थैंक यू सोनी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
3: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: सर्जा जी, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं, लेट्स फर्स्ट कहा जाता है, सो आपसे मैं महिलाओं की ही बात करना चाहूंगी। जिस तरह का विकास महिलाओं का हुआ है और जो सरकार का मंत्र रहा है कि विमेन्स डेवलपमेंट आगे बढ़कर हमें विमेन लेड डेवलपमेंट यानी महिलाओं के नेतृत्व में विकास जो है उसकी ओर बढ़ना है, हमें बताएं कि इन 12 वर्षों में कौन से ऐसे परिवर्तनकारी रिफॉर्म्स हैं जो महिलाओं के लाए गए हैं जिनको आप सबसे महत्वपूर्ण मानती हैं।
2: सुनो जी, देखिए, महिला जो है वो कोई परिवार अधूरी महिला है। जो एक अच्छा परिवार वो एक अच्छा समाज, एक अच्छा समाज अच्छे राष्ट्र निर्माण करता है। अगर महिला सशक्त है, अगर महिला समृद्ध, मेरा मतलब खाली पैसे नहीं और बहुत सारी चीजें जिसको समावेशी विकास कहते हैं, अगर महिला उस तरह की है तो वो अपने परिवार को बढ़िया करेगी, समाज को अच्छा बनाएगी और फिर राष्ट्र को। तो इसका मतलब धुरी जो है परिवार से लेकर राष्ट्र तक महिला के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। भले ही आज से कुछ साल पहले तक महिलाएं बहुत घर से बाहर नहीं निकलती, लेकिन घर में रहते हुए जो उनकी अर्थव्यवस्था है, जो उनका मनी मैनेजमेंट है, जो उनका रिलेशनशिप मैनेजमेंट है, पुरुषों को तो शायद बहुत चीजें घर की पता भी नहीं होती, इतना वो खुद सब मैनेज कर लेती है। आपने देखा कि कोविड में पूरी दुनिया की इकोनॉमी ध्वस्त, लेकिन भारतीय महिलाओं को जिस तरह की ट्रेनिंग है ऐसे को जुड़ने की और आत्मनिर्भरता जो उनका मूल मंत्र है, तो उसके कारण हमारी अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी रही, क्योंकि सेविंग की बहुत आदत है हमारी महिलाओं को। तो मोदी जी जो ये सोचा, तो उसे देखिए दो तीन चीजें मैं कहूंगी जो सबसे अच्छी रही। एक उज्ज्वला योजना और एक है हर घर नल हर जल। तो ये दो चीजें सुलभ हुई है महिलाओं, उससे उनकी जो फिजिकल लेबर है वो कम हुई है, उनकी एफिशिएंसी इंप्रूव हुई है। आपको लकड़ियां बिनने जंगल में नहीं जाना और धुएं में काम नहीं करना। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत आपको सब्सिडाइज सिलेंडर मिला है, तो आप सोचिए उसकी इतनी मेहनत कम हुई, खाना अच्छा बनेगा, वो भी खुद रिलैक्स रहेगी। दूसरा है, अगर हम देखें कि हमारे भारत में बहुत सी ऐसी जगह थी जहाँ पे महिलाओं की आधे से ज्यादा एनर्जी पानी लाने में भी लगती थी
1: जी।
2: तो ये जल मंत्रालय जो काम किया है, हर हर नल जो पहुंचाया है, हर जल पहुंचाया है, उसका भी मतलब हुआ। फिर आपने इनका है कि जरूरी नहीं कि आप 10 से 5 की जॉब कर जाओ, अगर आपके घर के आसपास या अपने घर में बैठ क्रोशे बुनते हैं, स्वेटर भी बुनते हैं, आपको सिलाई भी आती है, या आपके जैसे मखाना की खेत में आपने घोगा मशरूम खेती, बहुत सी ऐसी महिलाएं जो लखपति दीदी बनी है उन चीजों से। जरूरी नहीं कि आपके पास बीए एमए की डिग्री हो, ऐसा भी नहीं। तो जो इस तरह की योजनाएं हैं, सेल्फ ग्रुप जो बनाए जिसमें की लगभग 91 लाख सेल्फ ग्रुप है और 10 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन गई, तो इस तरह की योजना। मुद्दा योजना जाए कि अगर अपने घर में मुझे कोई काम शुरू करना है, मुझे लगा कि मुझे एक सिलाई स्कूल खोलना है, मुझे लगा कि मुझे क्रोशिया सेंटर बनाना है अपने घर, मुझे लगा कि मेरे पास जो स्किल है जो मुझे किसी स्कूल से नहीं अपनी फैमिली से ट्रेडिशनल मिली है, अगर मैं उसको आगे विकसित कर कौशल हुनर जो कि परंपरागत हम यहाँ अपने देख कि कोई साड़ी बनाता है, कोई लड़ी का सामान बनाता है, तरह तरह की चीजें हम मतलब

0: अपनाना मुश्किल है क्योंकि भारत में इतनी विविधता है। अब कुछ तो महिलाएं जैसे हल्दी उगा रही है, कोई मशरूम उगा रहे हैं, तो उनको जो लोन मिल रहा है सस्ती किस्तों में, मतलब उनको बहुत ज्यादा भागदौड़ करनी, और मुद्रा लोन जो मिल रहा है इससे भी उनका जो लाइफ है बहुत आसान हुई है। दूसरा है शिक्षा को लेकर भी बहुत काम हुए हैं, केजी टू पीजी जो है कि केजी से पीजी तक बच्चियां जो है वो पढ़े। और फिर ये है कि सुरक्षा का वातावरण आप देंगे कि कई राज्यों तो ऐसा था कि 6 बजे के बाद लड़कियां घर से नहीं निकलती। उत्तर प्रदेश का मैं आपको एक उदाहरण दूं, जैसे कि तो अब देखिए बेखौफ लड़कियां रात को 2:30 बजे भी आराम से घूम सके क्योंकि सुरक्षा इतनी ज्यादा, जब तक माँ और बेटी को नहीं लगेगा कि वो सुरक्षित है तो बाहर काम करने उसको कोई सुरक्षा भावना वो जो सरकार ने सुरक्षा की भावना दी, महिला थाने को महिला हेल्पलाइन खोली कि आप तुरंत फोन कीजिए आपको मदद मिलेगी। और एक और देखिए कि महिलाओं को मैटरनिटी लीव में डबल किया है, 3 महीने से 6 महीने किया, ये एक बहुत बड़ा सशक्तिकरण है महिला का।
1: बिल्कुल,
0: मातृ सुरक्षा योजना है, शिशु योजना है, इन सब योजना ने महिलाओं के जीवन को आसान किया है, सुविधा दी है। मैं बात करूँ उन महिलाओं की जो अभी तक बहुत बाहर निकल के काम नहीं करते, बात करते उन महिलाओं की जो पढ़ के आगे, जैसे कि आपने सैनिक स्कूल लड़कियों के लिए खोल दिया, जैसे कि NDA खोल दिया गया लड़कियों के लिए, लड़कियां फाइटर पायलट है, तो ये जो इस तरह की चीजें भी आई हैं उससे देश बाकी लड़कियों को प्रेरणा। 26 जनवरी पर का आपने जो स्वरूप बदलते हुए देखा होगा, आप देख कैसे स्वरूप बदला है। पहले आप देख किसी भी कंटिंजेंट लेडी नहीं लीड कर, अब आप देखिए अब 26 जनवरी परेड का रूप बदल गया। तो मुझे लगता है बहुत सारे इसका सबका कारण मैं एक समझती हूँ कि इस कार का जो है अंत्योदय, जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय शुरू से ही भाजपा का ये मूल नियम है अंत्योदय, अंत से उदय करना है। ये बहुत योजनाएं जो सबसे वंचित वर्ग है वहां शुरू होते हैं, और जैसे जो अफोर्ड कर सकते हैं LPG उनको आप देखिए इसका हटा दिया, हमने भी सिलेंडर और वो उन वर्गों तक पहुंचा जिनको उसकी आवश्यकता थी।
1: तो बिल्कुल टारगेटेड जो है इम्प्लीमेंटेशन भी हुई है रिफॉर्म्स की। नीले, अगर हम एक बहुत बड़ी जो शक्ति मानी जाती है भारत की कि भारत एक युवा देश है, यहाँ पे डेमोक्रेटिक डिविडेंड है, तो तरह से जो युवा पीढ़ी है उस पर जो ध्यान दिया है सरकार ने और तरह से उनका सशक्तिकरण हुआ है, आप किन पहलों को इन 12 वर्षों में सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं? अगर आप टॉप 2-3 हमें बताएं कि कौन सी आपको डिसीजन जो है उससे आपको लगता है कि परिवर्तनकारी सिद्ध हुए हैं या हो सकते हैं?
2: देखिए सबसे बड़ी बात है युवाओं के लिए कि युवाओं में अपनी ऊर्जा बहुत होती है, शक्ति की अपनी बहुत है, उस ऊर्जा को अवसर देने की जरूरत है, उसके लिए बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। ये पहली बात है, सब महत्वपूर्ण बात है। और समस्या ये थी कि युवाओं को अवसर नहीं मिलता था और वो जीवन के हर फील्ड में, चाहे वो अर्थव्यवस्था के किसी भी फील्ड में चले जाएं, शिक्षा में जाएं, खेल चले जाएं, हर फील्ड में वो कर सकते हैं, उनके इजी है और सबके अपने में खास है। तो जो उनकी रुचि है, जो वो कर सकते हैं, उसमें अवसर कैसे दिए जाएं, तो मैं ये कह सकता हूँ कि युवाओं के ये अवसर की ऐसी अनंत संभावनाओं दरवाजे खुले हैं कि हर युवा जो है वो अपने अपने कौशल के विकास में, अपने अपने क्षेत्र में करना चाहता है वो कर रहा है। और इसलिए आप देखें, खेल हो, शिक्षा हो, चाहे वो स्वरोजगार हो, चाहे वो साइंटिफिक चीजें डेवलपमेंट हो, नई टेक्नोलॉजी हो, जो आधुनिक टेक्नोलॉजी है, IT से रिलेटेड है, आप युवाओं देखेंगे पूरी दुनिया छा रहे हैं बाकी युवा। इसमें 3 चीजें महत्वपूर्ण हैं जो देखने की बात है कि युवाओं के लिए अवसर, जब मैं बात करता हूँ तो पहले मेडिकल की सीटें जो थी, अगर BBS के दें तो 55-56 हजार की होती थी, 140 करोड़ के देश में केवल 56 हजार MBBS आ रहे थे, आज वो 125 हजार की सीटें हो गई है, बल से भी हो गई है। जो पोस्ट ग्रेजुएट थी वो लगभग 30-32 हजार के आसपास थी, वो लगभग 65-70 हजार हो गई, डबल ज्यादा वहाँ भी हुई है। ये युद्ध पहले भर जाता था, यूक्रेन से कर रहा है, चीन से कर रहा है, नेपाल से कर रहा है, वहाँ यूक्रेन की आपदा में कैसे फंस गए थे देख रहे हैं, MBBS कर रहे थे, इंजीनियरिंग कर रहे थे। वैसे यूनिवर्सिटीज जो है, मेडिकल कॉलेजों की संख्या जो है सीटें बढ़ी है, तो मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़ी है, वो लगभग 380 के आसपास थी आजादी के बाद, 2014 खोली गई थी, वो लगभग 750 के आसपास हो गई है, 50 साल और मेडिकल खुल रहे हैं, जो सीटें जो है MBBS की वो 50 हजार और रहने वाली है। ये युवाओं को असर दिया देश के भीतर कि आप डॉक्टर चाहते हैं, यूनिवर्सिटीज, यूनिवर्सिटीज में एडमिशन आप देखते कितना मारा मारी है।

0: है, एडमिट नहीं मिलता था, लोग जो हैं ओपन स्कूलिंग करते थे, ओपन स्कूल अभी भी खुला है और वो एक बढ़िया विकल्प है कि उसमें हम कैसे कर सकते हैं क्या हम, और कोई कमते हुए भी हम ओपन स्कूलिंग से कोई शिक्षा लेते हैं। लेकिन यूनिवर्सिटीज की संख्या लगभग 800 से बढ़ के और 400 हो गई है, वो डबल हो गई है, ये तो उन्हीं के लिए हुआ है। और खेल में प्रतिभाओं को निखारने के लिए सरकार ने पैसे दिए हैं, जो स्कीमें लाए हैं, जो युवा खेल जो प्रतिभाएं हैं उनको कैसे ट्रेनिंग जा रही है, तो आप देखें कि ओलंपिक खेल हो चाहे स्टार्ट खेल हो चाहे कोई भी खेल हो, जो भारतीय युवा कहा जाता था कि खेलों के लिए भारत में युवा का जो शारीरिक संरचना है वो ऐसे खेलों में कंपेटेबल नहीं है, वो कहीं ना कहीं कम है, वो गलत थी बात, वो कहा जाता था।
1: ये अपॉर्चुनिटी दी खेलो इंडिया से आयोजन
0: खेलो, वही मैं कह रहा हूँ, खेलो आयोजन वो तो आयोजन है, लेकिन आप जो साई के सेंटर्स है, जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सेंटर्स है, वहाँ पे युवाओं पे जो इन्वेस्ट किया जा रहा है, उनको जो ट्रेनिंग दी जा रही है, उनपे खर्च हो रहे हैं, इंटरनेशनल कोचेज अगर युवा को अच्छा कहा है ओलंपिक के और एशियाड का कर रहा हो, तो जर्नी हो चाहे कहीं भी सरकार के खर्च पे ट्रेनिंग हुई है, तो ये एक बड़ा अवसर जो है युवाओं के लिए है। निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कि युवाओं को है वो सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती है, सारी युवा इस तरफ नहीं जाएंगे, तो वोकेशनल स्टडीज का जो है एक बड़ा उन्होंने किया है ट्रेनिंग, और जो आईटीआई हमारा जो ट्रेनिंग का जो था उसका मॉड्यूल को चेंज किया है। पहले युवाओं को था कि वहीं पे है आईटीआई का जो कोर्सेज है वही करो, वो पुराने कोर्स हो गए, अब उसको डिजाइन किया जा रहा है कि हर डिस्ट्रिक्ट में अगर आईटीआई है तो उस डिस्ट्रिक्ट में कौन से उद्योग है, वहाँ कहाँ प्रशिक्षित युवाओं की मांग है, तो ऐसे वहाँ पे उसी लेवल पे वो ट्रेनिंग है, वहाँ फैसिलिटीज दे। अब कितने ट्रेनर हैं, किस किस फील्ड में है ये नहीं पता था, अब सरकार एक बना है डायरेक्टली जिससे कि किस फील्ड के कितने अच्छे ट्रेनर हमारे कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ गैप है, कहाँ क्या डिमांड है देश में है, तो ये बड़ा चीज है। और सबसे बड़ी चीज जो है वो सबसे बड़ी जो सबसे ऊपर जा रही है वो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, वो तो बिल्कुल युवाओं के लिए है
1: और बदलते परिवेश के अनुसार जो जरूरत है उसके अनुकूल है।
0: उसने जो 10+2+3+2 का जो +6 मॉडल था उसका शिकजे से युवाओं को मुक्त कर दिया है कि आप ट्वेल्थ करना है, फिर 3 साल है आप बीए करना है, फिर एलपीजी करना है, फिर एमफिल करना है, ये करना है, उसके बाद कंपटीटिव एग्जाम देना है, अगर 20 आपकी पढ़ाई छूट गई तो छूट गई आपकी सारी मेहनत, उसमें बिल्कुल फ्लेक्सी कर दिया है कि क्रेडिट सिस्टम होगा, आपने साल पढ़ा है, साल के बाद आपको जरूरत पड़ेगी, घर में कोई समस्या हो गई, कुछ कहीं नौकरी आपको करनी पड़ रही है, या आपको कहीं अच्छी नौकरी गई, आप वहाँ चले गए, आपको लगा कि वो पढ़ लेते तो मेरे हो जाता, तो जो आपने 1 साल पढ़ा हो 2 साल पढ़ा हो वो आपके क्रेडिट में है, वो आप कर सकते हैं। जो सिलेबस चुनने में जो था जो समस्याएं थी कि बच्चा क्या करेगा, साइंस लेगा तो बायोलॉजी लेगा, केमिस्ट्री लेगा, जब वो मैथमेटिक्स लेगा, फिजिक्स लेगा, एक था कि सेट में है, अब कोई बच्चा जो है वो हिस्ट्री पढ़ना चाहे और मैथमेटिक्स अच्छा हो वो क्यों नहीं ले।
1: तो युवाओं के लिए बहुत सारे जो
0: मतलब जितने शिकंजे थे, जो अनंत संभावनाएं अवसर उस युवाओं के लिए है, वो अब उसके दरवाजे सरकार खोले हैं।
1: बिल्कुल,
0: आप जो करना चाहे करो, युवाओं में इतनी ऊर्जा है कि वो कि सब कुछ कर लेंगे, उन करने के लिए आपको सपोर्ट की जरूरत नहीं है, केवल अवसर देने की जरूरत है। और पिछले 12 सालों में वो अवसर मैंने इन्हें गिनाए आपको कि जो जो कर चाहे जहाँ करना चाहे, इस देश अवसर है, आपको छोड़ के जाने की जरूरत।
1: सरकार का जो ये एक सोच है कि आप जॉब सर के बजाय जॉब क्रिएट बने, आत्मनिर्भर उद्यमी, इस तरह से हम स्टार्टअप्स की अगर हम जब स्टैटिस्टिक्स देते हैं कि 350 स्टार्टअप थे 2014 में और अब वो बढ़कर जो संख्या है 2.2 लाख हो गई है, आपको लगता है कि ये जो एक इनोवेशन स्पिरिट, एंटरप्रेन्योरशिप की स्पिरिट, इसको बहुत बढ़ावा दिया गया है इन 12 वर्षों में?
0: निश्चित रूप से, स्टार्टअप जब शुरू आया था तो लोग कह रहे थे कि भाई युवाओं नौकरी चाहिए, स्टार्टअप क्या कर लेंगे, कैसे कर लेंगे, अब आप देखें कि उसमें जो स्टार्टअप्स हैं वो बड़ी बन रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के रूप में हो रहे हैं, 8,000-10,000 करोड़ का उनका टर्नओवर वो तत्काल हो रहा है, 200 ऐसे हो गए हैं उनका टर्नओवर जो आप देखें तो अच्छी कंपनियों से बेहतर है वो, तो वो एक सर। और स्टार्टअप में सरकार का मदद है
1: स्टार्टअप इंडिया द्वारा,
0: तो उसमें आपके टैक्स में छूट है, और इसमें आपके जो पुराने इंस्टीट्यूट है IIT है, IIM, उन्होंने जिस ढंग से उनको आगे बढ़ाया है, वहाँ उनके टीचर मेंटोर हैं, वहाँ पे एक सिस्टम बढ़ा है वो चल रहा है। और अगर स्टार्टअप में देखेंगे तो टेक के क्षेत्र में जो कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी में ज्यादातर

0: वो काम कर रहे हैं कि तो नए नए जो वेंचर्स में भी आ रहे हैं हाँ। उसमें आप देखें कि पेटेंट की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ी, यानी कि जो हमारे यूथ जो कहीं सच में लगे हुए हैं, कुछ नई चीज ढूंढ रहे हैं, पहले पेटेंट नहीं होता था, पूरा पेटेंट के जो रजिस्ट्री पूरे मैकेनिज्म है वो चेंज किया जा रहा है, लाखों यूथ जो है वो अब नए नए पेटेंट के लिए हर साल लाखों अप्लाई हो रहे हैं और पेटेंट मिल रहा है। पेटेंट मिलने का मतलब यह है कि बिल्कुल नई चीज नए इनोवेशन करके आप दे रहे हैं, तो ये हर क्षेत्र में यूथ के लिए उन्होंने चाहे खेल हो चाहे शिक्षा हो चाहे रोजगार हो, अगर आप रोजगार देने वाला स्टार्टअप जैसे अगर आप उद्यमी बनना चाहते हैं तो वो अवसर भी है, तो पहले नहीं मिलता था।
1: बिल्कुल। और अगर तीसरे स्तंभ की बात करें किसानों की, तो किसानों के सशक्तिकरण का रंजन जी जो क्रांतिकारी ने बदलाव किया है प्रोडक्शन फेज में, अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें तो हम टॉप 10 एक्सपोर्टर्स ऑफ द वर्ल्ड में अब शामिल हो गए एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स, और जिस तरह से नई इंडस्ट्रीज का गठन हुआ है, इंडस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन एलाइड सेक्टर्स के लिए एक अलग इंडस्ट्री, किसानों के सशक्तिकरण को आप कैसे देखते हैं पिछले 12 सालों में, और इसका आने करण हुआ है उसके प्रमुख पहलू क्या मानते हैं?
0: देखिए उसमें पहले आपको समझना पड़ेगा कि जब खेती दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती है, एक तो होता है इनपुट कॉस्ट, आप जब खेती करने जा रहे हैं तो आपको क्या क्या उसमें लगाना पड़ेगा, और अगर खराब हो फसल, बाढ़ आई, सूख पड़ गया, कुछ भी हो गया, आपदा आ गई, तो आपका क्या होगा। पहले जो समस्या थी कि इनपुट कॉस्ट की तुलना में जो हम मिनिमम जो गारंटी सरकार देती भी थी कि हम खरीदेंगे तो फसलों पे ही चावल था, गेहूं था, एक दो फसलें और थी, वो नहीं थी कि ये हम आपको खरीदेंगे। अगर आप देखें 12 सालों में तो जो उर्वरक जो फर्टिलाइजर है कीमत उस लगभग सेम है, बाल में नहीं बढ़ा है, सरकार को सब्सिडी बढ़ रही है, लेकिन वो लगभग 250-300 रुपए की बोरी जो 45 किलो की जो यूरिया की थी अभी वही है,
1: बड़ा समर्थन है।
0: इसका मतलब कि जो कॉस्ट आपका है वो उर्वरक वो नहीं बढ़ा है, वो सेम है। दूसरा, पूरे देश में बिजली जो है वो 24 घंटे उपलब्ध है लगभग, मतलब ग्रामीण घर के एवरेज 20-23 घंटे बिजली आए पहले नहीं होती, या और किसान अधिकांश जो राज्य है उसमें किसानों की बिजली फ्री है, तो सिंचाई लिए आपको अलग से कोई कॉस्ट नहीं आ रहा है, और आपके खाद्यान्न की कीमत अगर आप देखेंगे तो कुछ बढ़ा ही है। दूसरी इससे बड़ी बात यह है कि सरकार जो सहायता दे रही है 2000 रुपए का,
1: 6000 प्रति वर्ष तीन इंस्टॉलमेंट में
0: 2000 के, 3 इंस्टॉलमेंट में 6000 के, तो वो उसका अगर आप समय देंगे कि वो उस वक्त दिया जाता है, और छोटे किसान आपके अधिकांश जो देश में किसान है 12 छोटे किसान है, उनके पास ऐसे नहीं हुए हैं, जिस वक्त उनको बुआई करनी होती है, जो खेत लगाना होता है, कुछ करना होता है, बीज खरीदने के लिए ऐसे नहीं होते हैं, उनके लिए उस वक्त उनको ऐसे दे देते हैं, वो मदद उनको दी जा रही है, किसान क्रेडिट कार्ड उनको दिया रहा है कि 1 लाख रुपए तक अगर आपका खर्च कोई करना हो तो बहुत सस्ते में, कुछ नहीं देना है आपको, आप उसमें खर्च कर सकते हैं। तो फिशरीज का जो अलग मिनिस्ट्री बना करके उनका जो ब्लू रेवोल्यूशन जो उनका किया है और जो एक्सपोर्ट रहा है वो आप देखिए, हॉर्टिकल्चर में भारत का एक्सपोर्ट मेनली जो आपको दिख रहा है, एक्सपोर्ट जो कृषि क्षेत्र में वो उसे दिख रहा है, तो उसमें 10% 12% का ग्रोथ है, वो एक बड़ी ताकत रूप में भारत भर रहा है। तो किसान एज ए होल कह लें आप, परिवर्तन हुआ है, और किसान अगर आप कहते हैं ना सिर्फ, तो किसान नहीं होता है सिर्फ, से घर में महिलाएं भी, महिलाओं का जो सेल्फ ग्रुप बन रहा है
1: जैसे अभी सजना जी बता रहे
0: हैं, सजना जी बता रही हैं, तो वो भी तो ही बन रही हैं, जो 10 करोड़ महिलाएं हैं वो भी तो किसान परिवारों से जीते हैं, वो किसान परिवार से हो रहा है, जो मार्केट डेवलप जो आपकी सड़कें बन रही हैं, तो उन सड़कों के बनने से किसान का जो प्रोडक्ट है वो मार्केट तक आसानी से पहुंच रहा है, और आपने 20-25 फसलें ऐसी होगी जिनके गारंटी सरकार नहीं है खरीदने के लिए, हम उसको खरीदेंगे है ना, उपजाओ और गारंटी इस कीमत पे हम करेंगे। कई राज्य सरकारों ने इधर भावांतरण योजना शुरू कर दी कि अगर आप मार्केट से कम कीमत पर बेचना पड़ रहा है, मार्केट नहीं बेच रहे हैं, तो उस कीमत पैसा हम आपको देंगे, यानी किसान को कोई नुकसान नहीं होगा। तो जो अन्न आता है उसके लिए उन्होंने खोला है, सारी चीजें व्यवस्था है, जो जो जो सीधे कहां से नहीं जुड़ा है, किसान से लगा के जुड़ा हुआ नहीं है, मान ले कि जो सरोवर बनाना था कि जीर्णोद्धार करना है, तमाम तालाबों का सब कुछ है, वो किसका पानी का लेवल बढ़ रहा है, वहां सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध हो रही है, किसको लाभ है, कई चीजें उनसे जुड़ी नहीं है। जो ग्रामीण इलाकों में जो गरीब परिवार है उनका जो फ्री में इलाज जो 5 लाख का हो रहा है, उसमें बहुत सारे परिवार

0: से गरीब हैं जो आयुष्मान भारत योजना के तहत वो किसान परिवार से आते हैं, जो 55-60 करोड़ लोग हैं वो कहां से 55 करोड़ लोग हैं, वो सारे वहां से भी हैं। इसीलिए किसानों पे जो इनपुट कॉस्ट है, उनके जो जीवन के लिए जरूरी चीज है, खर्चे हैं, सरकार ने उस काम किया है, उनकी उत्पादकता बढ़ी है और कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री अलग से बना करे उनका कैसे वो जो फार्मर का प्राथमिक जो है वो संघ बने, कोऑपरेटिव बने, उसकी 1 लाख आसपास हो गया उसमें है कि 2-3 लाख कोऑपरेटिव बने हैं, कोऑपरेटिव बना करके इसे कॉपी नहीं करना है, इंटरनेशनल कैसे उनका ऑर्गेनिक खेती करे, कैसे वो विदेश एक्सपोर्ट हो, इसके लिए ऐसे कोऑपरेटिव आ दिया है।
1: बिल्कुल,
0: तो हर तरफ से किसानों को सशक्त, किसान सशक्त मतलब दे सकते।
1: बिल्कुल सिन्हा जी, अगर आपके पास आए जैसा ये अभी इंदु जी कह रहे थे, सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है, जो चारों स्तर है यही आपस में जुड़े हुए हैं। अगर हम खास से वंचितों की बात करें, जो मार्जिनाइज्ड कहते हैं या आर्थिक रूप से

0: उनका कैसे वो जो फार्मर का प्राथमिक जो है वो संघ बने, कोऑपरेटिव बने, उसकी 1 लाख आसपास हो गया, उसमें है कि 2-3 कोऑपरेटिव बने हैं, कोऑपरेटिव बना करके इसे कॉपी नहीं करना है, इंटरनेशनल कैसे उनका ऑर्गेनिक खेती करें, कैसे वो विदेश एक्सपोर्ट हो, इसके लिए ऐसे कोऑपरेटिव आ दिया है।
1: बिल्कुल,
0: तो हर तरफ से किसानों को सशक्त, किसान सशक्त मतलब दे सकते।
1: बिल्कुल सिन्हा जी, अगर आपके पास आए, जैसा ये अभी इंदु जी कह रहे थे, सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है, जो चारों स्तर है यही आपस में जुड़े हुए हैं। अगर हम खास से वंचितों की बात करें, जो मार्जिनाइज्ड कहते हैं या आर्थिक रूप से कमजोर, उनके बारे में थोड़ा सा बताएं कि इनके जैसे जो जातीय समूह के लिए जो स्टेप उठाए गए हैं, या जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए स्टेप्स उठाए गए हैं, ये मार्जिनाइजेशन के लिए हमें बताएं किस तरह के परिवर्तकारी उपाय हैं।
2: वर्ग में तो एक क्रांतिकारी परिवर्तन है, वो ऐसे आया है कि एक तो सबसे पहले उस वर्ग में आत्मसम्मान, आत्म गौरव की भावना पैदा करना, जो हमारे शेड्यूल ट्राइब्स हैं, जिनको पहले आदिवासी बोला जाता था, अभी जनजाति से है, इनके लिए आप देखें जो उनके हीरो रहे हैं, बिरसा मुंडा हैं और बहुत सारे, उन सबको इन्हें काला और जनजाति गौरव दिवस मना जाता है बिरसा मुंडा के नाम से। आदि मेले लगने शुरू हुए और एकलव्य स्कूल बनाए गए हैं इन बच्चों के लिए, उसका नाम है एकलव्य स्कूल, कि जितने ट्राइबल बच्चे हैं, क्योंकि अगर वो रेगुलर स्कूल में नहीं जा रहे तो आप उनको होल्डिंग स्कूल है ये, उसमें आपको पूरी से एक आधुनिक शिक्षा भी दे रहे हैं, उनको शिक्षा से जोड़ रहे हैं। दूसरा जो ट्राइबल्स हैं वो हमारे डल वन के रक्षक और संस्कृति के रक्षक सबसे ज्यादा वो हैं। हम जो पढ़े लिखे शहरी हैं, हम पर्यावरण की उतनी रक्षा नहीं करते जितना वो करते हैं, तो उनके लिए जो वन धन योजना है उससे बहुत लाभ है। उनको कहीं जाना, नौकरी के लिए एप्लीकेशन देना, कि उन लोगों को ये भी मालूम है कि कौन सी जड़ी बूटी का क्या असर है, उन पत्तों को हम नीलू या आप जंगल में जाके नहीं पहचान सकते, उनको पता है कि कौन सा फूल खिलेगा तो उसके बाद कब बारिश होगी, कब बाढ़ आएगी, तो वो लोग प्रकृति के साथ सहचर हैं प्रकृति के। ये जो मंत्रालय है, ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री है, तो ये भी देखिए कि वैसे तो अटल जी के समय में बना था, लेकिन अब इसमें बहुत सारे परिवर्तन आए और ये खेल में बहुत अच्छे हैं, हॉकी में है, स्पेशली तीरंदाजी में, कुश्ती में, तो उस पर भी ध्यान दिया गया है। इनके लिए बोर्डिंग स्कूल है, इनके लिए कोचेस दिए गए हैं, इनके लिए बहुत सारी योजनाएं हैं। और जिस एरिया में जो चीज ज्यादा जो पैदावार हो गई है, अब देखिए जैसे मखा बोर्ड बिहार में बना गया, पहले तो नहीं था। दूसरी बात, खाली खाना बोर्ड बना देने से काम नहीं होगा, ट्रेनिंग है उनकी, फिर उनकी प्रोडक्ट की कीमत है, फिर उनकी प्रोडक्ट को देश में और विदेश में सब जगह पे उनको पंच मिले, ई कॉमर्स जिसको वो भी चाह रहे हैं। अभी मोदी जी यात्रा पर गए, हमारे प्रधानमंत्री जी फ्रांस, स्लोवाकिया और G7, तो मैं जो लिस्ट देख रही थी, आप सोचिए उससे वो पिछली बार खाने ले गए थे, इस बार वो ठेका भी लेके गए, ठेका भी आप मतलब
1: हाँ, उन्होंने सम्मान दिला है पूरे
2: श्री अन्न को नाम, जिसको मोटा अनाज सब बोलते हैं, अब उसको देखिए माँ श्री अन्न, और सब चीजों की कीमतें भी बढ़ी है उसकी, और उसका किसान को लाभ हो रहा है। मखाने आप रेट देखिए बाजार में, तो आप सोचिए कि वो लाभ किसान को जा रहा है। और दूसरा ऐसा, अभी नीरज जी ने कहा कि खाली विकास समग्र होना चाहिए, अगर मेरे पास प्रोडक्ट है और मैं मंडी तक ही नहीं पहुंच पाऊं, मेरे पास मंडी तक पहुंचने के लिए सड़क नहीं, साधन नहीं है, तो मेरी प्रोडक्ट का क्या होगा, क्योंकि तो पैरेबल आइटम जो होती है तो उनको तुरंत बाजार चाहिए, तो ये भी बहुत सुविधा हुई है उसके लिए। और जब MSP की बात होती है, MSP अब कहा कि आप जा किसान अपनी फसल, जरूरी नहीं कि किसी को भाई जिसको जो कीमत दे रहा है, किसान को जितनी दे रहा है, और जिसके पास वो खरीद ली जाके इतना रेट है, तो ये विपक्ष जो कहता है, जो किसान आंदोलन हुआ, उन्होंने MSP बात की, तो उससे 4 कदम आगे चले। तो वंचित वर्ग में है कि पढ़ी है उनकी, लोगों लगता था कि अगर बेटी पैदा हो गई तो क्या होगा, अब किसी को नहीं लगता। सुकन्या समृद्धि योजना है, लड़कियों को वर्दी है, लड़कियों को सब कुछ। दूसरा, अगर मान लीजिए अब जो असंगठित क्षेत्र था, जहाँ पर ये वंचित वर्ग जिसकी आप बात कर रहे हैं, क्योंकि उसके पास कोई स्किल, कोई एजुकेशन कुछ नहीं था, या उसके पास ना पारंपरिक हुनर भी, कौशल भी नहीं, कोई भी, तो खैर कौशल विकास मंत्रालय भी खोला गया और कोई विकसित किया जा रहा है, तो अगर उसके पास कुछ भी नहीं तो किसी मान फैक्ट्री में काम कर रहा है, तो ये भी सरकार ने सुनिश्चित किया, जो नए 4 लेबर कोड है, कि अगर असंगठित क्षेत्र में है और काम कर रहा है

0: द्वारा स्पष्ट महिलाएं हैं तो उनका विजिस तय कर दिए गए हैं कि आपसे कब विश बिल्कुल काम नहीं करवाओगे। तो ये आप देख कितनी अच्छी बात है। फिर दूसरा, अगर महिला अपना काम करे तो आपको घर पहुंचाने की व्यवस्था भी करेंगे, फैक्ट्री आपकी करेगी, तो ये भी अच्छी बात है। अब सैनिटरी पैड पर देखिए, लड़कियों की जो सबसे बड़ी समस्या होती है कि वैसे इसको कहा गया था कि ये बातचीत करने, लेकिन ये एक रुपए जन औषधि केंद्र में सैनिटरी मिल रहा है लड़कियों को, किशोरियों, तो आप सोचिए महिलाओं, तो ये भी
1: बहुत,
0: हम इसको एक अगर देखें तो एक तरह से ये भी एक सशक्तिकरण और एक बड़ा कदम। पिंक टॉयलेट्स हैं महिलाओं के लिए अलग से, अच्छे शौचालय बनाए गए, तो ये ऐसी हैं जो आपको अगर किसी मैनेजमेंट स्कूल की बुक देखें तो उसमें ये चीज नहीं दिखेगी, लेकिन पिछले 12 साल में जो इतनी छोटी छोटी चीजों को सोच के समझ के जिन पर काम किया गया, पिछले 12 साल में फिर जन खाते बेनिफिट उनको मिल रहा है, लेकिन उसके साथ साथ उनका कौशल विकसित किया गया
1: और एक तरह से हमारी ट्रेडिशन, हमारे देश की, हाँ, वो भी अलाइव मतलब रहती है।
0: हमारी एजुकेशन पॉलिसी जो मैकले ने जो लाया था उसने व्हाइट कॉलर जॉब बहुत प्रेफरेंस दिया था, पर ये हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है जो सरकार की औद्योगिक नीति है, जो एमएसएमई आप देखिए ना, एमएसएमई सेक्टर में कितनी चीजें महिलाएं घर में बैठे हुए शौक शौक में बना लेती है, जिनको ये शौक, जिनके पास स्किल है, अपनी दादी नानी माँ से सीखा है, उसके लिए भी सरकार लोन दे रही है।
1: बिल्कुल,
0: तो ये बहुत महिलाओं का सशक्तिकरण। दूसरा मैं आपसे कहूंगी कि जैसे मातृत्व है वो योजना इतनी अच्छी है, मातृशु रक्षा योजना है, तो ऐसी योजना पहले था कि हाँ,
1: और एक्चुअली वो फिगर्स में दिखाई रहा है कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज जो अस्पतालों में हो रही है उनका संख्या इतनी बढ़ गई, 98% पे पहुंच गई है, और भी जो मोर्टैलिटी
0: जो है, बेसिक मेरी जरूरत है वंचित वर्ग की, अगर हम बात करते हैं कि रोड, कपड़ा और मकान
1: जी,
0: उनको प्रधानमंत्री आवास योजना में घर दिया जा रहा है, ठीक है, उनको जो राशन दिया जाता है बीपीएल जो है उसे बिलो में राशन मिलता है, ठीक है, वो आज नहीं तो कल कमाने लगेगा, वो भी बाकी समाज के साथ पेश मिलेगा, लेकिन जब उसको अपनी बेसिक जरूरतें पूरी हो रही हैं, उसको उसके लिए नहीं स्ट्रगल करना, उसलिए उसका जीवन स्तर आगे बढ़ा। और कितने करोड़ लोग नीलू जी गरीबी रेखा से ऊपर उठे,
2: 25 करोड़
0: गरीबी रेखा से ऊपर उठे, डिजिटल पेमेंट देखिए, अब सारी दुनिया आज हमसे सीखना चाहते
1: हैं
0: भारत,
1: ये जो डिजिटलाइजेशन बात कर रहे वो पे देश में है,
0: भी कहता है जी यहाँ पे पेमेंट जो भी कहता है गप्पे वाला
1: जी
0: टिक्की वाला,
1: व्यापक सशक्तिकरण है। अगर हम सामाजिक न्याय की बात करें, समावेशी विकास की बात करें, तो कुछ ऐसे आए हैं जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 71% बेनिफिशरीज जो है शेड्यूल टाइप ओबीसी फार्मर्स है, और मुद्रा योजना की अगर हम बात करें, जनधन योजना की बात करें, तो 70% से अधिक जो अकाउंट्स है वो महिलाओं के हैं। सो आप कि जो स्कीम्स है वो अच्छी भी है, लेकिन वो ज्यादा जरूरी है कि वो इम्प्लीमेंट बहुत कहीं सिंसियरिटी से हुई है।
2: निश्चित रूप से ये अनुभव अपना बताता हूँ, मैं भी गया था जगदलपुर, गया जगदलपुर का नाम सुनते ही बस सोचते हैं नक्सली भावित था, नक्सली इलाके, कोई सरकारी कर्मचारी जा ही नहीं सकता, स्कूल जला दिए थे, जो जंग में जो लोग थे उनको चीजें नहीं मिलती थी। अब वक्त के जो प्रोडक्ट हैं, जो वहाँ ट्रेनिंग दी जा रही थी और बिल्कुल संस्थागत रूप में सब कुछ लाया जा रहा है वहाँ पे, जो कैंप लगे थे सब समस्या खत्म हो गई, तो जो सुरक्षा बलों कैंप थे उसको सेवा केंद्र में बुला जा रहा। अमित शाह जो गृह मंत्री है वो हमारे साथ है, उनके साथ वहां मैंने देखा कि जो जंगल प्रोडक्ट है, इमली बहुत होती है, अब इमली वहां पे जो तोड़ा अब वो बिचौली सब खाते थे और जिते जाता था, अब मशीन लगी है, उनको ट्रेनिंग दी जा रही है कि इमली को कैसे आप पैकेजिंग 500 ग्राम के 1 किलो के छोटे पैकेजिंग बिल्कुल एकदम उसको, और उस बीज हटने चाहिए, ये होना चाहिए और बिल्कुल शुद्ध ऑर्गेनिक बिना किसी केमिकल के, और उसकी बहुत डिमांड है। एक वहां महुआ बहुत होता है, फ्री चुनते हैं, अब महुआ और बाकी जो श्री अन्न मिला करके इतने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट बने हैं, तो मार्केटिंग की सोच का अंतर आया है,
1: एक अवेयरनेस क्रिएट,
2: अवेयरनेस नहीं, सोच का अंतर ये है कि देश आजाद हुआ था तो हमने ये मान लिया था कि ये तो ट्राइब्स हैं, ये जैसे वैसे ही खुद, इन्हें हमें छेड़छाड़ नहीं करनी, इनको हमारे प्रॉब्लम जो, इनको हमारी स्कूल नहीं चाहिए, इनको हमारी बिल्डिंग नहीं चाहिए, इनको गाड़ी चाहिए, इनको जहाज नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए।

0: इनको, ये जंगल में ही खुश है। आपने उनको छोड़ दिया, उस जंगल में नक्सली घुसे। अब जो चीज आया है कि सारी सुविधाएं वो जंगल में रहे कहा है जिसे जी रहे रहें, लेकिन सारी सुविधाएं यहाँ पहुंचाएं और उनकी जो चीजें हैं वो अंतरराष्ट्रीय मार्केट भी जाए, बाहर जगह भी जाए,
1: विकास और उनके बच्चे भी अगर वो चाहे शिक्षा पे पहुंचे।
0: एक लव स्कूल का उन्होंने नाम लिया कि आदिवासी।
1: आप जो सोच की बात कर नीलू जी, मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि जो टर्मिनोलॉजी उसकी गई है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, कितनी खूबसूरत है कि रिकॉग्नाइज कर रही है सरकार की एस्पिरेशंस है लोगों की और उनको पूरा करने के लिए पॉलिसी मेजर्स उठाए जा रहे हैं।
0: वो ये है कि जब आप सिंसियरली देखते हो कि जिले हैं कौन कौन से जिले देश में है, वो पिछड़े, पहले पिछड़े राज्य की बात, लेकिन अगर आप देखो केरल में भी तो लोग कहें वहाँ बहुत साक्षरता है, वहाँ महिलाओं का सशक्तिकरण है, ये है तमाम चीजें हैं, लेकिन वहाँ कुछ जिले में पीछे रहते हैं। और जब बिल्कुल पिछले जो है छत्तीसगढ़ का, तो छत्तीसगढ़ के कुछ जिले बहुत अच्छे हैं, तो जिले पीछे छूट गए हैं वो किन किन मापदंड छूटे हैं, वहाँ क्या करने की जरूरत है। अब वो जब हो गया तो जिले के भीतर ब्लॉक है तो अब 500 ब्लॉक्स के अलग चल पड़ी वहां पे। यानी कि जब समग्र और समेकित विकास की आप बात सोचते हो कि अंत्योदय जो ने कहा दीनदयाल उपाध्याय का था कि कोई छूटे न पीछे, ये जब आप सोच होती है तो जितने लोग छूट हुए हैं सबको चुनते हो क्यों छूट गया, कमी है क्या लगाएं कि यहाँ आ जाए, वो ये हो रही है।
1: सर जरा आप भी कुछ कहना चाहेंगी।
2: देखिए मुझे जो सबसे अच्छा दो तीन चीजें लगती है, एक है विरासत के साथ विकास, जो स्लोगन है वो बहुत बढ़िया लगता है कि हम अपनी परंपराओं को अपने ट्रेडिशंस को बचाते हुए विकास की राह पर चले, ऐसा विकास ना हो हमें हमारी जड़ों से अलग कर दे। तो हमारी जड़ों से जोड़ का जो विकास है वो ये सोच बहुत अच्छी है। अगर मैं अपनी जड़ उखड़ कर ही बहुत उन्नत करती हूँ अपने समाज से, अपने रीति रिवाज से, अपनी परंपराओं से, तो वो विकास एक दिन जाकर मुझे दिल बहुत दुखी करेगा, लेकिन मैं अपनी जड़ से अपनी परंपरा से अपनी संस्कृति से और उसके साथ में विकास हो। अब एक चीज मैं और कहना चाहूंगी कि यूनेस्को धरोहर, अब हमारी टेंजिबल एंड इनटेंजिबल कितनी सारी चीजें आ गई। आप सोचिए हमारा गरबा, हमारी दुर्गा पूजा, हमारी दिवाली, हमारी बहुत सारी चीजें हैं जो यूनेस्को लिस्ट में शामिल होगी। और एक और सोचिए पर्यावरण की दृष्टि में रासर, जो आर्द्र भूमि जिनको हम बोलते हैं, वो 100 होने वाले, 99 तो हो चुकी हो, 100
1: और सब चीज युवाओं को भी प्रेरित करती है।
2: रामसर लेक जो है हमारे 13 या 14, अब आप देखे कितनी हो गई। ये समग्र विकास जो है विद मेरे विरासत के साथ, तो ये एक बहुत मसाल की एक उपलब्धि है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर्जना जी, नीलू जी, आप आए और आपने इतनी खूबसूरती से समझाया कि जो 4 स्तंभ जो माने गए हैं वर्तमान सरकार द्वारा विकास के, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी के सशक्तिकरण के लिए क्या क्या किया गया पिछले 12 सालों में और आगे भी क्या हम उम्मीद कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद
2: सोनू जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद नया मंत्री करने के लिए।
3: बहुत 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के श्रृंखला अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे सशक्तिकरण से समृद्धि की ओर बढ़ते भारत पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ पत्रकार नीलू रंजन और सजना शर्मा। परिचर्चा का संचालन कर रही थी सोनू सूद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।
4: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के टीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल, प्रसार भारती के ऐप ऑन एयर और ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव पर सीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।